फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो।

0: पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 कुल पद 28। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता
1: रहे। आज का वादा, सबोपदेशक अध्याय 8 श्लोक 1। धीमान के तुल्य कौन है? हाँ प्यारे लोगों, किसी कार्य को करने के लिए बुद्धि ही कुंजी है। मैं ये नहीं जानता, सोच रहा था कि ये कैसे करें। क्या आप चिंतित हैं कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ? क्या करें, मैं परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला सकता? क्या हम व्यवसाय में हैं और क्या आप चिंतित हैं कि मैं ये व्यवसाय ठीक से नहीं कर पाऊंगा? परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा। हर दिन उससे ज्ञान मांगो। प्रभु से आपको बुद्धि देने के लिए कहें। प्रभु तुम्हें सब कुछ ठीक करने की बुद्धि देगा। हे प्रभु, मुझे सब कुछ करने की बुद्धि दे। परमेश्वर मुझे सारी बुद्धि देगा। पढ़ने वाले बच्चों को परमेश्वर से ज्ञान मांगना चाहिए। वह कहता है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो सबको देता है। यदि तू प्रभु से मांगेगा तो वह तुझे बुद्धि देगा। प्यारों, निश्चय ही वो तुम्हें सब कुछ सुचारू रूप से करने के लिए बुद्धि और अनुग्रह देगा। पवित्र शास्त्र कहता है, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 1 श्लोक 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। क्या तुमने ध्यान दिया? प्रभु मुझे देखता है। परमेश्वर उन लोगों को बुद्धि देगा जो उसका भय मानते हैं। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। प्रभु से डरो, वह तुम्हें बुद्धि देगा। वह तुम्हें निश्चय बुद्धि देगा। वह तुम्हें सब कुछ करने की बुद्धि देगा। आप कुछ भी कर सकते हो। क्या हम प्रार्थना करें? प्रिय प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। कितने लोग इस समय मेरे पास परिवार बढ़ाने की बुद्धि नहीं है, मेरे पास अपने बच्चों को पालने की बुद्धि नहीं है, मुझे नहीं पता कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। चिंतित माता पिता को ज्ञान देना चाहिए। बच्चों के इलाज के लिए आपको बुद्धि देनी चाहिए। जो अपना परिवार चलाना और व्यवसाय चलाना नहीं जानते उन्हें ज्ञान देना चाहिए। आप हर परिवार के लिए जिम्मेदार हैं। आपको सभी को बीमारियों और फलों से आशीर्वाद देने और उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। आपको श्राप की शक्ति को नष्ट करना होगा। हम आपको सारी महिमा और महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। आमीन आमीन।

जब कभी हम नाकाम हो जाते हैं तो हम अपनी जिंदगी से मायूसी नहीं बल्कि खुद को कमजोर समझते हैं। ये गीत यशया बाब 40 आयत 28 से 31 पर आधारित है। कुव्वत सब्र हिम्मत देगा तुम्हें वही, गर है भरोसा उस पे हो लाख मायूसी।

आज का वादा यशाया की पुस्तक अध्याय 54 पद 5। और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। हाँ प्रियजनों, क्या आप परमेश्वर परमेश्वर का नाम जानते हैं? वह एक नाम रक्षक है, वह हमारा उद्धार करता है। रोग से पीड़ित होने पर दिन कब आता है और रात कब आती है कि हमें सताया जाता है? परमेश्वर हमें सब कुछ से छुड़ाएगा, वह हमारा उद्धार करता है। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो, वह हमें हर हाल में आजाद कर देगा। कर्ज की समस्या के बारे में चिंता मत करो, आंसू पोंछ लो। भजन संहिता की पुस्तक 39वें अध्याय श्लोक 15। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हम बचाए जाएंगे और नरक की शक्ति से मुक्त होंगे। तो चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछो, वो हमारा उद्धार करता है। हम उसे मजबूती से पकड़ेंगे, हम जीने के लिए उस पर निर्भर रहेंगे। नित्य प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना में जागते रहो, निश्चय ही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो प्यार से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। अब अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, उनकी रक्षा करें, उनमें से प्रत्येक शाप, पाप, आंसू, दर्द, ऋण, बीमारी और पीड़ा से मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, आत्मा को अंडरवर्ल्ड की शक्ति से बचाएं। प्रभु महान कार्य करें, आशीर्वाद आराम देना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यीशु मसीह का वादा अच्छे पिता के भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 105 पद 4। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हमें हर दिन उसकी तलाश करनी चाहिए। प्रातः उठकर प्रभु की स्तुति करो, बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। आपके जीवन में अपार खुशी और शांति रहेगी। परमेश्वर तुम्हें बिना माप के आनंद देगा। आपको हर दिन समुदाय को खोजना चाहिए। बाइबल कहती है कि उसे हमेशा समुदाय की खोज करनी चाहिए। कुछ हमने प्रार्थना की, ये मत कहो कि मैं 10 दिन बाद और 5 दिन बाद फिर प्रार्थना करूंगा। हमेशा प्रभु के समुदाय की तलाश करें। प्रभु की तलाश क्यों करें? भजन संहिता अध्याय 21 पद 6। क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। प्रभु का गुणगान करना चाहिए, आपके दिलों में खुशी का माहौल रहेगा। इसलिए प्यारे लोगों, हमेशा खोजो, प्रभु कहते हैं। क्या हम कहें, हे यहोवा, कि मैं तुझको ढूंढने के लिए थे अपने आप को लगा दूं? प्रभु निश्चित रूप से जीवन में आनंद लाएगा। आओ प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु। पिताजी को इस शो को सुनने वाले हर बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, शांति और खुशी दो, चिंताओं को दूर करना चाहिए और आशीर्वाद और उत्थान करना चाहिए। परमेश्वर, आने वाला नवंबर वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। कोरोना वायरस की तीसरी लहर लोगों को कभी नहीं छूनी चाहिए। हम आपको सभी महिमा और स्तुति देते हैं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ, आमीन।

0: 9 श्लोक 13 का सुसमाचार। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं पाप करता हूँ और मुझे पाप से कोई मुक्ति नहीं है। क्या आपको परवाह है कि मैं पापी हूँ? प्रभु परमेश्वर पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने आए हैं। चिंता मत करो, हमें पश्चाताप करना चाहिए। हमें इस तरह पाप पर नहीं रहना चाहिए, मन को लौट जाना चाहिए। यीशु ने कहा कि वो पापियों को बुलाने आया है। अगर हम पाप करते हैं तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हमें पाप से फिरना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। प्रभु, मुझे पाप से पश्चाताप करना चाहिए, मुझे पाप की लत है। यदि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे पाप से मुक्ति मिले, तो प्रभु निश्चय ही हम पर दया करेंगे। हमें अपने पुराने पाप से प्रतिदिन पश्चाताप करना चाहिए। केवल प्रभु ही हमें बदल सकते हैं। यीशु हमें बदल देंगे। मेरी मदद करो। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मैंने पुराने जीवन में जितने दिन जीते हैं वह पर्याप्त है। यहेजकेल अध्याय 18 पद 32। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। हाँ प्यारे लोगों, हम इस दुनिया में रहेंगे यदि हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। हमें पुराने रास्ते को छोड़कर पश्चाताप करना चाहिए और नया प्राणी बनना चाहिए। अगर हम ऐसा बनना चाहते हैं, तो हमें खुद को परमेश्वर को समर्पित करना होगा। वह हमें बदल देगा। यदि हम अपने मन को पुराने जीवन से हटा दें और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दें, तो प्रभु हमें नए मनुष्य में बदल देंगे। यीशु ने पानी को अंगूर के रूप में बदल दिया। वह था जिसने चट्टान को पानी के कुंड में बदल दिया था, जिसने चट्टान को फव्वारा बना दिया। यीशु हमें भी बदल देंगे। वह हमें बदल देगा। जब हम पश्चाताप करेंगे तो हम बच जाएंगे। निश्चय ही यीशु हमें नहीं छोड़ेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो प्यार करता है और हमें मार्गदर्शन, हम कृतज्ञता के साथ आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने बता दिया है पश्चाताप और तुम तो जीना होगा। हम क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए। मसीह को हमें रहना चाहिए। वह क्लासिक आशीर्वाद सभी को दे। पश्चाताप करने में हमारी सहायता करें। चमत्कार और चमत्कार होना ही चाहिए। आशीर्वाद और लाभ हो सकता है। हम में से हर एक को नया रूप देकर अपने नाम की महिमा करो। इस वादे के अनुसार कि जो कुछ पुराना था वे चला गया और नया हो गया। हम आपको महिमा और सभी प्रशंसा देते हैं। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं।
1: भजन संहिता अध्याय 10 की पुस्तक
0: भजनहार दाऊद कहता है, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हाँ प्रियो, यदि हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं तो वे हमें कभी न त्यागेगा। हमें प्रतिदिन प्रभु की खोज करनी चाहिए। सुबह उठकर उससे प्रार्थना करें। आपको धन्यवाद देना चाहिए उनकी पवित्र बाइबल पढ़ने के लिए। यदि हम प्रभु की स्तुति करते रहें, तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 34 पद 10। जवान सिंहों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। हाँ प्रियो, यदि हम परमेश्वर को खोजेंगे तो सब भलाई हमारे पास आएगी। प्रतिदिन प्रभु को खोजो। प्रभु निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में सभी आशीर्वाद देगा और आपको ऊंचा करेगा, ताकि कोई अच्छाई कम न हो और कोई आशीर्वाद कम न हो। प्रतिदिन प्रभु को खोजो, निश्चित रूप से वे आपको आशीर्वाद देगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे अच्छे पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये वादा सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद और उत्थान करे। आपको किसी भी आशीर्वाद को खोए बिना अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए। आप जो प्यार करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह
1: आज का वादा
0: नाम से
1: भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 121 पद 6। दिन में सूरज की रोशनी या रात में चांद आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ प्रियो, इन दिनों हम सुबह धूप और रात में ठंड पाते हैं। इन अंतिम दिनों में यही होगा। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है कि न तो सूरज और न ही चांद हम पर दिन रात हमला करेगा। ये हम सभी के लिए बहुत शांत इलाता है। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 16 पद 8, 9, चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से जलाने का अधिकार दिया गया। मानव जाति गर्मी से झुलस गई थी और उसने परमेश्वर के नाम की निंदा और महिमा करने से पश्चाताप नहीं किया, जिसके पास इन विपत्तियों पर अधिकार था। इन छंदों के माध्यम से परमेश्वर ने प्रकट किया है कि इस पृथ्वी पर क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी और आग से तबाही होगी, परंतु परमेश्वर अपनी प्रजा और पश्चाताप करने वालों की रक्षा करेगा। प्रभु कहते हैं, यशायाह की पुस्तक अध्याय 49 पद 10, वे भूखे और प्यासे होंगे, न लूह और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुवा होगा और जल के स्रोतों के पास उन्हें ले चलेगा। प्रभु का शास्त्र कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 4 पद 6, वह दिन को घाम से बचाने के लिए और आंधी पानी और छड़ी में एक शरण और आर होगा। मत भूलो, निश्चय ही परमेश्वर आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगा। क्या हम अभी प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, मेरा आपको धन्यवाद। चमत्कार करो, चमत्कार करो भगवान। जीवन, सुख और शांति दो, उनके आंसू पोछो और उनके दुखों को बदलो। ऐसे में कई लोग अपने केस को लेकर चिंतित रहते हैं। हे प्रभु, उन्हें शांति दे, उन्हें शांति दे और उन्हें आनंद दे। हे प्रभु, उन्हें अपनी सुरक्षा दे। केवल आप ही उन्हें खुशी और सुरक्षा दे सकते हैं। केवल आप ही उन्हें शांति दे सकते हैं। उन्हें आराम और शांति दो और अपने नाम की महिमा करो। शुक्रिया। मैं विनम्रता पूर्वक सर्वशक्तिमान यीशु के नाम से पूछता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद 27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। कितने लोग आंसू और पीड़ा में बिना शांति के हैं, है न? चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। चिंता मत करो, यीशु वह परमेश्वर है जो हमें शांति देता है। वही हमें शांति दे सकता है। उसी ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सोतों और सब वस्तुओं को बनाया। इसलिए वह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने आंसू पोंछ लो। आप धारावाहिक देख सकते हैं कि शांति नहीं है। आप फिल्में देख सकते हैं कि शांति नहीं है। यह सब व्यर्थ है। वह शांति स्थायी नहीं है। बहुत बड़ा भाइयों और बहनों, जो शांति प्रभु देता है वो शाश्वत है और हमें नहीं छोड़ेगी। यशायाह की पुस्तक अध्याय 26 पद 3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ प्रियो, हमें यीशु को दृढ़ता से थामे रहने की जरूरत है। आज शांति मिली है। हर मत मानो कि तुम उसे छोड़ सकते हो। मजबूती से पकड़ना है। तुम्हें पता है कब तक? अंत तक मजबूती से पकड़ना चाहिए। यदि आप उसे थामे रहेंगे तो वह आपको नदी की तरह शांति देगा। वह शांति के देवता हैं। वह जो शांति देता है उसे कोई नहीं छीन सकता। वह आपके जीवन में महान कार्य करेगा। यीशु को थामे रहो। आपको उस पर भरोसा करना होगा। वह हमें पूरी शांति देगा। क्या आपको लगता है कि शांति नहीं है? मेरे पास कोई माँ नहीं है, कोई पिता नहीं है, भाई बहन में से कोई नहीं, कोई आंख नहीं, परंतु यहोवा ने मुझे अपनी पूर्ण शांति दी है। आपको उसे मजबूती से पकड़ना होगा। प्यारों, जब आप भ्रमित और थके हुए हों तो आपको यीशु से पूछना चाहिए, यीशु मुझे शांति दो। तब वह तुम्हें निश्चय शांति देगा। वह आपके जीवन में महान कार्य करेगा। जरूर देंगे, आधे मन से नहीं, पूरे मन से। यीशु को थामे रहो। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग बिना शांति और बिना सुख के हैं, उन्हें शांति और खुशी दे परमेश्वर, उन्हें आराम और अच्छाई दो, आशीर्वाद और लाभ सभी को घेरें, उन्हें अपनी शांति से भरें। वे हर जगह शांति के लिए दौड़ते हैं। क्या वहां जाने से शांति होगी? वे दौड़ रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों को शांति देनी चाहिए। आपको हम सब पर शासन करना चाहिए। महान कर्म करो, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। अच्छा पिताजी।

0: सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। हाँ प्यारे लोगों, यहोवा हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार करेगा जो पृथ्वी पर कहीं नहीं किए गए हैं। मेरे जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं हुआ। मेरा जीवन कठिन है। क्या आपको इस बात की चिंता है कि मैंने कितना कष्ट सहा है? प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हारी ओर देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार करूंगा जो पृथ्वी पर कहीं भी नहीं किए गए। चमत्कार कुछ अलौकिक है। जबरदस्ती वह आपके जीवन में चमत्कार करेगा। प्रतिदिन उससे प्रार्थना करें। मुझ पर दया करने के लिए प्रतिदिन उससे प्रार्थना करें। निश्चय परमेश्वर तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। वह आपके जीवन में ऐसे चमत्कार करेगा जो पृथ्वी पर कहीं भी नहीं किए गए हैं। चिंता न करें, अपने आंसू पोछें। क्या आप कारण जानते हैं? उसका नाम चमत्कारी है। यशाया अध्याय 9:25 की पुस्तक, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत। केवल यीशु ही चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि वही आकाशों और पृथ्वी और सब वस्तुओं का सृष्टा है, जिसने समुद्र और फव्वारे बनाए। सभी चीजों का निर्माता कह रहा है कि मैं चमत्कार करूंगा, जैसा कि सारी पृथ्वी पर नहीं किया गया है, न ही किसी राष्ट्र में। अपने आंसू पोंछने होंगे। परमेश्वर निश्चय ही तुम्हारी चिंता दूर करेगा और तुम्हारे जीवन को आशीष देगा। क्या हम उससे प्रार्थना करें? स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, शुक्रिया। आपने अपने बच्चों के लिए चमत्कार करने का वादा किया है जो पृथ्वी पर कहीं भी नहीं किए गए हैं। आप उन सभी के जीवन में चमत्कार और चमत्कार करेंगे जो आपके शब्दों को सुनते हैं। बीमारी और कमजोरी और बीमारी चाहे जो भी हो, चंगा करना चाहिए। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। हम सभी जादू को दूर करने के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। अपने नाम की महिमा करो। अपने बच्चों को हर चीज में खुशी दो। हम आपको सभी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इब्रानी अध्याय 13:6। आमीन। इसलिए हम बेधक होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, परमेश्वर हमारा सहायक है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। क्या आपको किसी से धमकी भरा पत्र मिलता है? या आप मुसीबत में हैं? ओह, उसने मुझ पर मुकदमा किया, उसने मुझ पर मुकदमा किया। क्या आपको इसकी परवाह है? परमेश्वर हमारा सहायक है, इसलिए आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, व्यवस्था विवरण अध्याय 7:21, उससे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जो परमेश्वर हमारे भीतर है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए चिंता न करें। कोई परेशानी हो तो घबराए नहीं। अगर आपके खिलाफ कई लोग उठ खड़े हों तो चिंता न करें। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। कोई भी समस्या आपको नष्ट नहीं करेगी। उससे प्रार्थना करो। वह आपके जीवन में महान कार्य करेगा। निश्चय ही यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार और चमत्कार करेगा। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, 1000 धन्यवाद। मेरे प्यारे प्रभु, इस शो को देखने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उनका उत्थान करें। उनके जीवन में महान कार्य करें और महान कार्य करें। मैं आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु। बहुत से लोग पैसे की समस्या से पीड़ित हैं। उनकी पैसे की समस्या को बदलना चाहिए परमेश्वर। सोना चांदी तुमने कहा था कि सब कुछ तुम्हारा है। तुमने कहा था कि तुम उन्हें चांदी और सोने से समृद्ध करोगे। उनके जीवन में बड़े चमत्कार करें और अपने नाम की महिमा करें। उनके आंसू बदलो, उनकी चिंताओं को बदलें। वे इस दिन से आगे आपका आशीर्वाद, शक्ति और अनुग्रह देखें। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। आप उसके जीवन में सब कुछ करने जा रहे हैं और उसके लिए मैं आपको 1000 बार धन्यवाद देता हूँ। मैं तुम्हें सारी महिमा महिमा और अनुग्रह देता हूँ। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ। 42 पद 2 की पुस्तक। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। वह सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर तुम्हारा ऋण अवश्य चुकाएगा। परमेश्वर आपकी चिंता बदल देगा। आपकी समस्या को दूर कर सकता है। आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को अच्छी बुद्धि देगा। प्रभु ज्ञान देंगे। वे अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहेंगे। किसी बात की चिंता मत करो। आपको क्या लगता है कि पैसा कैसे चुका सकता है? भगवान सब कुछ करेगा। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। वह जो भी फैसला करेगा उसे कोई रोकने वाला नहीं है। वह जो सोच रहा है उसे बाधित किए बिना वे निश्चित रूप से आपका जीवन करेगा। प्रभु के द्वारा सब कुछ संभव है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे नहीं करना चाहिए। चिंता मत करो। निश्चय ही वो तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। योएल की पुस्तक अध्याय 2 पद 21। है देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा क्यों कहता है मत डरो और आनंद करो? हम सोचते हैं और हमारी आत्मा में बहुत भ्रम पैदा करते हैं। पूरा शरीर कमजोर हो जाता है तो वह हमें दिलासा देता है। है देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। हमें आनंदित होना चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह सब कुछ संभाल लेंगे। परमेश्वर निश्चय ही तुम्हारे जीवन में महान कार्य करेगा। हमें आश्चर्य है कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। चिंता मत करो। अपने आंसू पोंछ लो। क्या अब हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आपके आभारी हैं। आपको उन लोगों का कर्ज चुकाना होगा जो कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। बीमार लोगों को चंगा करना चाहिए। कमजोरों को अच्छी रिहाई दें। अपने नाम की महिमा करो। हम यीशु की स्तुति करते हैं। जो लोग शैतान की शक्ति में फंस गए हैं और भय और पीड़ा से पीड़ित हैं, उन्हें अच्छा उद्धार दें। समस्याओं और चिंताओं को दूर करें। भगवान की कृपा उन्हें घेर ले। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। आप सभी की जय हो। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक इस प्रार्थना को यीशु के नाम से अध्याय 4 पद 4 आमीन। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे गुस्से जो संसार में है बड़ा है। हाँ प्यारे लोगों, क्या आप जादू से प्रभावित हुए हैं? इसे देखने से डरो मत, चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह महान है। वह आपकी समस्या से बड़ा है। कोई समस्या कुछ नहीं कर सकती। परमेश्वर जो हम में है वह महान है। चिंता मत करो। परमेश्वर महान कार्य करेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 पद 21 की पुस्तक कहती है, उससे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। हमारे पास जो विरोध आ रहा है उसे देखकर डरो मत, परेशान मत हो, क्योंकि यहोवा महान है। वह तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। चिंता मत करो। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, धन्यवाद यीशु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। कितने लोग परेशान हैं कि किसी ने मुझ पर जादू कर दिया। मुझे एक समस्या है, मुझे बहुत समस्या है। मेरे पास ब्याज ऋण है और लोग चिंतित हैं कि मैं इस ब्याज ऋण का भुगतान कैसे कर सकता हूँ। ऑफिस में किसी तरह की परेशानी होने से कुछ लोग परेशान है। हर आंसू पोंछो और सभी समस्याओं को बदलो और हर लोगों को आराम और खुशी दो। प्रभु आपको महान कार्य करना चाहिए। हे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। उन बच्चों को स्मृति अवश्य दे जो चिंतित हैं कि परीक्षा आ रही है। उन बच्चों को अच्छी बुद्धि देनी चाहिए जो चिंतित हैं कि वे जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूल जाते हैं। आपको बड़ा काम करना चाहिए। प्रेम के परमेश्वर सभी को आराम, शांति और खुशी दे और उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें ऊंचा करें। हम आपको सारी महिमा देते हैं और हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: अय्यूब की
0: प्यारे पिता आमीन।
1: 42:2
0: मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हाँ मेरे प्यारे लोग, वह मेरा कर्ज दे सकता है, वह हमारी दुखों को बदल सकता है, वह आपकी समस्याओं को बदल सकता है। क्या आप इस बात से परेशान हैं कि आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? चिंता मत करो, हमारे भगवान आपके बच्चों को ज्ञान और स्मृति शक्ति देंगे, वे अध्ययन करेंगे। क्या आप इस बात से परेशान हैं कि स्कूल की फीस कैसे चुकाएं? चिंता मत करो, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह सब कुछ कर सकता है और उसके लिए कोई योजना असंभव नहीं है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उसने आपके लिए जो कुछ भी योजना बनाई है, बिना किसी बाधा के वह आपके लिए ये करेगा। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर नहीं कर सकता। तो चिंता मत करो, निश्चय ही वो तुम्हारे आंसू पोंछेगा। योएल अध्याय 2:21 की पुस्तक है, देश तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। मेरी भूमि से डरो मत और आनंदित रहो, यहोवा की यही वाणी है। हम सोचेंगे और भ्रमित हो जाएंगे, हम भी कमजोर हो जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन सांत्वना देने वाला है और ये आपको शांति देगा। हे देश तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। डंडा, तुम खुशी से कहोगे कि मेरा प्रभु मेरी देखभाल करेगा। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में महान कार्य करेगा, ये हमारी आँखों के लिए बहुत बड़ा चमत्कार होगा। क्या आप चिंतित हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते? चिंता मत करो, परमेश्वर बड़े चमत्कारी कार्य करेगा। अपने आंसू पोंछ लो, आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे अच्छे पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, उन लोगों का कर्ज चुकाओ जो कर्ज में हैं। जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें ठीक करें। जो लोग कमजोर हैं उन्हें मजबूत करें और आपके नाम पिता की महिमा करें। मुझे आपकी प्रशंसा करनी होती है। वे लोग जो बुरी आत्मा और भय से पीड़ित हैं, उन्हें उनके सभी संघर्षों और समस्याओं से मुक्ति देना। परमेश्वर आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए। हे यहोवा, तेरा पराक्रमी अनुग्रह उन्हें घेर ले। जो कुछ हमने प्रार्थना में कहा है वह तुम करने जा रहे हो, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मैं आपको यीशु की स्तुति, हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह आज का पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: अध्याय 2:10 की पुस्तक
0: आमीन। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। हाँ प्यारे लोगों, जब हम परमेश्वर का भजन गाएंगे तब वह आकर हमारे बीच वास करेगा, वह हमें वास करेगा। जब वो हमारे बीच आता है तो वह कितना खुश होता है। हम कितने खुश होते अगर इस दुनिया में डॉक्टर या महान अधिकारी हमारे अपने होते। हम में से कितने लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। परंतु ये क्या ही बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह आकर हम में वास करें। हमें उसके लिए गाना चाहिए। उसने कहा है कि वह आकर हम में वास करेगा। वह कह रहा है कि वह तुम्हारे बीच आएगा। ये क्या ही बड़ा आनंद है, क्या ही बड़ा आनंद है। प्यारों, प्रतिदिन प्रभु की स्तुति करो। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों अध्याय 14:15, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हमें पूरे जोश और सोच के साथ गाना चाहिए। जब हम ऐसा गाएंगे तो यहोवा आकर हम में वास करेगा, वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। आपने कितनी बड़ी खुशी, ये क्या ही आनंद की बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, समुद्र और फव्वारे का निर्माता हमारे भीतर है। और आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपकी पूरी आत्मा और दिमाग से गाने में आपकी मदद करे। बेशक वह आकर हम में वास करेगा। क्या अब हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। धन्यवाद। अपनी स्तुति गाने में मेरी मदद करें। पिताजी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके लिए हमारे साथ थाना और रहना कितना बड़ा सौभाग्य है। प्रभु यीशु, हमें हमारी पूरी आत्मा और हमारे पूरे दिल से गाने में मदद करें। अपने नाम की महिमा करने में हमारी मदद करें। पिताजी, हम आपकी सराहना करते हैं। आपको जीवित वचनों को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की चिंताओं और दुखों को बदलने की आवश्यकता है। हर आंसू पोंछे और अपार खुशी दें। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। ये करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: 5:17।
0: सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई होगी। हाँ प्रियो, यदि हम मसीह में हैं तो हम नए हो जाते हैं। जब हम प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं और हमेशा उनकी स्तुति करते हैं, तो हम एक नई सृष्टि में बदल जाते हैं। सब कुछ नया है, सब पुराना लुप्त हो रहा है। जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हमारी पुरानी चीजें हमसे दूर हो जाती हैं। प्रभु सभी चीजों का नवीनीकरण करता है, तो चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह आपको नवीकृत करना चाहते हैं। पुराना स्वभाव मेरा साथ नहीं छोड़ रहा, मेरा साथ नहीं छोड़ रहा। आपको क्या लगता है कि ये कैसे बदलेगा? जबरदस्ती आपकी पुरानी चीजें जरूर गायब हो जाएंगी। निश्चय ही यहोवा उसका स्थान लेगा। तीतुस की पुस्तक 3:5। नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हाँ प्रियो, केवल पवित्र आत्मा ही हमें फिर से नया सृजन देगा। चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा के साथ आपको फिर से नया सृजन करेंगे। प्रतिदिन प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। उसकी पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रतिदिन उससे प्रार्थना करें। यहोवा निश्चय ही तुम्हें पवित्र आत्मा का पूर्ण अभिषेक देगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन को पूरी तरह से अभिषेक से भर देगा। क्या अब हम प्रार्थना करें? हमारे पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। पुराने पाप से छुटकारा नहीं मिल सका। अपने बच्चों को जो चिंतित हैं कि मेरा पुराना स्वभाव मुझ में है, उनके पुराने स्वभाव को जीवन में नए में बदल दें और आनंद दें। प्रभु को उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। उनमें से प्रत्येक को आशीर्वाद और ऊंचा करें। प्रभु का हाथ उन्हें संभालेगा। इस दिन यात्रा करने वाले लोगों की रक्षा करनी चाहिए। हम आपको सभी सम्मान और धन्यवाद और महिमा देते हैं। हमारे अच्छे पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: भजन संहिता की पुस्तक
0: 30:10-11। हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पट्टुका बांधा है। हाँ प्यारे लोगों, क्या आप चिंतित हैं कि मैं कर्ज नहीं चुका पाऊंगा? साहूकार मुझे परेशान कर रहे हैं और कि मैं कर्ज पर ब्याज नहीं दे पाऊंगा? क्या आप विलाप कर रहे हैं कि आपको धन की आवश्यकता है? क्या आप शौक करते हैं कि मैं अपने जीवन में बिना काम के पीड़ित हूँ? परमेश्वर को पुकारो और उसकी दुहाई दो। वह ईश्वर है जो तुम्हारे शौक और शौक को आनंद में बदल देता है। तुम कितना भी विलाप करो और लोगों के पास जाने की चिंता करो, वे व्यर्थ है। हाँ प्यारे लोगों, लोगों के पास जाना और उन्हें यह बताना बेकार है कि कितने विलाप और आंसू हैं। आपके जाने के बाद ही वे आपको दोष देंगे। इसलिए यहोवा को पुकारो और उसकी दुहाई दो। इसलिए भजनहार कहता है, भजन संहिता की पुस्तक 88:1। है मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। हाँ, हमें रात और दिन की ओर पुकारना चाहिए। किसी भी आंसू की चिंता की समस्या को यीशु के द्वारा बदला जा सकता है। यीशु आपकी ऋण समस्या को बदल देंगे। प्रभु यीशु अच्छा काम देंगे। प्रभु यीशु आपके व्यवसाय को आशीष देंगे। वह तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बहुत से लोग अभी भी अपने क्रेडिट संकट के बारे में चिंतित हैं। हे प्रभु, उनके सभी विलाप और दुखों को हर्षित करें। कई लोग कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, वे जो कुछ भी पीड़ित हैं उसे बदल दें। उन्हें खुश करो। कितने लोग मेरी नौकरी जाने से परेशान हैं। हम चाहते हैं कि आप उसे एक अच्छी नौकरी दिलवाएं। उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। किसी भी कोरोना डकैती रोग या ओमिक्रॉन रोग के साथ किसी को भी स्पर्श करें और चंगा करें। सभी की रक्षा करनी चाहिए। अपने नाम की महिमा करो। प्रभु में आनंदित रहो। बाइबल में लिखा है कि वह तुम्हारे मन की विनती तुम्हें देगा। जिनके पास काम नहीं है उन्हें अच्छा काम दो और अपने नाम की महिमा करो। उस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा करने जा रहा है। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ।
1: हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, मुसीबत में एक बहुत ही वर्तमान मदद। क्या आप चिंतित हैं कि इस दुनिया में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है? चिंता मत करो, मुझे दिलासा देने वाला भी कोई नहीं। क्या आप इससे चिंतित हैं? चिंता मत करो, संकट के समय यहोवा हमारा सहायक है। वह किसी भी स्थिति में हमारा साथी होगा। चिंता मत करो, वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो, परमेश्वर महान कार्य करेगा। लेकिन क्या हम जानते हैं कि क्या करना है? हे इसराइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे इसराइल, यहोवा पर भरोसा रख, वह उनका सहायक और ढाल होगा। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो वह आपका सहायक और ढाल होगा। हमें हर दिन उस पर भरोसा करना चाहिए। निश्चय ही वो तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। वह अच्छाई लाएगा। वह तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। वह आपकी सारी चिंताओं को बदल देगा। आज से प्रभु पर भरोसा रखें। नए दृढ़ संकल्प के साथ प्रभु में विश्वास करें, ये कहते हुए कि मैं अब प्रभु पर भरोसा रखूंगा। वह आपका हाथ पकड़ेगा और आपको आपका साथी और ढाल बनने से आशीर्वाद देगा। क्या हम प्रार्थना करें? हे हमारे प्रेमय धन के परमेश्वर, कितने लोग आंसू बहा रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है। संकट की घड़ी में उन्हें एक अनुकूल साथी बनने से बचाएं। उन्हें आप पर भरोसा करने की महान शक्ति दें। उन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। हर दिन उनका हाथ पकड़ें, उनके दुखों से उनकी रक्षा करें और अनेक क्लेशों की इस घड़ी में उनकी रक्षा करें। हम आपके लिए सभी महिमा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यशायाह की पुस्तक अध्याय 26 पद 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ प्यारे लोगों, जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमें पूर्ण शांति प्राप्त होगी। हमें उस पर कैसे भरोसा करना चाहिए? भजनहार कहता है, भजन संहिता अध्याय 71:14, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। एक या दो दिन नहीं, हमें हमेशा उन पर भरोसा करना चाहिए। भजनहार इसे इस प्रकार कहता है, भजन संहिता अध्याय 62:8, है लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो। जब हम हर समय उस पर भरोसा करते हैं तो वे पूर्ण शांति जो प्रभु देता है वे हमारे दिलों को भर देगी। हमें परिस्थितियों को देखकर प्रभु पर भरोसा नहीं करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा को एक बच्चा देने का वादा किया। यहाँ तक कि इब्राहिम और सारा भी बहुत बूढ़े थे। क्या आप जानते हैं इब्राहिम ने क्या किया? बाइबल कहती है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 4:18, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। यहाँ तक कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी हैं। हालांकि हमें पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा करना चाहिए, हमें उसे मजबूती से पकड़ना चाहिए, तब प्रभु हमें पूर्ण शांति देगा। इसलिए अय्यूब ने कहा, अय्यूब अध्याय 13:15, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो अभी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। क्या हम आज इसके लिए खुद को समर्पित कर दें? निश्चय ही यीशु आपको आशीष देगा। क्या अब हम प्रार्थना करें? मेरे स्वर्गीय पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, जो लोग तेरे जीवित वचनों को सुने, उन्हें उनमें से प्रत्येक को आशीर्वाद देना चाहिए। उन्हें मजबूत करें, अपने अभिषेक से बंध होने के लिए तेरा अनुग्रह उन्हें घेरे रहे। प्रभु, उनके पूरे जीवन से डर और रोमांच को दूर करें, उनके जीवन में चमत्कार और चमत्कार करें। आप स्वर्ग से इस दुनिया में आए हैं, हे प्रभु, आप हमें बचाने के लिए पैदा हुए थे। यहोवा हमारे लिए आया था। हर किसी के आंसू पोछे, उन्हें आशीर्वाद दे। महान काम करो और अपने नाम की महिमा करो। भगवान, मैं तेरी सारी स्तुति, आदर और महिमा देता हूँ। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
0: भजन संहिता
1: की पिता पुस्तक आमीन।
0: अध्याय
1: 29:11, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। इस दुनिया में हर कोई क्या विलाप कर रहा है? शांति नहीं है, भीतर शांति नहीं है। ये मन को बहुत भ्रमित करता है, यह बहुत थकाऊ है। मैं भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ और शांति नहीं होती। केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें शांति दे सकते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि हम उसके लोग हैं, तो वह हमें शांति देगा, वह शांति और भलाई देगा। आप अपने जीवन में धैर्य होंगे, आप खुश होंगे। उसके लोग होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 7:23, परंतु मैंने तो उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। हमें वो सुनना चाहिए जो यहोवा कहता है, तब यहोवा हमसे भी बातें करेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, तब यहोवा हमसे बात करेगा, तब वो हमें शांति देगा, आशीर्वाद भी देंगे। क्या आप जानते हैं कि वे किस तरह की शांति देता है? वह कहता है कि ये एक नदी की तरह है, वह हमें शांति देगा। चिंता मत करो कि शांति नहीं है, बेशक यीशु हमें शांति देंगे। जब मेरे पिता और माता की मृत्यु हुई, तो मैं बिना शांति के अत्यधिक चिंतित था। यहोवा ने कहा, मैं जीवित हूँ, इसलिए मैं शांति में हूँ। मुझे वो शांति मिली है। तय करें कि आप सुनेंगे कि उसे क्या कहना है, तब तुम उसके लोग होगे। एक व्यक्ति होना उसके लिए क्या ही विशेषाधिकार है? उस विशेषाधिकार को याद मत करो। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, धन्यवाद यीशु, हमें अपने लोगों में परिवर्तित करें और हमें अपनी शांति और आशीर्वाद प्रदान करें। हे प्रभु, हम में से प्रत्येक किसी न किसी तरह से आपकी आवाज का पालन किए बिना जिया है। हम अब आपके वचन को सुनने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो कोई आपका जीवित वचन सुनता है, वह आपका वचन सुनेगा और आपके लोग बनने का अनुग्रह प्राप्त करेगा। आपको ये करना चाहिए, हर घर को आशीर्वाद और मन की शांति दें। सारी महिमा और धन्यवाद तेरा हो। हम आपको यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं।
0: मरकुस की
1: प्यारे पिता अध्याय 13:33, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वे यह समय कब आएगा। हाँ प्यारे लोगों, हम नहीं जानते कि वो किस समय आएगा, लेकिन उसके आने के उसके प्रतिज्ञा चिन्ह बहुत सटीक रूप से पूरे हो रहे हैं। तो केवल यीशु ने कहा, सावधान रहना, जागना और प्रार्थना करना। हमें क्यों उठकर प्रार्थना करनी चाहिए? यीशु कहते हैं, मैथ्यू की पुस्तक अध्याय 26:41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम इस दुनिया में हैं। यहाँ हमारे लिए कई प्रलोभन हैं। हमें इन प्रलोभनों में नहीं पड़ना चाहिए और न ही डूबना चाहिए। हमें इन प्रलोभनों में नहीं फंसना चाहिए। इसलिए हमें देखना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बार यीशु कहते हैं, लूका की पुस्तक अध्याय 21 पद 36, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इस दुनिया में बुराई बढ़ती जा रही है और खतरनाक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। जीसस ने कहा कि इन सभी घटनाओं से बचने के लिए हमेशा प्रार्थना करें। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि परमेश्वर के लोग खतरनाक विपत्तियों में फंसे। वह चाहता है कि वे खतरनाक आपदाओं से बच जाएं। इसलिए वह हमें ध्यान रखने, देखने और प्रार्थना करने के लिए कहता है। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। अपने हर बच्चे को दिलासा दो जो ये वादा सुनते हैं। शांति दो और उन सभी को खुश करो। उनके बच्चों को बेहतर पढ़ने में मदद करें। पापा, अभी कोरोना का समय है। जब बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, जब आते हैं, उनकी रक्षा करें और उन्हें अच्छी बुद्धि और स्मृति दें। बारिश हो रही है। बारिश से कितने लोग प्रभावित हुए? पापा, हम प्रार्थना करते हैं कि वे यहाँ सो पहुँचे। इस बारिश की बाढ़ से प्रभावित होने से बचने में मदद करें। प्रिय भगवान, उनके काम में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, मुश्किलें हैं। उन्हें चिंता है कि कार्यस्थल पर हर कोई मेरे बारे में घिनौनी बातें कर रहा है। संकटमोचनों से मिलें, उन्हें कार्यस्थल में अच्छी शांति दें। उनकी कृपा प्राप्त करने में हमारी सहायता करें। अपनी आंखों में दया पाने में मदद करें। अच्छी शांति, खुशी और स्वास्थ्य दें। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम प्रेम के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं।
0: एक शमूएल प्यारे पिता 12 पद 16,
1: इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारे आँखों के सामने करने पर है। हाँ प्यारे लोगों, आप उस महान कार्य को देखने जा रहे हैं जो प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। कभी मत थकना कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। रुको और देखो, निश्चय ही यहोवा हमारे जीवन में महान कार्य करेगा। नौकरी नहीं मिलने से थक गए हैं? चिंता है कि मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है? निश्चय ही परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा। यीशु महान कार्य करेगा। चिंता मत करो। निर्गमन अध्याय 14 पद 13 कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। उद्धार का अर्थ है स्वतंत्र मुक्ति। प्रभु आपके जीवन में महान मुक्तिदाता है। न केवल आप पाप से मुक्त होंगे बल्कि प्रभु निश्चित रूप से आपको आपके दुखों से, आपके आंसुओं से, आपके दर्द से, आपकी पुरानी बीमारी से और आपकी पुरानी कमजोरी से मुक्ति दिलाएगा। चिंता मत करो। क्या हम परमेश्वर की ओर देखें? यीशु निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन्हें बदलने और महान कार्य करने वाले हैं। उद्धार का अर्थ है महान मुक्ति। वह आपके जीवन में बड़ी मुक्ति लाने वाला है। कर्ज की समस्या या शैतान की पट्टियां, जादू टोना पट्टियां, क्या तुम बीमार हो? कुछ भी हो, प्रभु आपको छुड़ाने वाले हैं। तो अपने आंसू पोंछ लो, वह तुम्हारे आंसू बदल देगा। चिंता मत करो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, अपने बच्चों के जीवन में आंसू पोंछें जो आपके जीवित वचनों को सुन रहे हैं। चिंता को बदलें, समस्या को खत्म करें। चमत्कार और चमत्कार करो। उन लोगों को अच्छी नौकरी दें जिन्हें नौकरी न मिलने की चिंता है। विवाह होने से करना चाहिए जिन्हें इस बात की चिंता हो कि विवाह नहीं होगा। आपको पीड़ित लोगों के आंसू पोंछने चाहिए। नकदी की सभी समस्याओं और कठिनाइयों को बदलें। आस पड़ोस में लड़ते हुए आपको उन लोगों को मुक्ति देनी चाहिए जो बेचैन, चिंतित, थके हुए, दर्द में और अभिभूत हैं। बेघर बच्चों के लिए एक अच्छा घर खरीदना चाहिए। पूरे परिवार में झगड़ों और परेशानियों से परेशान लोगों को इस संघर्ष से मुक्त करें। उन लोगों को रिहा करो जो चिंता करते हैं कि मेरे पति मेरे घर में शराब पी रहे हैं और मेरे बच्चे पी रहे हैं। हम शराब और नशीले पदार्थों के आदि उनके रिश्तेदारों की रिहाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा करो, उनके सब संकटों को दूर करो और अपने नाम की महिमा करो। इस वचन के अनुसार कि तुम उस मिस्री को कभी नहीं देखोगे जिसे यहोवा ने आज देखा है। आप जो प्यार करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी की स्तुति और स्तुति करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। निर्गमन अध्याय 15 2। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। हाँ मेरे प्यारे लोग, केवल ईश्वर ही हमारा गीत है और हमारे लिए शक्ति है। क्या आप चिंतित हैं कि आप कमजोर हैं और आपका शरीर कमजोर है? चिंता मत करो, परमेश्वर हमारी ताकत है। केवल परमेश्वर ही हमारी ताकत है। इसलिए पवित्र पौलुस फिलिप्पियों अध्याय 4 पद 13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ मेरे प्रिय लोगों, हम मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं जो हमें सामर्थ्य देता है। उसकी शक्ति के कारण हम अपने सभी कार्य कर सकते हैं। उसकी ताकत के कारण हम कुछ भी कर सकते हैं और हम अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए उसने कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वे हमारे लिए सब कुछ करेगा। आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। वह हमारी ताकत और ढाल है, फिर हम क्यों डरें? केवल परमेश्वर ही हमारा गीत है और हमारे लिए शक्ति है। इसलिए चिंता न करें। वह आपकी सारी कमजोरी को बदल देगा और आपको नई ताकत देगा। परमेश्वर हमेशा आपकी ताकत है, तो चिंता मत करो। क्या हम अब प्रार्थना करें? हमारे अच्छे पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे प्रभु परमेश्वर, इतने सारे लोग बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि वे बहुत सी दवाई और सिरप लेकर डॉक्टर के पास गए हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई फायदा नहीं है और न ही कोई सुधार हो रहा है। प्रभु तू उनकी शक्ति बन और उनकी रक्षा करे। हे परमेश्वर, उन्हें अपनी आँख से दीवार की नाई खेले। हे परमेश्वर, तेरी शक्ति उन पर पूरी तरह उतरे, उनके जीवन में चमत्कार करें। तुम वही करने जा रहे हो जो मैंने अपनी प्रार्थना में कहा है। हजारों धन्यवाद। मैं आपको सारी स्तुति, महिमा और सम्मान देता हूँ। मैं अपने प्यारे यीशु मसीह हमारे पिता के नाम से विनम्रता पूर्वक ये भजन संहिता अध्याय 44 पद 8 की पुस्तक। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। हाँ प्रियो, हमें प्रतिदिन परमेश्वर के नाम की स्तुति करनी चाहिए। हमें उनके नाम की महिमा करनी चाहिए। यदि हमें अपने जीवन में ऊपर उठना है तो हमें प्रतिदिन प्रभु की महिमा करनी चाहिए और उनके नाम की महिमा करनी चाहिए। उसकी प्रशंसा करो। प्रभु निश्चित रूप से हमारे जीवन को ऊंचा करेगा क्योंकि वे हर दिन अपने नाम की महिमा करता है। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो। परमेश्वर आपको इस हद तक आशीष देने में सक्षम है कि आप उसे ऊंचा करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 20 पद 7 पद 8। किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे तब उठकर सीधे खड़े होंगे। आप कई लोगों के बीच कर्जदार हो सकते हैं, कई समस्याएं हो सकती हैं, परंतु जब हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे तब उसकी बड़ाई करके सीधे खड़े होंगे। यहोवा वह परमेश्वर है जो हमें खड़ा करता है। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो। प्रभु ने आपकी कर्ज की समस्या को बदल दिया होगा, चाहे आपने कहीं भी संघर्ष किया हो और चाहे आप कहीं भी झुके हों। उसी स्थान पर भगवान निश्चित रूप से आपको ऊपर उठाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे पिता जो हमें प्यार करते हैं और प्यार से मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके बच्चे दर्द में हैं और आंसू बहा रहे हैं पिता, उनमें से प्रत्येक के आंसू पोंछना चाहिए, उनकी चिंताओं को बदलना चाहिए, आशीर्वाद और उत्थान करना चाहिए, उनके दिलों में शांति दें। सभी परिवार शांति से हो, आपका हाथ उनकी रक्षा करे। आप जिस अनुग्रह के लिए ऐसा करने जा रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको सारी महिमा और सारा सम्मान देते हैं। हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह आज का वादा के नाम से प्रार्थना करते हैं।
0: अध्याय 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ प्यारे लोगों, हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने केवल इस संसार में आपके लिए एक बच्चे के रूप में जन्म लिया है। निश्चय वह तुम्हारे आंसू पोंछेगा, तुम्हारे दुखों को बदलेगा, वह तुम्हें पापों और शापों से छुड़ाएगा। निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे और मेरे लिए दिया गया है। दुख, आंसू और समस्याएं जो कुछ भी आपके पास हो, वह ही इसका समाधान कर सकता है। वह परमेश्वर का पुत्र है जो इस संसार को दिया गया है तुम्हारे लिए और मेरे लिए। उसे अपने दिल में पूरी तरह से स्वीकार करें। क्या आप जानते हैं कि वे कैसा है? उनका नाम अद्भुत है। वह चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। उनका जन्म अपने आप में एक आश्चर्य है। उनका जन्म वर्जिन मैरी के गर्भ में हुआ था। चिंता मत करो, वह तुम्हें सलाह देगा। वह न केवल अद्भुत परमेश्वर हैं, वे एक परामर्शदाता हैं। आपकी हर स्थिति में जब जरूरत होगी तो वह आपको सलाह देगा। आपकी जो भी आवश्यकता हो और जब भी आपको परामर्श की आवश्यकता हो, वह आपको परामर्श देगा। जब तू उसको पुकारे और जो जो युक्ति तुझे मिले वह प्रार्थना करे, तब वह तुझे सम्मति देगा। वह पराक्रमी ईश्वर है। वह आपकी सभी बीमारियों से चंगा करने के लिए पराक्रमी है। करना उसके लिए संभव है। वह पराक्रमी है। उसके पास आओ और पूछो। वह अपनी शक्ति से हमें चंगा करता है। वह अपने पराक्रमी को भेजेगा और तुम्हें चंगा करेगा। चिरस्थाई पिता, उन्होंने कहा कि मैं मर गया, लेकिन मैं हमेशा के लिए जीवित हूँ। हमेशा के लिए वह जीवित है। वह आपसे नहीं हटेगा, एक मिनट भी वे हाथ से नहीं हटेगा। वह शाश्वत जीवित परमेश्वर है। चिंता मत करो, शांति के राजकुमार हमारे प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं। वही शांति खुशी दे सकता है और आपकी समस्या को बदल सकता है। कोई भी समस्या हो, वह आपको शांति दे सकता है। क्या हम उसे पुकारें? क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया उन सभी को आशीर्वाद और मजबूत करें और उनकी रक्षा करें जो आपके शब्द सुनते हैं। उनके आंसू पोंछो, उनके दुख बदलो। तूने कहा है कि तू उनके सब मुखों पर से उनके आंसू पोंछ डालेगा। हे प्रभु, इसलिए उनके आंसू पोंछें, उनके दुखों को बदले, शांति, सुख और सांत्वना दें और कृपया उनके जीवन में सुधार करें। हे प्रभु, उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊपर उठाएं। आपकी कृपा उन पर बनी रहे। हे प्रभु, हम आपको सभी महिमा और स्तुति देते हैं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से भजन संहिता अध्याय 16 पद की पुस्तक। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। हाँ प्यारे लोगों, हमें प्रभु को हर चीज से पहले रखना चाहिए। हमें हर चीज में प्रभु को अपने सामने रखना चाहिए, चाहे वह व्यवसाय हो या परिवार।
1: क्या आपको कुरेजित की समस्या है? चिंता मत करो, यीशु से प्रार्थना करें। इस कर्ज को चुकाने में मेरी मदद करने के लिए परमेश्वर से पूछो, हे प्रभु, मुझे यह ऋण स्वयं चुका दो और प्रभु के हाथ में पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तब प्रभु निश्चय हमें प्रतिफल देगा, वह हमारी दुर्दशा बदल देगा, वह समस्या को बदल देगा और आपके काम, परिवार, व्यवसाय में आपके साथ रहेगा। चिंता मत करो। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 138 पद 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ प्यारे लोगों, जब हम उसे अपने सामने रखेंगे तो यहोवा हमारे लिए सब कुछ करेगा। चाहे कोई भी समस्या हो, अगर हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ भी करेगा। चिंता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, परमेश्वर तुम्हें अच्छी नौकरी देगा, वह तुम्हारे आंसू पोंछेगा और तुम्हें ऊंचा उठाएगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिताजी। अब हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस शो को सुन रहे हैं। सबका भला करो और उन्हें मजबूत करो। हर कुरेदित समस्या को बदलें। अब कर्जदारों को चुकाना होगा, उन्हें वो सब कुछ दें जो उन्हें चाहिए और आंसू पोंछ दें। जिन लोगों को काम में परेशानी हो रही है, उनके लिए काम पर समस्या बदलें और उन सभी को काम पर पदोन्नति दें। उनकी रक्षा करें। ईश्वरीय उपस्थिति हमेशा सबके साथ रहे। पारिवारिक समस्याओं को बदलना चाहिए और परिवार में बड़ी शांति लाना चाहिए। झगड़े सब कुछ बदल देते हैं। उनके आंसू पोंछे और परिवार में दिव्य शांति और खुशियां दे। ऐसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हम विनम्रता पूर्वक प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता 16:11। आमीन। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हाँ प्यारे लोगों, अनंत आनंद प्रभु के दाहिने हाथ में है। हम उनका आनंद, शांति और अनंत काल हमेशा के लिए प्राप्त करने जा रहे हैं। हाँ प्यारे लोगों, क्या आप कहीं खुशी के लिए, आनंद के लिए दौड़ रहे हैं? प्रभु के पास आओ, उनके उपस्थिति में दाई ओर शाश्वत आनंद है। आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? सीरियल देखकर खुशी हुई, उन्हें सिनेमा देखने में मजा आता है। कुछ लोगों को शराब पीने में मजा आता है, कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं तो खुश होते हैं। लोग आज हमेशा शांति के लिए भटक रहे हैं। कुछ लोग थोड़े खुश रहने के लिए शहर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये खुशी थोड़े समय के लिए ही होती है। लेकिन परमेश्वर के दाहिने हाथ में शाश्वत आनंद है, अलावा क्या नहीं। यदि हम प्रतिदिन उनके चरणों में बैठकर प्रार्थना करें, पवित्र बाइबल पढ़ें और उनके चरणों में खड़े हों, तो वे हमें आनंदित करेंगे। प्रतिदिन प्रभु के चरण की खोज करो और उसे खोजो। आनंद अधिक लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, वही हमारी प्यास बुझा सकते हैं। हम कितनी भी बार दौड़ें, हम कभी किसी आत्मा की प्यास नहीं बुझाते। हम बाहर देख सकते हैं या हम फिल्में देख सकते हैं, हम धारावाहिक देख सकते हैं, हम रिश्तेदारों के घर जा सकते हैं और वे सब जो हमें कभी शांति नहीं दे सकता, केवल यीशु मसीह ही हमारी प्यास बुझा सकते हैं। इसलिए यदि आप हमारे दिलों में आत्मा की प्यास बुझाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के पास आएं। वह आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। थकना मत, अपने आंसू पोंछ लो। आओ प्रार्थना करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, धन्यवाद। हे प्रभु, अपने बच्चों की प्यास बुझाओ। आप जहाँ जाते हैं वहाँ प्यास नहीं बुझती। आपके चरणों में आकर बैठने से ही आपको राहत मिलेगी। हम सभी के लिए अनंत आनंद और खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। हर किसी को आपके पास दौड़ने में मदद करें, उन्हें आशीर्वाद और ऊंचा करें। महान कार्य करो। आने वाला नवंबर वर्ष मंगलमय हो, आपके बच्चे समृद्ध हों, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हर किसी के पास आपके पास दौड़ने की कृपा होगी, उन्हें आशीर्वाद और ऊंचा करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाला नया साल आपके बच्चों के लिए वरदान साबित हो। हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ।
0: व्यवस्था
1: प्यारे पिता, आमीन।
0: अध्याय 30 श्लोक 5।
1: और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुँचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। तुम्हें गुणा करना परमेश्वर की इच्छा है। यदि आप गुणा करना चाहते हैं तो क्या करें? इब्रानियों अध्याय 6:14-15 कहता है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। क्या हम जानते हैं कि हमें अपने जीवन में समृद्ध और गुणा करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? हमें उसके द्वारा किए गए वादे के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। लंबे समय तक प्रभु के चरणों में प्रतीक्षा करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर के लिए गाना चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए और परमेश्वर को जानना चाहिए। तब परमेश्वर निश्चय तुम्हारे जीवन में तुम्हें गुणा करेगा। उसने आशीर्वाद और गुणा करने का वादा किया है। हमें अपने जीवन में वादा पूरा होने तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए और उसके भजन गाना चाहिए, परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए। यदि हम अपने हृदय में ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु हमारे जीवन में हमें गुणा करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस जीवित वचन को सुनने वाले सभी के जीवन में बहुतायत दे, उन्हें हर चीज में गुणा करने दे, आशीर्वाद और लाभ प्रचुर मात्रा में हो। हम आपको पूरा सम्मान और गौरव देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
0: एक
1: प्यारे अध्याय 7:23।
0: आमीन।
1: तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। हाँ प्यारे लोगों, आज बहुत से लोग मानव परामर्श के आदि हैं। वे प्रभु के वचनों को नहीं सुनते। वे मानवीय शब्दों और आदेशों के गुलाम हो जाते हैं। मानव प्रेम की लालसा में वे इसमें पड़ जाते हैं और गुलाम बन जाते हैं। कुछ उन्हें प्रसन्न करते हुए मानव के गुलाम बन जाते हैं। कुछ लोग कर्ज में डूब जाते हैं और गुलाम बन जाते हैं। कुछ लोग ऋणदाता के आदि हो जाते हैं। कभी किसी इंसान का गुलाम मत बनो। भगवान जो कहते हैं उसका पालन करें। अपनी आत्मा को मत खोना। अभी भी अन्य लोग बैंक के कर्जदारों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करके बंधन में बंधे हैं। आइए हम ऐसी गुलामी में न फंसे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6:12। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। इसलिए किसी भी आदमी के गुलाम मत बनो। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिताजी, क्या आप इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद, शांति, आनंद और आराम प्रदान करें? सभी लोगों को ऊपर उठाना चाहिए। हाँ परमेश्वर। और दाऊद ने कहा, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मेरे परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में भी ऐसा ही करें जो अब आपका वचन सुन रहे हैं। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। आपको उनके जीवन में चमत्कारी कार्य करने चाहिए। तुम वही करने जा रहे हो जो मैंने अपनी प्रार्थना में की है। हजारों और हजारों धन्यवाद। मैं आपको सारी स्तुति, महिमा और सम्मान देता हूँ। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं।
0: निर्गमन अध्याय 35:17।
1: आमीन।
0: यहोवा ने
1: मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है।
0: हाँ मेरे प्यारे लोग, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सब नाम जानता है।
1: कितनी बार हम बड़बड़ाते थे कि भगवान मेरी समस्या नहीं जानता, वह मेरी चिंताओं को नहीं जानता। आप में से कितने लोगों ने बड़बड़ाया है, आज भगवान से क्षमा मांगे। प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर और अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर।
0: हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सब नाम जानता है और आपकी जरूरत भी जानता है। वह आपकी कमियों और जरूरतों के बारे में सब जानता है, इसलिए हमें

मैं उससे कहना चाहिए कि वह आपको शुद्ध करे और उसके चरणों में आंसुओं के साथ आपके पाप को स्वीकार करे। निश्चय ही वो तुम्हें आशीष देगा। इतना ही नहीं, यशाया अध्याय 43 पद 1 की पुस्तक, हे इसराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। क्या तुमने मेरे प्यारे लोगों को देखा? भगवान ने आपको नाम से बुलाया है, तो डरो मत, तुम भगवान के हो। भगवान कहते हैं तुम मेरे हो। हाँ, हम भगवान के हैं। एक दिन जब मैंने अपने माता पिता को खो दिया तो मैं रोया कि कोई नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तेरा छुड़ाने वाला जीवित है, परमेश्वर ने मुझसे कहा। तो उस दिन से वे मेरे पिता माता बन गए और मेरी सभी जरूरतों को पूरा किया। वह मेरा हाथ पकड़कर आज तक मेरा मार्गदर्शन करता आ रहा है। हर जरूरत को भगवान ने मेरी मदद करने के लिए एक व्यक्ति दिया है। मेरे प्यारे लोगों, क्या वह तुम्हारे लिए वह नहीं करेगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है? तो रो मत, आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम विनम्रता पूर्वक आपकी उपस्थिति में आते हैं। जो आपके जीवित वचनों को सुनते हैं उनके आंसू पोंछते हैं, चिंताओं को दूर करते हैं और अपने जीवन में चमत्कार करते हैं, उनकी समस्याओं को बदलते। भगवान आप उनकी ताकत, आश्रय, छाया, शरण और गढ़ बनो, उनका नेतृत्व करो। हे प्रभु, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, तेरी महिमा उन्हें उनके लिए अग्निगढ़ के समान खेले। महिमा में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। हम जितना प्रार्थना करते हैं उससे कहीं अधिक परमेश्वर हमें देगा। उन्हें आशीर्वाद दें, उनका पालन पोषण करें, उन्हें ताज पहनाएं और उनकी रक्षा करें। मैं आपको सारी स्तुति, महिमा और सम्मान देता हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक

0: परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और ये घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए।
1: जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर ही नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करता है। मैं ज्योति बनकर इस जगत में

जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरती है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है।

0: अध्याय 54:5 और इसराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। हाँ प्रियजनों, क्या आप परमेश्वर का नाम जानते हैं? वह एक नाम रक्षक है, वह हमारा उद्धार करता है। रोग से पीड़ित होने पर दिन कब आता है और रात कब आती है कि हमें सताया जाता है? परमेश्वर हमें सब कुछ से छुड़ाएगा, वह हमारा उद्धार करता है। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो, वह हमें हर हाल में आजाद कर देगा। कर्ज की समस्या के बारे में चिंता मत करो, आंसू पोंछ लो। भजन संहिता की पुस्तक 39वें अध्याय श्लोक 15। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हम बचाए जाएंगे और नरक की शक्ति से मुक्त होंगे। तो चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछो, वो हमारा उद्धार करता है। हम उसे मजबूती से पकड़ेंगे, हम जीने के लिए उस पर निर्भर रहेंगे। नित्य प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना में जागते रहो, निश्चय ही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो प्यार से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। अब अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, उनकी रक्षा करें, उनमें से प्रत्येक शाप, पाप, आंसू, दर्द, ऋण, बीमारी और पीड़ा से मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, आत्मा को अंडरवर्ल्ड की शक्ति से बचाएं। प्रभु महान कार्य करें, आशीर्वाद आराम देना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यीशु मसीह
1: का वादा
0: पिता के नाम से पत्रस लिखता है,
1: दो पत्रस पुस्तक अध्याय 1:19। और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है। और तुम ये अच्छा करते हो कि जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। अंधेरे में केवल प्रभु का शास्त्र ही चमकता है। हमें उस शास्त्र को देखने की जरूरत है। प्रतिदिन शास्त्रों का पाठ करें और मनन करें, दिल में अंकित हो जाना, तदनुसार किया जाना है, तब परमेश्वर का प्रकाश हम पर चमकेगा। इसी कारण भजनहार कहता है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 119:105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसके अलावा भजनकार कहता है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 119:130, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को अहमियत दो। इसलिए पत्रस लिखता है, 1 पत्रस पुस्तक अध्याय 2:2, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रभु के शास्त्रों को अपने भीतर रखने से न केवल हमें अंधेरे में प्रकाश मिलता है, बल्कि हमारे रास्ते फिसलने से भी बचते हैं। भजनकार कहता है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 37:31, उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्नेही अग्रणी स्वर्गीय पवित्र पिता, हे पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर देखते हैं। उन सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उनके आंसू पोंछें जो इस संदेश को सुनते हैं। हे प्रभु, परिवार में सभी समस्याओं को बदलना चाहिए, उन्हें उनकी बीमारी से मुक्त करें, उन्हें उनके आंसुओं से मुक्त करें, उन्हें उनके श्राप और पापों से मुक्त करें और उन्हें उनकी चिंताओं से मुक्त करें। एक साथ प्रार्थना करने में हमारी मदद करें। परमेश्वर, कुछ यात्रा कर रहे हैं, उन्हें बचाओ। प्रभु, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ, मेरे परिवार में हमेशा एक समस्या है जो चिंता कर रहे हैं, उनका उद्धार करो और अपने नाम की महिमा करो। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ, नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।

0: a product from Gino Kumbhambada Music Factory.
1: और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे हृष्ट पुष्ट हो जाता है। हाँ प्रिय लोगों, आपको प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। वह आपके जीवन में समृद्धि लाएगा, वह आपके व्यवसाय में समृद्धि लाएगा, वह आपके पेशे में समृद्धि लाएगा, वह आपकी मुश्किलों को बदल देगा और आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। आप जहाँ भी जाए परमेश्वर आपको आत्माओं को परमेश्वर के पास लाने का आशीर्वाद दे। आपको अच्छी आध्यात्मिक समृद्धि भी मिलेगी। आप प्रभु के भीतर अच्छी तरह विकसित हो सकते हैं। हमेशा प्रभु पर भरोसा रखें। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेगा। उस पर विश्वास करो, पूरा विश्वास करो। पवित्र शास्त्र कहता है कि अनुग्रह उन्हें घेर लेता है जो प्रभु पर भरोसा करते हैं। उस पर पूरा भरोसा करें, वह तुम्हें अनुग्रह से घेर लेगा। इतना ही नहीं, होशे अध्याय 12:25 की पुस्तक कहती है, और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोहता रहे। हमें उस पर लगातार भरोसा करना चाहिए। एक बार जब आपको लाभ हुआ हो तो प्रभु पर भरोसा करना न छोड़ें। पवित्र शास्त्र हमें बिना रुके अपने परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए कहता है, यीशु मेरे लिए काफी है चाहे कुछ भी आए। और अगर हम दृढ़ता से मानते हैं कि मुझे यीशु की आवश्यकता है तो प्रभु आपके जीवन में असीम आशीर्वाद, शांति और आनंद लाने और आपको ऊंचा करने में सक्षम है। थकना मत। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। धन्यवाद पिताजी। हर उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार करें जो आपके जीवित वचनों को सुनता है। उन्हें आप पर भरोसा करने में मदद करें, आप पर निर्भर रहें और आपको जानें। अविवाहित बच्चों की अच्छी शादी करनी चाहिए। व्यवसायिक परिवारों को अपना व्यवसाय बेहतर ढंग से चलाने में सहायता करें। व्यवसायी परिवारों को बेहतर व्यवसाय करने का आशीर्वाद दें। हर परिवार को आशीर्वाद दें। परिवारों में पाई जाने वाली सभी समस्याओं और संघर्षों को बदलें। हम प्रार्थना करते हैं कि ये सभी लोग धैर्य और उन्नत हों और आपके बच्चों को आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का आशीर्वाद मिले। उनके आध्यात्मिक जीवन में हर दिन बढ़ने में उनकी मदद करें। परमेश्वर की सेवा करने वाले प्रत्येक सेवक के लिए कई आत्माएं उपलब्ध हों। परमेश्वर को परमेश्वर के सेवकों के लिए बहुत सारी आत्माओं को लाने में मदद करनी चाहिए जो चिंतित हैं कि वे आत्माओं को परमेश्वर के पास नहीं ला पाएंगे। परमेश्वर के सेवकों का बहुत शक्तिशाली उपयोग करें। आशीर्वाद और महिमा दो। हम आपको सभी प्रशंसा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
2: परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, मुसीबत में एक बहुत ही वर्तमान मदद। क्या आप चिंतित हैं कि इस दुनिया में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है? चिंता मत करो, मुझे दिलासा देने वाला भी कोई नहीं। क्या आप इससे चिंतित हैं? चिंता मत करो, संकट के समय यहोवा हमारा सहायक है, वह किसी भी स्थिति में हमारा साथी होगा। चिंता मत करो, वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो, परमेश्वर महान कार्य करेगा। लेकिन क्या हम जानते हैं कि क्या करना है? हे इसराइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे इसराइल, यहोवा पर भरोसा रख, वह उनका सहायक और ढाल होगा। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो वे आपका सहायक और ढाल होगा। हमें हर दिन उस पर भरोसा करना चाहिए। निश्चय ही वो तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा, वह अच्छाई लाएगा, वह तुम्हारे आंसू पोंछ देगा, वह आपकी सारी चिंताओं को बदल देगा। आज से प्रभु पर भरोसा रखें, नए दृढ़ संकल्प के साथ प्रभु में विश्वास करें, ये कहते हुए कि मैं अब प्रभु पर भरोसा रखूंगा। वह आपका हाथ पकड़ेगा और आपको आपका साथी और ढाल बनने से आशीर्वाद देगा। क्या हम प्रार्थना करें? हे हमारे प्रेमय धन के परमेश्वर, कितने लोग आंसू बहा रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है। संकट की घड़ी में उन्हें एक अनुकूल साथी बनने से बचाएं। उन्हें आप पर भरोसा करने की महान शक्ति दें। उन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। हर दिन उनका हाथ पकड़ें, उनके दुखों से उनकी रक्षा करें और अनेक क्लेशों की इस घड़ी में उनकी रक्षा करें। हम आपके लिए सभी महिमा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।

भगवान के तुल्य कौन है? हाँ प्यारे लोगों, किसी कार्य को करने के लिए बुद्धि ही कुंजी है। मैं ये नहीं जानता, सोच रहा था कि ये कैसे करें। क्या आप चिंतित हैं कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ? क्या करें, मैं परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला सकता? क्या हम व्यवसाय में हैं और क्या आप चिंतित हैं कि मैं ये व्यवसाय ठीक से नहीं कर पाऊंगा? परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा, हर दिन उससे ज्ञान मांगो। प्रभु से आपको बुद्धि देने के लिए कहें, प्रभु तुम्हें सब कुछ ठीक करने की बुद्धि देगा। हे प्रभु, मुझे सब कुछ करने की बुद्धि दे। परमेश्वर मुझे सारी बुद्धि देगा। पढ़ने वाले बच्चों को परमेश्वर से ज्ञान मांगना चाहिए। वह कहता है कि यदि तुम में से किसी को

बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो जो सबको देता है। यदि तू प्रभु से मांगेगा तो वह तुझे बुद्धि देगा। प्यारों, निश्चय ही वो तुम्हें सब कुछ सुचारू रूप से करने के लिए बुद्धि और अनुग्रह देगा। पवित्र शास्त्र कहता है, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 1 श्लोक 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। क्या तुमने ध्यान दिया? प्रभु मुझे देखता है। परमेश्वर उन लोगों को बुद्धि देगा जो उसका भय मानते हैं। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। प्रभु से डरो, वह तुम्हें बुद्धि देगा। वह तुम्हें निश्चय बुद्धि देगा। वह तुम्हें सब कुछ करने की बुद्धि देगा। आप कुछ भी कर सकते हो। क्या हम प्रार्थना करें? प्रिय प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। कितने लोग इस समय, मेरे पास परिवार बढ़ाने की बुद्धि नहीं है, मेरे पास अपने बच्चों को पालने की बुद्धि नहीं है, मुझे नहीं पता कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। चिंतित माता पिता को ज्ञान देना चाहिए। बच्चों के इलाज के लिए आपको बुद्धि देनी चाहिए। जो अपना परिवार चलाना और व्यवसाय चलाना नहीं जानते, उन्हें ज्ञान देना चाहिए। आप हर परिवार के लिए जिम्मेदार हैं। आपको सभी को बीमारियों और फलों से आशीर्वाद देने और उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। आपको श्राप की शक्ति को नष्ट करना होगा। हम आपको सारी महिमा और महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्यारे पिता। आमीन, आमीन।

0: A product from Gino Kunyambadat Music Factory.
1: क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ प्यारे लोगों, हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने केवल इस संसार में आपके लिए एक बच्चे के रूप में जन्म लिया है। निश्चय वह तुम्हारे आंसू पोंछेगा, तुम्हारे दुखों को बदलेगा, वह तुम्हें पापों और शापों से छुड़ाएगा। निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे और मेरे लिए दिया गया है। दुख, आंसू और समस्याएं जो कुछ भी आपके पास हो, वह ही इसका समाधान कर सकता है। वह परमेश्वर का पुत्र है जो इस संसार को दिया गया है तुम्हारे लिए और मेरे लिए। उसे अपने दिल में पूरी तरह से स्वीकार करें। क्या आप जानते हैं कि वे कैसा है? उनका नाम अद्भुत है। वह चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। उनका जन्म अपने आप में एक आश्चर्य है। उनका जन्म वर्जिन मैरी के गर्भ में हुआ था। चिंता मत करो, वह तुम्हें सलाह देगा। वह न केवल अद्भुत परमेश्वर हैं, वे एक परामर्शदाता हैं। आपकी हर स्थिति में जब जरूरत होगी तो वह आपको सलाह देगा। आपकी जो भी आवश्यकता हो और जब भी आपको परामर्श की आवश्यकता हो, वह आपको परामर्श देगा। जब तू उसको पुकारे और जो जो युक्ति तुझे मिले वह प्रार्थना करे, तब वह तुझे सम्मति देगा। वह पराक्रमी ईश्वर है। वह आपकी सभी बीमारियों से चंगा करने के लिए पराक्रमी है। करना उसके लिए संभव है। वह पराक्रमी है। उसके पास आओ और पूछो। वह अपनी शक्ति से हमें चंगा करता है। वह अपने पराक्रमी को भेजेगा और तुम्हें चंगा करेगा। चिरस्थाई पिता, उन्होंने कहा कि मैं मर गया लेकिन मैं हमेशा के लिए जीवित हूँ। हमेशा के लिए वह जीवित है। वह आप से नहीं हटेगा, एक मिनट भी वह आप से नहीं हटेगा। वह शाश्वत जीवित परमेश्वर है। चिंता मत करो। शांति के राजकुमार, हमारे प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं। वही शांति खुशी दे सकता है और आपकी समस्या को बदल सकता है। कोई भी समस्या हो, वह आपको शांति दे सकता है। क्या हम उसे पुकारें? क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया उन सभी को आशीर्वाद और मजबूत करें और उनकी रक्षा करें जो आपके शब्द सुनते हैं। उनके आंसू पोछो, उनके दुख बदलो। तूने कहा है कि तू उनके सब मुखों पर से उनके आंसू पोंछ डालेगा। हे प्रभु, इसलिए उनके आंसू पोछें, उनके दुखों को बदलें, शांति, सुख और सांत्वना दें और कृपया उनके जीवन में सुधार करें। हे प्रभु, उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊपर उठाएं। आपकी कृपा उन पर बनी रहे। हे प्रभु, हम आपको सभी महिमा और स्तुति देते हैं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। अध्याय 13 आमीन। इसलिए हम बेधक होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, परमेश्वर हमारा सहायक है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। क्या आपको किसी से धमकी भरा पत्र मिलता है? या आप मुसीबत में हैं? उसने मुझ पर मुकदमा किया, उसने मुझ पर मुकदमा किया, क्या आपको इसकी परवाह है? परमेश्वर हमारा सहायक है, इसलिए आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, व्यवस्था विवरण अध्याय 7 श्लोक 21, उससे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भययोग्य ईश्वर है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जो परमेश्वर हमारे भीतर है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए चिंता न करें। कोई परेशानी हो तो घबराए नहीं। अगर आपके खिलाफ कई लोग उठ खड़े हों तो चिंता न करें। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। कोई भी समस्या आपको नष्ट नहीं करेगी। उससे प्रार्थना करो। वह आपके जीवन में महान कार्य करेगा। निश्चय ही यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार और चमत्कार करेगा। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, एक हजार हजार धन्यवाद। मेरे प्यारे प्रभु, इस शो को देखने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उनका उत्थान करें, उनके जीवन में महान कार्य करें और महान कार्य करें। मैं आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु। बहुत से लोग पैसे की समस्या से पीड़ित हैं। उनकी पैसे की समस्या को बदलना चाहिए परमेश्वर। सोना चांदी तुमने कहा था कि सब कुछ तुम्हारा है। तुमने कहा था कि तुम उन्हें चांदी और सोने से समृद्ध करोगे, उनके जीवन में बड़े चमत्कार करें और अपने नाम की महिमा करें। उनके आंसू बदलो, उनकी चिंताओं को बदलें। वे इस दिन से आगे आपका आशीर्वाद, शक्ति और अनुग्रह देखें। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। आप उसके जीवन में सब कुछ करने जा रहे हैं और उसके लिए मैं आपको 1000 बार धन्यवाद देता हूँ। मैं तुम्हें सारी महिमा और अनुग्रह देता हूँ। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से जकर्या अध्याय 2:10 की पुस्तक, हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख, मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। हाँ प्यारे लोगों, जब हम परमेश्वर का भजन गाएंगे तब वह आकर हमारे बीच वास करेगा। वह हमें वास करेगा। जब वो हमारे बीच आता है तो वे कितना खुश होता है। हम कितने खुश होते अगर इस दुनिया में डॉक्टर या महान अधिकारी हमारे अपने होते। हम में से कितने लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। परंतु ये क्या ही बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह आकर हम में वास करें। हमें उसके लिए गाना चाहिए। उसने कहा है कि वह आकर हम में वास करेगा। वह कह रहा है कि वह तुम्हारे बीच आएगा। ये क्या ही बड़ा आनंद है, क्या ही बड़ा आनंद है। प्यारों, प्रतिदिन प्रभु की स्तुति करो। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों अध्याय 14:15, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हमें पूरे जोश और सोच के साथ गाना चाहिए। जब हम ऐसा गाएंगे तो यहोवा आकर हम में वास करेगा। वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। आपने कितनी बड़ी खुशी, ये क्या ही आनंद की बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, समुद्र और फव्वारे का निर्माता हमारे भीतर है। और आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपकी पूरे आत्मा और दिमाग से गाने में आपकी मदद करे। बेशक वह आकर हम में वास करेगा। क्या अब हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। धन्यवाद। अपनी स्तुति गाने में मेरी मदद करें। पिताजी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके लिए हमारे साथ थाना और रहना कितना बड़ा सौभाग्य है। प्रभु यीशु, हमें हमारी पूरी आत्मा और हमारे पूरे दिल से गाने में मदद करें। अपने नाम की महिमा करने में हमारी मदद करें। पिताजी, हम आपकी सराहना करते हैं। आपको जीवित वचनों को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की चिंताओं और दुखों को बदलने की आवश्यकता है। हर आंसू पोंछें और अपार खुशी दें। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। ये करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम यीशु मसीह के
2: आज
1: नाम
2: का
1: से
2: वादा
1: न करते।
2: यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। कितने लोग आंसू और पीड़ा में बिना शांति के हैं, है न? चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। चिंता मत करो, यीशु वह परमेश्वर है जो हमें शांति देता है। वही हमें शांति दे सकता है। उसी ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सोतों और सब वस्तुओं को बनाया। इसलिए वह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने आंसू पोंछ लो। आप धारावाहिक देख सकते हैं कि शांति नहीं है। आप फिल्में देख सकते हैं कि शांति नहीं है। यह सब व्यर्थ है। वह शांति स्थायी नहीं है। बहुत बड़ा भाइयों और बहनों, जो शांति प्रभु देता है वो शाश्वत है और हमें नहीं छोड़ेगी। यशाया की पुस्तक अध्याय 26 पद 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ प्रियो, हमें यीशु को दृढ़ता से थामे रहने की जरूरत है। आज शांति मिली है, हर मत मानो कि तुम उसे छोड़ सकते हो। मजबूती से पकड़ना है, तुम्हें पता है कब तक? अंत तक मजबूती से पकड़ना चाहिए। यदि आप उसे थामे रहेंगे तो वह आपको नदी की तरह शांति देगा। वह शांति के देवता है। वह जो शांति देता है उसे कोई नहीं छीन सकता। वह आपके जीवन में महान कार्य करेगा। यीशु को थामे रहो, आपको उस पर भरोसा करना होगा। वह हमें पूरी शांति देगा। क्या आपको लगता है कि शांति नहीं है? मेरे पास कोई माँ नहीं है, कोई पिता नहीं है, भाई बहन में से कोई नहीं, कोई आंख नहीं, परंतु यहोवा ने मुझे अपनी पूर्ण शांति दी है। आपको उसे मजबूती से पकड़ना होगा। प्यारों, जब आप भ्रमित और थके हुए हों तो आपको यीशु से पूछना चाहिए, यीशु मुझे शांति दो। तब वह तुम्हें निश्चय शांति देगा। वह आपके जीवन में महान कार्य करेगा। जरूर देंगे, आधे मन से नहीं, पूरे मन से यीशु को थामे रहो। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता, जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग बिना शांति और बिना सुख के हैं, उन्हें शांति और खुशी दे परमेश्वर। उन्हें आराम और अच्छाई दो, आशीर्वाद और लाभ सभी को घेरें। उन्हें अपनी शांति से भरें। वे हर जगह शांति के लिए दौड़ते हैं। क्या वहां जाने से शांति होगी? वे दौड़ रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों को शांति देनी चाहिए। आपको हम सब पर शासन करना चाहिए। महान कर्म करो, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं।
3: अच्छा पिताजी, मैं आप सभी को मेरी ओर से नवंबर वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। सपयाह की पुस्तक अध्याय 3 पद 15। यहोवा ने 13 दंड दूर कर दिया और 13 शत्रु भी दूर किया गया है। इसराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। अब आप नुकसान नहीं देखेंगे। चाहे कितने ही लोग काम से बाहर हों, चाहे वे कितनी भी मेहनत कर लें, यहोवा ने कहा था कि वो 2022 में आपके बीच होगा। प्रभु को अपने बीच रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हागाई की पुस्तक अध्याय 2 पद 5। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। मिस्र का क्या मतलब है? व्यवस्था विवरण अध्याय 6 श्लोक 12। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। गुलामी का क्या मतलब है? पापपूर्ण दासता को संदर्भित करता है, इसलिए हमें पाप के बंधन से बाहर आना चाहिए। तब परमेश्वर हमारे बीच रहेगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। क्या हम निश्चित रूप से पाप से बाहर आने के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्या हम प्रार्थना करें? स्वर्गीय पवित्र पिता, हम धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं। पिछले वर्ष के कई खतरों और विपत्तियों के दौरान हमारी रक्षा करने, दृढ़ करने और दृढ़ करने के लिए मेरे परमेश्वर यहोवा का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु इस पूरे वर्ष सभी के साथ रहें। पीछे हटने से बचना चाहिए और सभी चिंताओं, आंसुओं, पीड़ाओं को बदलना चाहिए। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्यारे पिता। आमीन, आमीन।

मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे मौका मिला है आपके सामने भजन संहिता 139 को पेश करने का। इसमें लिखा है, दोनों आलम में कौन तुझसा है, अपने जैसा तो तू ही अकेला है।

0: हमारे खुदा। आज का वादा भजन संहिता अध्याय 9-10 की पुस्तक भजनहार दाऊद कहता है, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हाँ प्रियो, यदि हम परमेश्वर को ढूंढें तो वे हमें कभी न त्यागेगा। हमें प्रतिदिन प्रभु की खोज करनी चाहिए। सुबह उठकर उससे प्रार्थना करें। आपको धन्यवाद देना चाहिए उनकी पवित्र बाइबल पढ़ने के लिए। यदि हम प्रभु की स्तुति करते रहें तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 34:10। जवान सिंहों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। हाँ प्रियो, यदि हम परमेश्वर को खोजेंगे तो सब भलाई हमारे पास आएगी। प्रतिदिन प्रभु को खोजो, प्रभु निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में सभी आशीर्वाद देगा और आपको ऊंचा करेगा, ताकि कोई अच्छाई कम न हो और कोई आशीर्वाद कम न हो। प्रतिदिन प्रभु को खोजो, निश्चित रूप से वे आपको आशीर्वाद देगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे अच्छे पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये वादा सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद और उत्थान करे। आपको किसी भी आशीर्वाद को खोए बिना अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए। आप जो प्यार करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह
1: आज का वादा के नाम से योएल की पुस्तक अध्याय 2:28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। कई लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक की तलाश में हैं। आप पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने और वैसे भी उसे जानने की लालसा रखते हैं। निश्चय ही यहोवा पवित्र आत्मा का अपना अभिषेक तुम पर उंडेलेगा। इसलिए उन्होंने वादा किया था। जॉन अध्याय 16:13 का सुसमाचार। परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ प्यारे लोगों, ज्यादातर लोग सच्चाई नहीं जानते हैं। जब पवित्र आत्मा आप में आता है तो वे आपको बाइबल में सब कुछ और सब कुछ बताता है। आइए अभिषेक ग्रहण करें। आइए आज प्राप्त करते हैं। आप कहते हैं कि मैं बाइबल नहीं समझता। वह निश्चित रूप से आपको बाइबल में सब कुछ और सब कुछ बताएगा। आइए अब प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, परमेश्वर के इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पवित्र आत्मा से अभिषेक करें। भगवान सब पर कृपा करे। शास्त्रों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि और बुद्धि दो। उन्हें अपनी दया दो। पवित्र आत्मा जो सब कुछ सिखाती है, सब सिखाया जाना चाहिए। हम आपको सारी महिमा देते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक सर्वशक्तिमान यीशु के नाम से पूछता हूँ।
0: अध्याय 7:23। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। हाँ प्यारे लोगों, आज बहुत से लोग मानव परामर्श के आदि हैं। वे प्रभु के वचनों को नहीं सुनते। वे मानवीय शब्दों और आदेशों के गुलाम हो जाते हैं। मानव प्रेम की लालसा में वे इसमें पड़ जाते हैं और गुलाम बन जाते हैं। कुछ उन्हें प्रसन्न करते हुए मानव के गुलाम बन जाते हैं। कुछ लोग कर्ज में डूब जाते हैं और गुलाम बन जाते हैं। कुछ लोग ऋणदाता के आदि हो जाते हैं। कभी किसी इंसान का गुलाम मत बनो। भगवान जो कहते हैं उसका पालन करें। अपनी आत्मा को मत खोना। अभी भी अन्य लोग बैंक के कर्जदारों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करके बंधन में बंधे हैं। आइए हम ऐसी गुलामी में न फंसे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6:12। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। इसलिए किसी भी आदमी के गुलाम मत बनो। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिताजी,
1: क्या आप इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद, शांति, आनंद और आराम प्रदान करें? सभी लोगों को ऊपर उठाना चाहिए। हाँ परमेश्वर। और दाऊद ने कहा, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मेरे परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में भी ऐसा ही करें जो अब आपका वचन सुन रहे हैं। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। आपको उनके जीवन में चमत्कारी कार्य करने चाहिए। तुम वही करने जा रहे हो जो मैंने अपनी प्रार्थना में की है। हजारों और हजारों धन्यवाद। मैं आपको सारी स्तुति, महिमा और सम्मान देता हूँ। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, प्यारे पिता। आमीन, आमीन।

चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस गीत से परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद। जय मसीह की।

मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है।

एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु को उस कोढ़ी पर तरस आया और अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जाए। फौरन उस आदमी का कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया।

0: आज का वादा एक यूहन्ना अध्याय 4:4 है। बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ प्यारे लोगों, क्या आप जादू से प्रभावित हुए हैं? इसे देखने से डरो मत, चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह महान है, वह आपकी समस्या से बड़ा है। कोई समस्या कुछ नहीं कर सकती। परमेश्वर जो हम में है वह महान है। चिंता मत करो, परमेश्वर महान कार्य करेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 7:21 की पुस्तक कहती है, उससे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। हमारे पास जो विरोध आ रहा है उसे देखकर डरो मत, परेशान मत हो, क्योंकि यहोवा महान है, वह तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। चिंता मत करो। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, धन्यवाद यीशु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। कितने लोग परेशान हैं कि किसी ने मुझ पर जादू कर दिया। मुझे एक समस्या है, मुझे बहुत समस्या है, मेरे पास ब्याज ऋण है और लोग चिंतित हैं कि मैं इस ब्याज ऋण का भुगतान कैसे कर सकता हूँ। ऑफिस में किसी तरह की परेशानी होने से कुछ लोग परेशान हैं। हर आंसू पोंछो और सभी समस्याओं को बदलो और हर लोगों को आराम और खुशी दो। प्रभु आपको महान कार्य करना चाहिए। हे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। उन बच्चों को स्मृति अवश्य दे जो चिंतित हैं कि परीक्षा आ रही है। उन बच्चों को अच्छी बुद्धि देनी चाहिए जो चिंतित हैं कि वे जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूल जाते हैं। आपको बड़ा काम करना चाहिए। प्रेम के परमेश्वर सभी को आराम, शांति और खुशी दे और उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें ऊंचा करें। हम आपको सारी महिमा देते हैं और हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्यारे पद 25, आमीन। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे हृष्ट पुष्ट हो जाता है। हाँ मेरे प्यारे, आप मेरे भगवान पर भरोसा करते हैं, वह आपको आपके जीवन में समृद्धि, आपके व्यवसाय में समृद्धि देगा। वह आपकी सभी समस्याओं को बदल देगा और आपके परिवार को समृद्ध बनाएगा। प्रभु के सेवकों, वह आपको आपकी सुसमाचारीय सेवकाई में समृद्धि देगा। आप जहाँ भी जाते हैं आप आत्माओं को जीत सकते हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन में भी आप समृद्ध होंगे और अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करेंगे। क्या आपको हमारे प्रभु पर भरोसा है? तब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उस पर भरोसा करो, उस पर पूरा भरोसा करो। बाइबल कहती है भजन संहिता अध्याय 32:10, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे करुणा से घिरा रहेगा। यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो अनुग्रह निश्चित रूप से आपको घेर लेगा। इसलिए बिना अंतराल के प्रभु पर भरोसा रखें। हमें सिर्फ एक दिन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जब हमें आशीर्वाद मिलता है और जब हम समस्याओं में होते हैं तो हमें छोड़कर परमेश्वर से दूर नहीं जाना चाहिए। बाइबल कहती है भजन संहिता अध्याय 62:8 है, लोगो हर समय उस पर भरोसा रखो। जो भी आए हमें ये कहना चाहिए कि यीशु तुम मेरा भरोसा हो। प्रभु हम सबका सब कुछ है, इसलिए उस पर पूरा भरोसा करें। वह आपको बिना सीमा के सुख शांति देने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, हम आप भारी हृदय से आपकी स्तुति करते हैं। पिता, जो आपके जीवित वचनों को सुन रहे हैं उन्हें धैर्य होने में मदद करें। उन्हें आप पर भरोसा करने की शक्ति दें। उन्हें आपके बारे में और अधिक जानने दें। भगवान, जिन बच्चों की अभी तक शादी नहीं हुई है उनकी जल्द से जल्द शादी करने में मदद करें। जो लोग व्यापार, आपको उद्यमी के परिवार को आशीर्वाद देना है, कृपया सभी पारिवारिक समस्याओं और चिंताओं और झगड़ों को बदल दें। उन्हें जीवन में आशीर्वाद और उत्थान करना चाहिए। उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने दें और आपकी कृपा से उनकी आत्मा को दिन प्रतिदिन ईश्वर में बढ़ने दें। चिंता करने वालों के द्वारा किसी भी आत्मा को प्रभु के पास नहीं लाया जा सकता है। आत्माओं को अपने पास लाने के लिए ज्ञान दें पराक्रमी प्रभु। अपने लोगों का उपयोग करें और उन्हें आशीर्वाद दें। मैं नम्रता से उस पराक्रमी नाम यीशु हमारे प्रभु को
1: आज का वादा महिमा और सम्मान देता हूँ।
0: पुस्तक अध्याय 23:6 और मैं यहोवा के दाम में सर्वदा वास करूँगा। हाँ प्यारे लोगों, इस दुनिया में हमारे पास कितने भी घर हों, ये स्थायी घर नहीं है। हम जहाँ कहीं भी हों, हमें हर दिन तैयार रहना चाहिए। जब तक हम दुनिया में हैं, हमेशा के लिए प्रभु के घर में रहने के लिए हर दिन प्रभु के साथ रहना। हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए कि हम इस सांसारिक अशुद्ध जीवन से अचानक प्रभु के घर जाएंगे। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें प्रभु के साथ रहना चाहिए। हमें प्रतिदिन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, प्रभु की स्तुति करनी चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। उसे पूरी तरह जानना चाहते हैं। उसे पूरी तरह से जानने की प्यास और लालसा हमारे आत्मा में उमड़नी चाहिए, तभी हम हमेशा के लिए प्रभु के घर में रह सकते हैं। यहोवा का घर स्वर्ग है। हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए कि हम वैसे भी इस दुनिया में रहेंगे और प्रभु के घर में रहेंगे। इफिसियों अध्याय 5:16 की पुस्तक कहती है, और अवसर को बहुमूल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर ईसा मसीह जल्द ही आ रहे हैं। जब हम देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है, वह आकर हमें स्वर्ग में ले जाएगा। बुरे दिन हैं। हर तरफ कोरोना वायरस, हर तरफ डेंगू बुखार, हर तरफ स्वाइन फ्लू, हर तरफ बाढ़ और तबाही ही समस्या है। क्या हमने अपने दिनों में कभी ऐसी बीमारियों के बारे में सुना है? बिल्कुल नहीं। हाँ प्यारे लोगों, ये दिन खराब हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि आप अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। इन दिनों का उपयोग प्रभु के लिए करें। यीशु का आगमन निकट है। या हम नहीं जानते कि हमारी आत्माएं कब छीन ली जाएंगी, तो हमें क्या करना चाहिए? हर पल प्रभु के करीब रहो। प्रार्थना करने, स्तुति करने और प्रभु की आराधना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए और हमेशा अपने हृदय में प्रभु की स्तुति और महिमा करने के लिए पर्याप्त है। प्रभु के आने पर हम उनसे मिल सकते हैं, अपने स्वर्ग में जा सकते हैं। क्या हम प्रार्थना करें? प्यार से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता। हर उस व्यक्ति को तैयार करें जो आपके वचनों को आपके आगमन के लिए सुन रहा है। आमोस अध्याय 4:12 में कहा गया है कि प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृपया तैयारी करनी चाहिए। हम आपको सारी महिमा और महिमा देते हैं। हम नम्रता पूर्वक यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: भजन संहिता अध्याय
0: 1 की पुस्तक। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। शायद आपको लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ एक बाधा है। जो कुछ भी लिया है वह नुकसान है। किसी चीज में लाभ नहीं है, ये कठिन है। क्या आपको लगता है कि हर चीज में आंसू और दर्द होता है? दया है वह मनुष्य जो प्रभु के वचन पर मनन करता है। हमें यहोवा के वचन से प्रेम करना है, दिन रात ध्यान करना चाहिए। अगर हम ऐसे हैं, तो हम जो करेंगे वो सफल होगा। प्रतिदिन प्रभु के वचनों का पाठ करें। इतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन का ध्यान करें, तब तुम धैर्य हो जाओगे। परमेश्वर आपके जीवन में सभी बाधाओं को दूर करेंगे और निश्चित रूप से आपको शांति और खुशी देंगे। निश्चित रूप से यकीन है कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद और ऊंचा करेंगे। क्या अब हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को पूरी तरह से दूर करें। ऐसी कई चीजें हैं जो उन्हें वो करने से रोकती हैं, जो वे करते हैं। सभी समस्याओं को बदलें। आपको हर चीज से छुटकारा चाहिए। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। सब कुछ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: यशाया की पुस्तक अध्याय 43 पद 5। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हाँ प्यारे लोगों, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर की यही वाणी है। परमेश्वर तुम्हारे आंसू पोंछना चाहता है। अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो वे हमारे लिए बड़े बड़े काम करता। परेशान मत होइए, अपने आंसू पोंछ लो। उसी ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सोतों को बनाया। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हमारे परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। देखो कितना खुश, देखो कितनी बड़ी खुशी है। इस दुनिया में इतने करीबी पारिवारिक संबंध हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। ये एक पति हो सकता है, ये आपकी पत्नी हो सकती है, ये आपकी माँ हो सकती है, ये आपका पिता हो सकता है। वे कुछ समय हमारे साथ रहेंगे और फिर हमारे साथ नहीं रहेंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह जीवन भर हमारे साथ रहेगा, वह हर पल हमारे साथ रहेगा। आपको उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए और उसे मजबूती से थामे रहना चाहिए। हर दिन एक समुदाय में प्रार्थना करें, शास्त्र पढ़ें, घुटनों के बल खड़े होकर प्रार्थना करें। आपको प्रभु की ओर देखना चाहिए, उसका पता चलेगा, तब वह तेरी महिमा करेगा। दूसरा इतिहास अध्याय 1:1। और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। हाँ प्यारे लोगों, परमेश्वर राजा सुलेमान के साथ रहा और उसे महान बनाया। तो जबकि यहोवा हमारे साथ रहेगा, वह हमें अवश्य आशीष देगा। वह हमारे जीवन में महान कार्य करेगा, वह हमें महान बनाएंगे। जहाँ कहीं तू आंसू बहाएगा, वहाँ परमेश्वर तुझे उठाएगा, आशीष देगा और तुझे महान बनाएगा। परेशान मत होइए, आओ प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। शुक्रिया। अपने हर एक बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए जो आपके जीवित वचन को सुन रहे हैं। अपनी ताकत और महिमा के साथ कवर करें, सबके चेहरे से आंसू पोछो। हे यहोवा, तुझे उन्हें जीवित गवाहों में बदलना होगा। सभी को आशीर्वाद और महिमा से भर दें। हम आपको सारी महिमा और महिमा देते हैं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ। आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हाँ मेरे प्यारे लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हमारे पास कोई कमी नहीं है। यदि प्रभु हमारे जीवन में एक अच्छा चरवाहा होता तो हमें न भूख, न प्यास, न पीड़ा होती। इसलिए परमेश्वर हमारा चरवाहा होना चाहिए। राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। आपको और मुझे कहना होगा कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और हम सभी को उसका पुत्र और पुत्री होने का अधिकार है। हमें अपने मन में सच में कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। इस दुनिया में हमें उनके जैसा अच्छा चरवाहा नहीं मिलेगा, केवल वही अच्छा चरवाहा है। हमें उसे अपनी स्वतंत्रता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन दिनों आप स्कूल और कॉलेज जाने लगे हैं। निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करने जा रहा है। वह एक अच्छा चरवाहा है। यीशु ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा था। यीशु मसीह आपका अच्छा चरवाहा होगा, आपका हाथ पकड़कर आपका मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर के समान मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका से मार्गदर्शन करेंगे और आपको सब कुछ सिखाएंगे। चिंता मत करो। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, मैं तेरी स्तुति और करूंगा और परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। मैं इस दिन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनको स्वर्ग से ज्ञान और याद दो। हे प्रभु, उन्हें शिक्षा दो। परमेश्वर, आप जैसा सिखाने वाला कोई नहीं है। आप बोलते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं। परमेश्वर उन्हें हर मिनट सिखाओ, उनका हाथ पकड़कर उनका मार्गदर्शन करें। इसी तरह मैं जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके चेहरे से आंसू को चुभ दें, उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन।

0: आज का वादा, प्रेरित पौलुस ने कहा, 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4:16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। वह समय निकट आ रहा है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे। हमें इसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के सभी वचन पूरे हुए। मत्ती अध्याय 24:6-7, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूइंडोल होंगे। तो अब हम जो देख रहे हैं वे वही हैं जो प्रभु यीशु पहले ही कह चुके हैं। तो थको मत। हम इस पर थोड़ा मनन करने जा रहे हैं कि यीशु के आने पर उसके साथ जाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। सेंट पॉल ने लिखा, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15:52, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा? 1 कुरिन्थियों अध्याय 15:51, देखे मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। क्या हम इससे सीख सकते हैं? यीशु के आने पर केवल उन्हें ही अपने साथ ले जाया जा सकता है जिन्हें पुनरुत्थित किया गया है। क्या आप जानते हैं कि उस समय हमें कौन नया आकार देगा? 2 कुरिन्थियों अध्याय 3:17-18, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पॉल ने लिखा है कि अब प्रभु केवल उस आत्मा और पवित्र आत्मा के साथ हमारा पुनर्निर्माण कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो इस बारे में सोचें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें अभी पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यार से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हैं। अपने आगमन के लिए हमें तैयार करें। काम पर जाने वालों को आशीर्वाद दें। जिन्हें परीक्षा देनी है उन्हें अच्छी सफलता दें। आपके नाम की जय। वे जहां भी जाएं उनकी रक्षा करें। सभी बाधाओं को दूर करें और आशीर्वाद दें और ऊपर उठाएं। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। मैं पहला करता हूँ।
1: अध्याय 12:16,
0: आमीन। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारे आँखों के सामने करने पर है। हाँ भाइयों और बहनों, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। अवश्य प्रतीक्षा करें और आश्चर्य में देखें। जरूर होगा। मैंने कई सालों तक प्रार्थना की लेकिन थक मत जाना कि कुछ हुआ ही नहीं। हमें इंतजार करना चाहिए। निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा। क्या आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप चिंतित हैं कि नौकरी नहीं मिल सकती? मेरे बच्चों की अभी तक शादी नहीं हुई है, क्या आप इसके बारे में चिंतित हैं? चिंता मत करो। निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे कार्य करेगा। आंसू मत बहाओ। निर्गमन अध्याय 14:13, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। छुटकारे का अर्थ है महान मुक्ति। महान उद्धार परमेश्वर आपको देने जा रहा है। केवल तुम्हारे पापों से ही नहीं, तुम्हारी समस्याओं से भी, तुम्हारे आंसुओं से, अंतहीन समस्याओं से, चिंताओं से, निश्चित रूप से भगवान तुम्हें छुड़ाने वाले हैं। तो चिंता न करें, हम प्रभु की ओर देखेंगे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी चिंता न करें, वह तुम्हें मोक्ष देगा। जो भी समस्या हो भगवान आपको मोक्ष देंगे। छुटकारे का अर्थ है महान मुक्ति। भगवान आपके आंसू पोछेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम विनम्रता पूर्वक आपकी उपस्थिति में आते हैं। जो आपके जीवित वचनों को सुनते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं, चिंताओं को दूर करते हैं और अपने जीवन में चमत्कार करते हैं, उनकी समस्या

अच्छी नौकरी दें। जो लोग इस बात से परेशान हैं कि उनके बच्चों की अभी शादी नहीं हुई है, उनके लिए आपको एक अच्छी शादी करनी चाहिए। आपको उन लोगों को पैसा देना चाहिए जिनके पास पैसे की समस्या है। कृपया उन लोगों की मदद करें जिन्हें दर्द, चिंता और दुख से शांति नहीं है, और आपके नाम की महिमा करें। आज तुमने कहा है कि अपने उद्धार की ओर देखो, निश्चय तू उनका उद्धार करेगा और अपने नाम की महिमा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे, वे तुम्हारी बातें कहते हैं। इसके अनुसार उनकी सभी चिंताओं, समस्याओं को दूर करें और अपने नाम की महिमा करें। तुम वही करने जा रहे हो जो मैंने अपनी प्रार्थना में की है। हजारों और हजारों धन्यवाद। मैं आपको सारी स्तुति, महिमा और सम्मान देता हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक इस प्रार्थना को यीशु के नाम से पूछता हूँ।

इस पद सत्या। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हाँ मेरे प्यारे लोग, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सब नाम जानता है। कितनी बार हम बड़बड़ाते थे कि भगवान मेरी समस्या नहीं जानता, वह मेरी चिंताओं को नहीं जानता। आप में से कितने लोगों ने बड़बड़ाया है। आज भगवान से क्षमा मांगे। प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर और अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सब नाम जानता है और आपकी जरूरत भी जानता है। वह आपकी कमियों और जरूरतों के बारे में सब जानता है। इसलिए हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, गपशप नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन हमें उससे कहना चाहिए कि वह आपको शुद्ध करे और उसके चरणों में आंसुओं के साथ आपके पाप को स्वीकार करे। निश्चय ही वो तुम्हें आशीष देगा। इतना ही नहीं, यशाया अध्याय 43 पद 1 की पुस्तक, हे इसराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। क्या तुमने मेरे प्यारे लोगों को देखा? भगवान ने आपको नाम से बुलाया है, तो डरो मत, तुम भगवान के हो। भगवान कहते हैं, तुम मेरे हो। हाँ हम भगवान के हैं। एक दिन जब मैंने अपने माता पिता को खो दिया तो मैं रोया कि कोई नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा, रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तेरा छुड़ाने वाला जीवित है, परमेश्वर ने मुझसे कहा। तो उस दिन से वे मेरे पिता माता बन गए और मेरी सभी जरूरतों को पूरा किया। वह मेरा हाथ पकड़कर आज तक मेरा मार्गदर्शन करता आ रहा है। हर जरूरत को भगवान ने मेरी मदद करने के लिए एक व्यक्ति दिया है। मेरे प्यारे लोगों, क्या वह तुम्हारे लिए वह नहीं करेगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है? तो रो मत। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम विनम्रता पूर्वक आपकी उपस्थिति में आते हैं। जो आपके जीवित वचनों को सुनते हैं उनके आंसू पोंछते हैं, चिंताओं को दूर करते हैं और अपने जीवन में चमत्कार करते हैं, उनकी समस्याओं को बदलते। भगवान आप उनकी ताकत, आश्रय, छाया, शरण और गढ़ बनो, उनका नेतृत्व करो। हे प्रभु, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, तेरी महिमा उन्हें उनके लिए अग्निगढ़ के समान खेले। महिमा में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। हम जितना प्रार्थना करते हैं उससे कहीं अधिक परमेश्वर हमें देगा। उन्हें आशीर्वाद दें, उनका पालन पोषण करें, उन्हें ताज पहनाएं और उनकी रक्षा करें। मैं आपको सारी स्तुति, महिमा और सम्मान देता हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक इस प्रार्थना मैं यीशु के नाम से पूछता हूँ। 13 का सुसमाचार। तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ प्यारे लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम में से प्रत्येक नमकीन हो। नमक पानी में कैसे घुलता है, उसी प्रकार हमें दूसरों से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि हम नमक बनना चाहते हैं। हम नमक का और क्या उपयोग करते हैं? नमक स्वाद देगा। क्या बिना नमक के खाना संभव है? नहीं खा सकते हैं। नमक खाने को खराब होने से बचाता है, नमक अचार को खराब होने से बचाता है। उसी तरह हमें किसी के जीवन को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, हमें खराब होने का कारण नहीं बनना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने की जरूरत है, केवल स्वाद के लिए नमक। हमें जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि नमक का और किन कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है? औषधि के रूप में भी कार्य करता है। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए, दूसरों को ठेस न पहुँचाएं। हमें यथासंभव मदद करने की जरूरत है क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। सोचिए हमारा जीवन कैसा है, क्या हम नमकीन हैं या हम दूसरों को परेशान कर रहे हैं? हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि यीशु मुझे नमक में बदल दे। हमें प्रभु के लिए उपयोगी होना चाहिए। हाँ प्रियो, मरकुस का सुसमाचार।

0: अध्याय 49। क्योंकि हर एक जनवरी आग से नमकीन किया जाएगा। हाँ प्यारे लोगों, यीशु ने कहा, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ, केवल एक या भी सुलग जाती। अगर परमेश्वर की आग हम में आती है तो हम नमक बन जाएंगे, हम दुनिया के लिए नमकीन होंगे, हम लोगों के लिए उपयोगी होंगे। हमें हर दिन प्रभु के योग्य जीवन जीना चाहिए। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के ज्वलंत अभिषेक को सुनने और प्राप्त करने के लिए, हे यहोवा, मुझ पर आग लगा दे। तुमने कहा था कि तुम धरती पर आग लगाने आए हो। प्रभु से विनती कर, अपनी आग मुझ पर भेज। प्रभु यीशु आपको आशीष देंगे, वह तुम्हें नमक की तरह इस्तेमाल करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता, जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो तेरा जीवित वचन सुनता है, वो तेरी आग उन पर बरसाए। सराप आए तो हम दुनिया के लिए नमक बन सकते हैं। प्रत्येक आत्मा पर अग्नि का अभिषेक अवश्य भरना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अभिषेक से भरा होना चाहिए। आप इसे करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। हम आपको महिमा और सभी प्रशंसा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से का वादा करते हैं।
1: भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 121 पद 6। दिन में सूरज की रोशनी या रात में चांद आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ प्रियो, इन दिनों हम सुबह धूप और रात में ठंड पाते हैं। इन अंतिम दिनों में यही होगा, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है कि न तो सूरज और न ही चांद हम पर दिन रात हमला करेगा। ये हम सभी के लिए बहुत शांत इलाता है। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 16 पद 8-9। चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से जलाने का अधिकार दिया गया। मानव जाति गर्मी से झुलस गई थी और उसने परमेश्वर के नाम की निंदा और महिमा करने से पश्चाताप नहीं किया, जिसके पास इन विपत्तियों पर अधिकार था। इन छंदों के माध्यम से परमेश्वर ने प्रकट किया है कि इस पृथ्वी पर क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी और आग से तबाही होगी, परंतु परमेश्वर अपनी प्रजा और पश्चाताप करने वालों की रक्षा करेगा। प्रभु कहते हैं, यशाया की पुस्तक अध्याय 49 पद 10। वे भूखे और प्यासे होंगे, न लूह और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुवा होगा और जल के स्रोतों के पास उन्हें ले चलेगा। प्रभु का शास्त्र कहता है, यशाया की पुस्तक अध्याय 4 पद 6। वह दिन को घाम से बचाने के लिए और आंधी पानी और छड़ी में एक शरण और आड़ होगा। मत भूलो, निश्चय ही परमेश्वर आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगा। क्या हम अभी प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, मेरा आपको धन्यवाद। चमत्कार करो, चमत्कार करो भगवान। जीवन, सुख और शांति दो। उनके आंसू पोछो और उनके दुखों को बदलो। ऐसे में कई लोग अपने केस को लेकर चिंतित रहते हैं। हे प्रभु, उन्हें शांति दे, उन्हें शांति दे और उन्हें आनंद दे। हे प्रभु, उन्हें अपनी सुरक्षा दे। केवल आप ही उन्हें खुशी और सुरक्षा दे सकते हैं। केवल आप ही उन्हें शांति दे सकते हैं। उन्हें आराम और शांति दो और अपने नाम की महिमा करो। शुक्रिया। मैं विनम्रता पूर्वक सर्वशक्तिमान यीशु के नाम से पूछता हूँ। आमीन।
0: अध्याय 29 पद 11। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। इस दुनिया में हर कोई क्या विलाप कर रहा है? शांति नहीं है, भीतर शांति नहीं है। ये मन को बहुत भ्रमित करता है, यह बहुत थकाऊ है। मैं भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ और शांति नहीं होती। केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें शांति दे सकते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि हम उसके लोग हैं तो वह हमें शांति देगा, वह शांति और भलाई देगा। आप अपने जीवन में धन्य होंगे, आप खुश होंगे। उसके लोग होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 7 पद 23। परंतु मैंने तो
1: उनको ये आज्ञा दे कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। हमें वो सुनना चाहिए जो यहोवा कहता है, तब यहोवा हमसे भी बातें करेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे तब यहोवा हमसे बात करेगा, तब वो हमें शांति देगा, आशीर्वाद भी देंगे। क्या आप जानते हैं कि वे किस तरह की शांति देता है? वह कहता है कि ये एक नदी की तरह है, वह हमें शांति देगा। चिंता मत करो कि शांति नहीं है, बेशक यीशु हमें शांति देंगे। जब मेरे पिता और माता की मृत्यु हुई तो मैं बिना शांति के अत्यधिक चिंतित था। यहोवा ने कहा, मैं जीवित हूँ इसलिए मैं शांति में हूँ, मुझे वो शांति मिली है। तय करें कि आप सुनेंगे कि उसे क्या कहना है, तब तुम उसके लोग होगे। एक व्यक्ति होना उसके लिए क्या ही विशेषाधिकार है, उस विशेषाधिकार को याद मत करो। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, धन्यवाद यीशु, हमें अपने लोगों में परिवर्तित करें और हमें अपनी शांति और आशीर्वाद प्रदान करें। हे प्रभु, हम में से प्रत्येक किसी न किसी तरह से आपकी आवाज का पालन किए बिना जिया है। हम अब आपके वचन को सुनने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो कोई आपका जीवित वचन सुनता है वह आपका वचन सुनेगा और आपके लोग बनने का अनुग्रह प्राप्त करेगा। आपको ये करना चाहिए, हर घर को आशीर्वाद और मन की शांति दें। सारी महिमा और धन्यवाद तेरा हो। हम आपको यीशु मसीह के नाम का वादा करते हैं।
0: भजन संहिता की पुस्तक
1: अध्याय 30 पद 10 11 हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पट्टुका बांधा है। हाँ प्यारे लोगों, क्या आप चिंतित हैं कि मैं कर्ज नहीं चुका पाऊंगा, साहूकार मुझे परेशान कर रहे हैं, और कि मैं कर्ज पर ब्याज नहीं दे पाऊंगा? क्या आप विलाप कर रहे हैं कि आपको धन की आवश्यकता है? क्या आप शौक करते हैं कि मैं अपने जीवन में बिना काम के पीड़ित हूँ? परमेश्वर को पुकारो और उसकी दुहाई दो। वह ईश्वर है जो तुम्हारे शौक और शौक को आनंद में बदल देता है। तुम कितना भी विलाप करो और लोगों के पास जाने की चिंता करो, वे व्यर्थ है। हाँ प्यारे लोगों, लोगों के पास जाना और उन्हें यह बताना बेकार है कि कितने विलाप और आंसू हैं। आपके जाने के बाद ही वे आपको दोष देंगे। इसलिए यहोवा को पुकारो और उसकी दुहाई दो। इसलिए भजनहार कहता है, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 88 पद 1 है, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। हाँ, हमें रात और दिन की ओर पुकारना चाहिए। किसी भी आंसू की चिंता की समस्या को यीशु के द्वारा बदला जा सकता है। यीशु आपकी ऋण समस्या को बदल देंगे। प्रभु यीशु अच्छा काम देंगे। प्रभु यीशु आपके व्यवसाय को आशीष देंगे। वह तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बहुत से लोग अभी भी अपने क्रेडिट संकट के बारे में चिंतित हैं। हे प्रभु, उनके सभी विलाप और दुखों को हर्षित करें। कई लोग कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, वे जो कुछ भी पीड़ित हैं उसे बदल दें। उन्हें खुश करो। कितने लोग मेरी नौकरी जाने से परेशान हैं। हम चाहते हैं कि आप उसे एक अच्छी नौकरी दिलवाएं। उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। किसी भी कोरोना डकैती रोग या ओमाइक्रोन रोग के साथ किसी को भी स्पर्श करें और चंगा करें। सभी की रक्षा करनी चाहिए। अपने नाम की महिमा करो। प्रभु में आनंदित रहो। बाइबल में लिखा है कि वह तुम्हारे मन की विनती तुम्हें देगा। जिनके पास काम नहीं है उन्हें अच्छा काम दो और अपने नाम की महिमा करो। उस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा करने जा रहा है। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछ का वादा
0: प्रार्थना। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 112 पद 4
1: सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। हाँ प्रिय लोगों, अगर हम इस दुनिया में सही तरीके से जीते हैं तो प्रभु का प्रकाश हम पर चमकेगा। इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है, भजन संहिता अध्याय 143 पद 10 की पुस्तक, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा के होकर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। यदि पवित्र आत्मा हम में आता है तो वे हमें सही मार्ग पर ले जाएगा, तो पवित्र प्राप्त करें। आत्मा पूरी तरह से प्रभु हमें भरने में सक्षम है, हमारी इच्छा होनी चाहिए। प्रभु कहते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 22 पद 17, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह हाय, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंटमेंट ले। पवित्र आत्मा सही तरीके से अद्भुत रूप से हमारा मार्गदर्शन करेगा। डेविड कहते हैं, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 26 पद 12, मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है, हमारे पैर कहाँ खड़े हैं? इसके बारे में सोचो, यदि हम सीधे हैं तो यहोवा का प्रकाश हम पर चमकेगा। क्या हम अभी प्रार्थना करें? हमारे अच्छे पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि जो कमजोर है वह मजबूत होगा, रोग से प्रभावित सभी लोगों का इलाज करें और उनकी कमजोरी को बदलें, पूर्ण सुख दे। डंडा, आपकी स्वर्गीय अग्नि आपके लोगों को ढक दे। हम भजन संहिता 84 में पढ़ते हैं कि जो कोई तुम में रहता है वे हृदय है। हे पिता, हर एक को बलवान, ढाल और सहायक होने से बचा ले। यदि कोई रोगी या पीड़ित है तो उसे स्पर्श करें और उसे पूरी तरह से चंगा करें और अपने नाम की महिमा करें। हम सब आपकी प्रशंसा करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हमारे पिताजी। अध्याय 15, आमीन।
0: मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हाँ प्यारे लोगों, इस दुनिया में कितने बोझ हैं, कितनी चिंताएं हैं, कितनी थकान है, क्या करें? हमें अपनी सारी चिंताओं को मनुष्य को बताना बंद कर देना चाहिए और अपने प्रभु यीशु मसीह को बताना चाहिए। हमारे दिल में जो भी चिंताएं, बोझ, दुख और दर्द हैं, उन्हें हमारे प्रभु समुदाय में बताया और प्रार्थना की जानी चाहिए। हमें किसी बात का पछतावा नहीं करना चाहिए। हन्ना स्त्री ने वैसा ही किया। न जाने कितने लोगों ने संतान न होने पर उनके बारे में अभद्र बातें की होंगी। हो सकता है कि उन्हें बहुत सी पीड़ाएं, दुख और चिंताएं हुई हों, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना की। उन्होंने अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में डाल दिया और उसके बाद शोक नहीं किया। हमें यही करना चाहिए। किसी के पास जाकर बताने का कोई मतलब नहीं है। हर दिन हमें अपने बोझ, अपनी चिंताएं, अपने दुख, सब कुछ प्रभु की उपस्थिति में डालना चाहिए। तब परमेश्वर हमारी चिंता दूर करेगा और निश्चय ही हमारे आंसू बदल देगा। चिंता मत करो। भजन संहिता अध्याय 62 पद 8, उसे अपने अपने मन की बातें खुलकर कहो। हाँ प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं कि वे यह समुदाय में क्या करना चाहता है? हमारे दिलों में चाहे कितने भी बोझ और चिंताएं हों, हमें उनके चरणों में कहना चाहिए। जितना चाहे हो उससे कहो। परमेश्वर ये नहीं पूछेंगे कि आप इतने लंबे समय से ऐसा क्यों कह रहे हैं। वह हमें नहीं छोड़ेगा। वह हमारी प्रार्थनाओं को तब सुनता है जब हम हृदय के बोझ और चिंताओं को उसके सामने रखते हैं। इसलिए लोगों को बताना बंद करो। परमेश्वर को अपनी चिंता बताओ। प्रभु निश्चित रूप से आपके सभी आंसुओं को बदल देंगे, आपके सभी दुखों को बदल देंगे और आपकी सभी ऋण समस्याओं, बीमारियों, कमजोरियों, बीमारियों को बदल कर आपको आशीर्वाद देंगे। क्या आप चिंतित हैं कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? क्या आप चिंतित हैं कि आपको बच्चा पैदा करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह निश्चय ही आप पर चमत्कार करेगा। निराश मत होना।
1: क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। धन्यवाद पापा, विभिन्न ऋण समस्याओं वाले परिवारों की ऋण समस्याओं को बदलें। आप ही हैं जिसके पास दौलत है। जिनके बच्चे नहीं हैं, उन्हें संतान होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। हमें पढ़ने वाले छात्रों को ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता है। हमें बारिश से प्रभावित लोगों के लिए बेहतर घर बनाने की जरूरत है। हम आपसे इस बारिश की बाढ़ से प्रभावित लोगों के आंसू पोंछने के लिए कहते हैं। बस अपने नाम की महिमा करो। हर परिवार को आशीर्वाद और प्रगति दें। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। निर्गमन पुस्तक अध्याय 23 पद 26 और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, क्या डॉक्टरों ने आपको छोड़ दिया? क्या उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते? क्या उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते? चिंता मत करो, मुझे अक्सर कमजोरी होती है, मुझे अस्थमा की कमजोरी होती है, मुझे हाथ और पैर में दर्द है, मेरे दिल में कमजोरी है, मेरे गर्भाशय में कमजोरी है। क्या आप चिंतित हैं? चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह को देखो, वह तुम्हें अवश्य चंगा करेगा। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यीशु नहीं कर सकता। वह निश्चय ही तुम्हें चंगा करेगा और तुम्हें ऊपर उठाएगा। चिंता मत करो। नीत वचन की पुस्तक अध्याय 9 पद 10 और 11। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, हमें यहोवा का भय परमेश्वर चाहिए। यदि हम सवेरे उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के पास रहें, तो परमेश्वर हमारे दिन को बढ़ा देगा। हमें अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए, तब हमारी जीवन प्रत्याशा निश्चित रूप से बढ़ेगी। चिंता मत करो। क्या हम अभी प्रार्थना कर सकते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। धन्यवाद। इस वचन को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा करें। डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि उनकी उम्र खत्म हो गई है, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टरों ने शायद हार मान ली हो कि इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है। परमेश्वर उन्हें चंगा करना चाहिए और उनके जीवन को लंबा खींचना चाहिए। महान कार्य करें, उन पर कृपा बनी रहे। अपने बच्चों को बुरी चीजों से दूर रहने में मदद करें। हम महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। अध्याय 14 पद 1 की पुस्तक। हे इसराइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा। हाँ प्यारे लोगों, इसराइल के स्थान पर अपना नाम रखना। जब हम परमेश्वर के स्थान पर लौटेंगे, तब परमेश्वर निश्चय हमें आशीष देगा। जब हम उसके पास लौटेंगे तो वे हमें अवश्य आशीष देगा। वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इसराइल के स्थान पर अपना नाम लिखो और आगे बढ़ो। जब तू यहोवा की ओर फिरेगा और जब तू परमेश्वर की ओर फिरेगा, तब परमेश्वर तुझे आशीष देगा। यहेजकेल अध्याय 18 पद 32 की पुस्तक। जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित कर दो। अब तक हम दुनिया की तरफ मुड़ते रहे हैं और जी रहे हैं, अब प्रभु की ओर मुड़ें। प्रभु आपको अवश्य आशीष देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। यहोवा आपको आशीष देगा और ऊंचा करेगा। क्या हम अभी प्रार्थना करें? हम अपने स्वर्गीय पवित्र पिता के प्रति कृतज्ञता के साथ आपकी स्तुति करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद यीशु, हर जीवन में बड़ा काम करो। उन सभी के जीवन और आत्माओं में चमत्कार करें जो आपके जीवित वचनों को सुन रहे हैं। उठाना चाहिए। क्या आप उन लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं जो इस बात से चिंतित हैं कि हम इस दुनिया में कैसे जीवित रहेंगे? हम अपने पारिवारिक जीवन का नेतृत्व कैसे करेंगे और हम क्या करने जा रहे हैं? आपको उन लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए जो इसकी चिंता करते हैं। तूने कहा है कि यहोवा की ओर फिरो और तू जीवित रहेगा। पिताजी को उन्हें वे अनुग्रह देना चाहिए जो उन्हें आपके पास लौटने के लिए चाहिए। उनके आंसू पोंछो और चंगा करो और आशीर्वाद दो। आप जो प्यार करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
0: भजन संहिता
1: प्यारे अध्याय 44 पद की पुस्तक। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। हाँ प्रियो, हमें प्रतिदिन परमेश्वर के नाम की स्तुति करनी चाहिए। हमें उनके नाम की महिमा करनी चाहिए। यदि हमें अपने जीवन में ऊपर उठना है तो हमें प्रतिदिन प्रभु की महिमा करनी चाहिए और उनके नाम की महिमा करनी चाहिए। उसकी प्रशंसा करो। प्रभु निश्चित रूप से हमारे जीवन को ऊंचा करेगा क्योंकि वे हर दिन अपने नाम की महिमा करता है। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो। परमेश्वर आपको इस हद तक आशीष देने में सक्षम है कि आप उसे ऊंचा करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 20 पद 7 पद 8। किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे तब उठकर सीधे खड़े होंगे। आप कई लोगों के बीच कर्जदार हो सकते हैं, कई समस्याएं हो सकती हैं, परंतु जब हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे तब उसकी बड़ाई करके सीधे खड़े होंगे। यहोवा वह परमेश्वर है जो हमें खड़ा करता है। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो। प्रभु ने आपकी कर्ज की समस्या को बदल दिया होगा, चाहे आपने कहीं भी संघर्ष किया हो और चाहे आप कहीं भी झुके हो। उसी स्थान पर भगवान निश्चित रूप से आपको ऊपर उठाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे पिता जो हमें प्यार करते हैं और प्यार से मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके बच्चे दर्द में हैं और आंसू बहा रहे हैं पिता, उनमें से प्रत्येक के आंसू पोंछना चाहिए, उनकी चिंताओं को बदलना चाहिए, आशीर्वाद और उत्थान करना चाहिए, उनके दिलों में शांति दें। सभी परिवार शांति से हो, आपका हाथ उनकी रक्षा करे। आप जिस अनुग्रह के लिए ऐसा करने जा रहे हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको सारी महिमा और सारा सम्मान देते हैं। हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह आज पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 37 38। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा गर्मी जनवरी विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। लेकिन हमें वफादार होना चाहिए, वापस नीचे मत जाओ। तब जो लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं वे परमेश्वर के आने पर नहीं जा सकते। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 पद 39। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं, किसी भी हाल में पीछे न हटें। यदि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, दुनिया की चीजों को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लूत की पत्नी की जान चली गई क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा। वापस नीचे मत जाओ। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, परमेश्वर पिता, हम आपकी ओर देखते हैं। उन सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उनके आंसू पोंछें जो इस संदेश को सुनते हैं। हे प्रभु, उनके परिवार में समस्याओं को बदलें, उन्हें उनकी बीमारी से छुड़ाओ, उनके आंसुओं से छुड़ाओ, शाप और उनके पापों को छुड़ाओ, उनकी चिंताओं से छुटकारा पाओ। परमेश्वर, जो अभी यात्रा कर रहे हैं उन्हें बचाओ। परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। वे चिंतित हैं कि मेरे परिवार में हमेशा कोई समस्या है। उन्हें बचाओ और अपने नाम की महिमा करो। परमेश्वर, उन्हें आशीर्वाद दो और उन्हें ऊपर उठाओ। हे प्रभु, अपने बच्चों को बिना पीछे मुड़े जीने में मदद करें। अपने आगमन के लिए सभी को तैयार करें। मैं आपको सारी स्तुति महिमा और सम्मान देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। विवरण अध्याय 30 श्लोक 5। और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुँचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। तुम्हें गुणा करना परमेश्वर की इच्छा है। यदि आप गुणा करना चाहते हैं तो क्या करें? इब्रानियों अध्याय 6:14-15 कहता है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। क्या हम जानते हैं कि हमें अपने जीवन में समृद्ध और गुणा करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? हमें उसके द्वारा किए गए वादे के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। लंबे समय तक प्रभु के चरणों में प्रतीक्षा करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर के लिए गाना चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए और परमेश्वर को जानना चाहिए। तब परमेश्वर निश्चय तुम्हारे जीवन में तुम्हें गुणा करेगा। उसने आशीर्वाद और गुणा करने का वादा किया है। हमें अपने जीवन में वादा पूरा होने तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए और उसके भजन गाना चाहिए। परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए। यदि हम अपने हृदय में ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु हमारे जीवन में हमें गुणा करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस जीवित वचन को सुनने वाले सभी के जीवन में बहुतायत दे। उन्हें हर चीज में गुणा करने दे। आशीर्वाद और लाभ प्रचुर मात्रा में हो। हम आपको पूरा सम्मान और गौरव देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आज का वादा प्यारे इतिहास की किताब आमीन अध्याय 16 श्लोक 11। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। हमें हर दिन उसका चेहरा खोजना चाहिए। हर दिन हमें परमेश्वर के चरणों में आना चाहिए और उसे खोजना चाहिए। वह हमारे लिए महान कार्य करेगा। हमें प्रतिदिन यीशु मसीह को खोजना चाहिए। भजन संहिता अध्याय 16 श्लोक 11 कहता है, तेरे सामने आनंद की परिपूर्णता है, तेरी दाहिनी ओर सुख सर्वदा बना रहेगा। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। वह उपस्थिति में पूर्ण आनंद देगा। जब हम उसे रोज ढूंढते हैं, वह महान कार्य करेगा और हमें पूर्ण सुख देगा। इस दुनिया में चाहे कितनी ही चीजें क्यों न हो, हमें उन चीजों में शांति नहीं मिलेगी। घर के ऊपर घर बनाना, हमारे पास बहुत सारा सोना और सामान है। हमारे पास बहुत सारा सोना और सामान है जिससे हम खुश नहीं हैं। हमें हर दिन यीशु मसीह की तलाश करनी चाहिए, वह बहुत खुशी देगा। प्रभु यीशु मसीह को खोजें और उनकी ओर देखें और उनके चरणों में सदैव प्रतीक्षा करें। वह आपके जीवन में महान कार्य करेगा। केवल वही हमें वो शाश्वत आनंद दे सकते हैं। केवल वही हमें महान आशीषें दे सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास घर है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास पढ़ाई है, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन क्या आपको चिंता है कि मुझे शांति नहीं है? हाँ प्यारे लोगों, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए, उससे प्रार्थना करें। वह बहुत खुशी और शांति देगा। जब हम उससे प्रार्थना करेंगे तो वे हमें वह आनंद देगा जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। हमारी आत्मा में जो आनंद है उसे कोई नहीं छीन सकता। जब हम उसकी तलाश करते हैं, हमें इतना बड़ा आनंद और शांति मिलेगी। तुम यहोवा को खोजोगे और उससे प्रार्थना करोगे, निश्चय ही वो तुम्हें आशीष देने में समर्थ है। आपकी जो भी कठिनाइयां होंगी वह बदल देगा। तुम्हारे आंसू जो भी होंगे वह बदल देगा। प्रतिदिन उससे प्रार्थना करें। चिंता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है। आंसुओं के साथ उससे पूछो, वह तुम्हें नौकरी देगा। वह तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। आपके परिवार में कोई भी समस्या क्यों ना हो, वह इसे बदल देगा। हमें उन लोगों को बदलने की जरूरत है जो शराब के आदी हैं। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। चिंता मत करो, वह आपका सबसे बड़ा काम करेगा। अब हम उससे प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता, हम धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं। बच्चों को किसी भी चिंता से मुक्त होने की आवश्यकता है। जो लोग शराब पीते हैं उन्हें छोड़ दें और उनके लिए शराब पीना असंभव बना दें, भले ही वे पीना चाहें। चमत्कार करें। तूने कहा था कि मैं चट्टान को खड़ा जल और चकमक पत्थर को जल का सोता बनाऊंगा। कृपया बच्चों को बदले और सभी के आंसू पोंछे। महान कार्य करें। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई, पद 25। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे हृष्ट पुष्ट हो जाता है। हाँ प्रिय लोगों, आपको प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। वह आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। वह आपके व्यवसाय में समृद्धि लाएगा। वह आपके पेशे में समृद्धि लाएगा। वह आपकी मुश्किलों को बदल देगा और आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। आप जहां भी जाएं, परमेश्वर आपको आत्माओं को परमेश्वर के पास लाने का आशीर्वाद दे। आपको अच्छी आध्यात्मिक समृद्धि भी मिलेगी। आप प्रभु के भीतर अच्छी तरह विकसित हो सकते हैं। हमेशा प्रभु पर भरोसा रखें। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेगा। उस पर विश्वास करो, पूरा विश्वास करो। पवित्र शास्त्र कहता है कि अनुग्रह उन्हें घेर लेता है जो प्रभु पर भरोसा करते हैं। उस पर पूरा भरोसा करें, वह तुम्हें अनुग्रह से घेर लेगा। इतना ही नहीं, होशे अध्याय 12 पद 25 की पुस्तक कहती है, और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोहता रहे। हमें उस पर लगातार भरोसा करना चाहिए। एक बार जब आपको लाभ हुआ हो तो प्रभु पर भरोसा करना न छोड़ें। पवित्र शास्त्र हमें बिना रुके अपने परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए कहता है। यीशु मेरे लिए काफी है, चाहे कुछ भी आए। और अगर हम दृढ़ता से मानते हैं कि मुझे यीशु की आवश्यकता है, तो प्रभु आपके जीवन में असीम आशीर्वाद, शांति और आनंद लाने और आपको ऊंचा करने में सक्षम है। थकना मत। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। धन्यवाद पिताजी। हर उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार करें जो आपके जीवित वचनों को सुनता है। उन्हें आप पर भरोसा करने में मदद करें। आप पर निर्भर रहें और आपको जानें। अविवाहित बच्चों की अच्छी शादी करनी चाहिए। व्यवसायिक परिवारों को अपना व्यवसाय बेहतर ढंग से चलाने में सहायता करें। व्यवसाय परिवारों को बेहतर व्यवसाय करने का आशीर्वाद दें। हर परिवार को आशीर्वाद दें। परिवारों में पाई जाने वाली सभी समस्याओं और संघर्षों को बदलें। हम प्रार्थना करते हैं कि ये सभी लोग धैर्य और उन्नत हों और आपके बच्चों को आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का आशीर्वाद मिले। उनके आध्यात्मिक जीवन में हर दिन बढ़ने में उनकी मदद करें। परमेश्वर की सेवा करने वाले प्रत्येक सेवक के लिए कई आत्माएं उपलब्ध हों। परमेश्वर को परमेश्वर के सेवकों के लिए बहुत सारी आत्माओं को लाने में मदद करनी चाहिए जो चिंतित हैं कि वे आत्माओं को परमेश्वर के पास नहीं ला पाएंगे। परमेश्वर के सेवकों का बहुत शक्तिशाली उपयोग करें। आशीर्वाद और महिमा दो। हम आपको सभी प्रशंसा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन।

जब कभी हम नाकाम हो जाते हैं तो हम अपनी जिंदगी से मायूसी नहीं बल्कि खुद को कमजोर समझते हैं। ये गीत यशयाह बाब 40 आयत 28 से 31 पर आधारित है। कुव्वत व सब्र, हिम्मत देगा तुम्हें वही, गर है भरोसा उस पे हो लाख मायूसी।

आज का वादा भजन संहिता अध्याय 16 पद की पुस्तक। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। हाँ प्यारे लोगों, हमें प्रभु को हर चीज से पहले रखना चाहिए। हमें हर चीज में प्रभु को अपने सामने रखना चाहिए, चाहे वह व्यवसाय हो या परिवार। क्या आपको क्रेडिट की समस्या है? चिंता मत करो, यीशु से प्रार्थना करें। इस कर्ज को चुकाने में मेरी मदद करने के लिए परमेश्वर से पूछो। हे प्रभु, मुझे यह ऋण स्वयं चुका दो और प्रभु के हाथ में पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तब प्रभु निश्चय हमें प्रतिफल देगा। वह हमारी दुर्दशा बदल देगा, वह समस्या को बदल देगा और आपके काम, परिवार, व्यवसाय में आपके साथ रहेगा। चिंता मत करो। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 138 पद 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ प्यारे लोगों, जब हम उसे अपने सामने रखेंगे तो यहोवा हमारे लिए सब कुछ करेगा। चाहे कोई भी समस्या हो, अगर हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ भी करेगा। चिंता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है। परमेश्वर तुम्हें अच्छी नौकरी देगा, वह तुम्हारे आंसू पोंछेगा और तुम्हें ऊंचा उठाएगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता, जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिताजी। अब हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस शो को सुन रहे हैं। सबका भला करो और उन्हें मजबूत करो। हर क्रेडिट समस्या को बदलें। अब कर्जदारों को चुकाना होगा। उन्हें वो सब कुछ दें जो उन्हें चाहिए और आंसू पोंछ दें। जिन लोगों को काम में परेशानी हो रही है, उनके लिए काम पर समस्या बदलें और उन सभी को काम पर पदोन्नति दें। उनकी रक्षा करें। ईश्वरीय उपस्थिति हमेशा सबके साथ रहे। पारिवारिक समस्याओं को बदलना चाहिए और परिवार में बड़ी शांति लाना चाहिए। झगड़े सब कुछ बदल देते हैं। उनके आंसू पोंछे और परिवार में दिव्य शांति और खुशियां दे। ऐसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हम विनम्रता पूर्वक प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। मरकुस की पुस्तक अध्याय 13 पद 33। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वे यह समय कब आएगा। हाँ प्यारे लोगों, हम नहीं जानते कि वो किस समय आएगा, लेकिन उसके आने के उसके प्रतिज्ञात चिन्ह बहुत सटीक रूप से पूरे हो रहे हैं। तो केवल यीशु ने कहा, सावधान रहना, जागना और प्रार्थना करना। हमें क्यों उठकर प्रार्थना करनी चाहिए? यीशु कहते हैं, मैथ्यू की पुस्तक अध्याय 26 श्लोक 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। हम इस दुनिया में हैं। यहाँ हमारे लिए कई प्रलोभन हैं। हमें इन प्रलोभनों में नहीं पड़ना चाहिए और न ही डूबना चाहिए। हमें इन प्रलोभनों में नहीं फंसना चाहिए। इसलिए हमें देखना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बार यीशु कहते हैं, लूका की पुस्तक अध्याय 21 पद 36, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इस दुनिया में बुराई बढ़ती जा रही है और खतरनाक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। जीसस ने कहा कि इन सभी घटनाओं से बचने के लिए हमेशा प्रार्थना करें। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि परमेश्वर के लोग खतरनाक विपत्तियों में फंसें। वह चाहता है कि वे खतरनाक आपदाओं से बच जाएं। इसलिए वह हमें ध्यान रखने, देखने और प्रार्थना करने के लिए कहता है। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता, जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। अपने हर बच्चे को दिलासा दो जो ये वादा सुनते हैं। शांति दो और उन सभी को खुश करो। उनके बच्चों को बेहतर पढ़ने में मदद करें। पापा, अभी कोरोना का समय है। जब बच्चे स्कूल, कॉलेज

जाते हैं जब आते हैं। उनकी रक्षा करें और उन्हें अच्छी बुद्धि और स्मृति दें। बारिश हो रही है। बारिश से कितने लोग प्रभावित हुए? पापा, हम प्रार्थना करते हैं कि वे यहाँ सो पहुँचे, इस बारिश की बाढ़ से प्रभावित होने से बचने में मदद करें। प्रिय भगवान, उनके काम में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, मुश्किलें हैं। उन्हें चिंता है कि कार्यस्थल पर हर कोई मेरे बारे में घिनौनी बातें कर रहा है। संकटमोचनों से मिलें, उन्हें कार्यस्थल में अच्छी शांति दें, उनकी कृपा प्राप्त करने में हमारी सहायता करें, अपनी आंखों में दया पाने में मदद करें, अच्छी शांति, खुशी और स्वास्थ्य दें। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम प्रेम के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं।

0: a product from Gino Kumbhambad of Music Factory.
1: इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारे आँखों के सामने करने पर है। हाँ प्यारे लोगों, आप उस महान कार्य को देखने जा रहे हैं जो प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। कभी मत थकना कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। रुको और देखो, निश्चय ही यहोवा हमारे जीवन में महान कार्य करेगा। नौकरी नहीं मिलने से थक गए हैं? चिंता है कि मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है? निश्चय ही परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा। यीशु महान कार्य करेगा। चिंता मत करो। निर्गमन अध्याय 14:13 कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। उद्धार का अर्थ है स्वतंत्र मुक्ति। प्रभु आपके जीवन में महान मुक्तिदाता हैं। न केवल आप पाप से मुक्त होंगे बल्कि प्रभु निश्चित रूप से आपको आपके दुखों से, आपके आंसुओं से, आपके दर्द से, आपकी पुरानी बीमारी से और आपकी पुरानी कमजोरी से मुक्ति दिलाएगा। चिंता मत करो। क्या हम परमेश्वर की ओर अधिक हैं? यीशु निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन्हें बदलने और महान कार्य करने वाले हैं। उद्धार का अर्थ है महान मुक्ति। वह आपके जीवन में बड़ी मुक्ति लाने वाला है। कर्ज की समस्या, क्या शैतान की पट्टियां, जादू टोना पट्टियां, क्या तुम बीमार हो, कुछ भी हो, प्रभु आपको छुड़ाने वाले हैं। तो अपने आंसू पोंछ लो, वह तुम्हारे आंसू बदल देगा। चिंता मत करो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता, जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, अपने बच्चों के जीवन में आंसू पोंछे जो आपके जीवित वचनों को सुन रहे हैं। चिंता को बदले, समस्या को खत्म करें। चमत्कार और चमत्कार करो। उन लोगों को अच्छी नौकरी दे जिन्हें नौकरी न मिलने की चिंता है। विवाह होने से करना चाहिए जिन्हें इस बात की चिंता हो कि विवाह नहीं होगा। आपको पीड़ित लोगों के आंसू पोंछने चाहिए। नकदी की सभी समस्याओं और कठिनाइयों को बदलें। आस पड़ोस में लड़ते हुए आपको उन लोगों को मुक्ति देनी चाहिए जो बेचैन, चिंतित, थके हुए, दर्द में और अभिभूत हैं। बेघर बच्चों के लिए एक अच्छा घर खरीदना चाहिए। पूरे परिवार में झगड़ों और परेशानियों से परेशान लोगों को इस संघर्ष से मुक्त करें। उन लोगों को रिहा करो जो चिंता करते हैं कि मेरे पति मेरे घर में शराब पी रहे हैं और मेरे बच्चे पी रहे हैं। हम शराब और नशीले पदार्थों के आदि उनके रिश्तेदारों की रिहाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा करो, उनके सब संकटों को दूर करो और अपने नाम की महिमा करो। इस वचन के अनुसार कि तुम उस मिस्री को कभी नहीं देखोगे जिसे यहोवा ने आज देखा है। आप जो प्यार करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी की स्तुति और स्तुति करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। जॉन अध्याय 14:27 सुसमाचार। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। हाँ प्यारे लोगों, दुनिया जो शांति देती है वो टिकाऊ नहीं होती, लेकिन जो शांति यीशु देता है वो चिरस्थाई है। स्थाई? क्या आप शांति के बिना हैं? आज ही प्रभु के पास आओ और अपने हृदय में उसे पुकारो, वह तुम्हें शांति देगा। वह कहता है यशाया की पुस्तक अध्याय 66:13, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी की नाई और अजातियों के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। इसलिए हमें परमेश्वर से शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। वह शांति का प्रभु है। पॉल कहते हैं 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 3:16, अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, मैं यहोवा की स्तुति करता हूँ। अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करें और उनके जीवन में अच्छे चमत्कार और चमत्कार करें और केवल अपने नाम की महिमा करें। कृपा और अच्छाई उनकी रक्षा करें, उनमें से सभी बाधाओं को पूरी तरह से हटा दें। हे प्रभु, उन सबों को आशीष दे जो इन जीवित वचनों को सुनते हैं, उन्हें मजबूत करें, उन्हें शांति और आनंद का आशीर्वाद दें। मुझे आपकी प्रशंसा करनी होती है, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ।
2: प्रेरित पत्रस लिखता है, दो पत्रस पुस्तक अध्याय 1:19। और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, वे इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम ये अच्छा करते हो कि जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वे है दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौन फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। अंधेरे में केवल प्रभु का शास्त्र ही चमकता है। हमें उस शास्त्र को देखने की जरूरत है। प्रतिदिन शास्त्रों का पाठ करें और मनन करें। दिल में अंकित हो जाना, तदनुसार किया जाना है, तब परमेश्वर का प्रकाश हम पर चमकेगा। इसी कारण भजनहार कहता है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 119 पद 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसके अलावा भजनकार कहता है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 119 पद 130, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को अहमियत दो। इसलिए पत्रस लिखता है, 1 पत्रस पुस्तक अध्याय 2 पद 2, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मलात्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रभु के शास्त्रों को अपने भीतर रखने से न केवल हमें अंधेरे में प्रकाश मिलता है, बल्कि हमारे रास्ते फिसलने से भी बचते हैं। भजनकार कहता है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 37 पद 31, उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्नेही अग्रणी स्वर्गीय पवित्र पिता, हे पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर देखते हैं। उन सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उनके आंसू पोंछें जो इस संदेश को सुनते हैं। हे प्रभु, परिवार में सभी समस्याओं को बदलना चाहिए। उन्हें उनकी बीमारी से मुक्त करें, उन्हें उनके आंसुओं से मुक्त करें, उन्हें उनके श्राप और पापों से मुक्त करें और उन्हें उनकी चिंताओं से मुक्त करें। एक साथ प्रार्थना करने में हमारी मदद करें। परमेश्वर, कुछ यात्रा कर रहे हैं, उन्हें बचाओ। प्रभु, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ, मेरे परिवार में हमेशा एक समस्या है जो चिंता कर रहे हैं। उनका उद्धार करो और अपने नाम की महिमा करो। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ।
1: यूहन्ना अध्याय 5:18 की पुस्तक, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हाँ प्यारे लोगों, हम कैसे समझ सकते हैं कि हम भगवान से पैदा हुए हैं? बाइबल कहती है, 1 यूहन्ना अध्याय 4:7 की पुस्तक, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो लोग परमेश्वर से पैदा हुए हैं उनके पास प्रेम पूर्ण मन और कर्म होगा, वे परमेश्वर और दूसरों से प्यार करेंगे। इसलिए जॉन कहते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 4:11 की पुस्तक, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। प्यार उनके लिए निशानी है जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं। इसलिए हमें इस दुनिया में एक प्रेमपूर्ण जीवन जीना चाहिए। ईश ने कहा, पुस्तक यूहन्ना अध्याय 13:34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है
2: वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इसलिए हमें प्रेम से रहना चाहिए। प्रेरित यहूदा भी इसे इस प्रकार कहते हैं, पुस्तक यहूदा अध्याय 1:21। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे प्यारे स्वर्गीय पिता, आभारी हृदय से मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ और आपका सम्मान करता हूँ। कृपया फिर से नया जन्म लेने में मदद करें। हे परमेश्वर, हर उसको आशीष दे जो तेरी सुनता है। उनके आंसू पोछें और उनकी परेशानियों को बदलें और उनकी सभी समस्याओं को दूर करें। मेरे प्यारे पिता, उन लोगों को ठीक करो जो किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं। परमेश्वर, उन लोगों को चंगा करो जो किसी भी कमजोरी से पीड़ित हैं। प्रभु, सभी मंत्रों को कुचल दे, उनके जीवन में चमत्कार होने दे, उन्हें आशीर्वाद दो और उन्हें प्रभु उठो। हमें फिर से जन्म लेने में मदद करें। आप ऐसा करने जा रहे हैं। धन्यवाद पिताजी, मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से यशाया अध्याय 12:2 की पुस्तक, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। हाँ प्यारे लोगों, प्रभु हमारी ताकत है। आप सोच सकते हैं कि मुझ में कोई ताकत नहीं है। क्या मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? मैं बहुत थका हुआ और कमजोर हूँ। प्रभु हमारी ताकत है। डेविड ने कहा, हे यहोवा, तू मेरा बल है और मैं तुझसे प्रेम रखूंगा। हमें उससे प्यार करना चाहिए। वह हमारी ताकत है। आपको उसे मजबूती से पकड़ना होगा। हमें उससे कहना चाहिए, यीशु, तुम हमारी ताकत हो, तुम हमारी शरण हो, तुम हमारे पिता हो, तुम हमारे लिए सब कुछ हो। अगर हम उनके चरणों पर टिके रहे तो वे हमारे लिए ताकत बनेंगे। इतना ही नहीं, यशाया अध्याय 25:4 कहता है कि क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़। क्या तुमने ध्यान दिया? मेरे पास कोई नहीं है। क्या आप सोच रहे हैं कि क्या करना है? परमेश्वर गरीबों के लिए शक्ति है। वह न केवल अमीरों को बल्कि अमीर और गरीब को भी ताकत देता है। चिंता मत करो। हाँ प्रियो, जब भी मेरे जीवन में कमजोरी होती है, प्रभु ने मुझे मेरी कमजोरी से मुक्ति दिलाई है। वह आपके जीवन में आने वाली कमजोरी से भी आपकी रक्षा करेगा। आपको उस पर पूरा भरोसा करना होगा। उस पर विश्वास करो और जो, निश्चय ही वो आपके जीवन में चमत्कार और चमत्कार करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, धन्यवाद पिताजी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आप हमारी ताकत हैं। उन सबों को दृढ़ करो जो पछताते हैं कि मैं इस समय बलवंत नहीं हूँ, कि मैं रोगी हूँ और खाने की शक्ति नहीं रखता। टाइफाइड और कैंसर के बारे में चिंता करने वालों के लिए चंगा करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी बच जाएंगे। आपने कहा था कि ये गरीबों की ताकत है। पिताजी, हम आपकी सराहना करते हैं। 1,000,000 धन्यवाद। हम क्या करते हैं कि आपको रोने वालों की रक्षा और रख रखाव करना है। प्यारे पापा, हमें उनकी सभी कमजोरियों को बदलने और उन्हें नया जीवन देने की जरूरत है। सभी जरूरतों को पूरा करें और सभी के आंसू पोछें और उनका हाथ पकड़कर नेतृत्व करें। हम आपको महिमा और सारी महिमा लाते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।

0: product from Jino Kumbhambadam Music Factory.
1: यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। हाँ मेरे प्यारे लोग, केवल ईश्वर ही हमारा गीत है और हमारे लिए शक्ति है। क्या आप चिंतित हैं कि आप कमजोर हैं और आपका शरीर कमजोर है? चिंता मत करो, परमेश्वर हमारी ताकत है। केवल परमेश्वर ही हमारी ताकत है। इसलिए पवित्र पौलुस फिलिप्पियों अध्याय 4 पद 13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ मेरे प्रिय लोगों, हम मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं जो हमें सामर्थ्य देता है। उसकी शक्ति के कारण हम अपने सभी कार्य कर सकते हैं। उसकी ताकत के कारण हम कुछ भी कर सकते हैं और हम अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए उसने कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वे हमारे लिए सब कुछ करेगा। आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। वह हमारी ताकत और ढाल है, फिर हम क्यों डरें? केवल परमेश्वर ही हमारा गीत है और हमारे लिए शक्ति है। इसलिए चिंता न करें। वह आपकी सारी कमजोरी को बदल देगा और आपको नई ताकत देगा। परमेश्वर हमेशा आपकी ताकत है, तो चिंता मत करो। क्या हम अब प्रार्थना करें? हमारे अच्छे पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे प्रभु परमेश्वर, इतने सारे लोग बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि वे बहुत सी दवाई और सिरप लेकर डॉक्टर के पास गए हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई फायदा नहीं है और न ही कोई सुधार हो रहा है। प्रभु तू उनकी शक्ति बन और उनकी रक्षा करे। हे परमेश्वर, उन्हें अपनी आँख से दीवार की नाई खेले। हे परमेश्वर, तेरी शक्ति उन पर पूरी तरह उतरे, उनके जीवन में चमत्कार करें। तुम वही करने जा रहे हो जो मैंने अपनी प्रार्थना में कहा है। हजारों धन्यवाद। मैं आपको सारी स्तुति, महिमा और सम्मान देता हूँ। मैं अपने प्यारे यीशु मसीह हमारे पिता के नाम से विनम्रतापूर्वक ये प्रार्थना करता हूँ। मत्ती अध्याय 18 पद 19-20 की पुस्तक। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जनवरी पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जब हम एकजुट होंगे और जब हम एक मन से प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु हमारे साथ रहेंगे। यह सच है कि प्रार्थना हर जगह होती है, लेकिन एकता और प्यार की कमी है। यीशु हमारे साथ रहेगा जब 2 या 3 लोग एक साथ आएंगे और यीशु के नाम पर एक स्वर में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना हमारे सांस की तरह है। एक मन से प्रार्थना करना अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इसे ध्यान में रखने के लिए बहुत सावधान रहना होगा। पौलुस यही उपदेश देता है। इफिसियों अध्याय 4 पद 2-3 की पुस्तक। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। इस एकता को तोड़ने के लिए शैतान सक्रिय रूप से काम कर रहा है। हमें शैतान के कार्यों और इरादों को हराना चाहिए। देखो क्या हुआ जब पवित्र आत्मा उंडेला गया और कलीसिया में पुनरुत्थान शुरू हुआ। प्रेरितों के काम अध्याय 2:1-2 की पुस्तक। जब पिंतेकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। पवित्र आत्मा तभी उंडेला जाता है जब वे एक साथ प्रार्थना करते हैं। हमें परिवारों, चर्चों और मंत्रालयों में एकता में प्रार्थना करना सीखना चाहिए। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्नेही अग्रणी स्वर्गीय पवित्र पिता, हे पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर देखते हैं। उन सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उनके आंसू पोंछें जो इस संदेश को सुनते हैं। हे प्रभु, परिवार में सभी समस्याओं को बदलना चाहिए। उन्हें उनकी बीमारी से मुक्त करें, उन्हें उनके आंसुओं से मुक्त करें, उन्हें उनके श्राप और पापों से मुक्त करें। और उन्हें उनकी चिंताओं से मुक्त करें। एक साथ प्रार्थना करने में हमारी मदद करें। परमेश्वर, कुछ यात्रा कर रहे हैं, उन्हें बचाओ। प्रभु, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। मेरे परिवार में हमेशा एक समस्या है जो चिंता कर रहे हैं। उनका उद्धार करो और अपने नाम की महिमा करो। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ
2: क्योंकि आमीन। अध्याय पद 3।
1: सोचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हाँ प्यारे लोगों, आप कह सकते हैं मैं एक चुराया हुआ व्यक्ति हूँ। तुम मुझसे पश्चाताप करने के लिए कैसे कह सकते हो? प्रभु ने सर्दीस की कलीसिया से इस प्रकार कहा। शुरुआत में हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा के उपहार प्राप्त करते हैं, सेवा करते हैं और कई आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं जो अच्छे हैं। लेकिन कई बार अनुमानतः हम पाप में पड़ जाते हैं। प्रभु उन लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहते हैं जो अभिमान से पाप कर रहे हैं। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 12 छंद 21। पौलुस कहता है कि कुरिन्थ की कलीसिया का आध्यात्मिक अनुभव अच्छा रहा, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर जैसे चाहता हूँ वैसे तुम्हें ना पाऊं और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बलखेड़े हों। और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शौक करनी पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था और उस गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। इसलिए हमें जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है उन्हें बहुत पवित्रता की आवश्यकता है। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 17 पद 30। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में अनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। इसलिए पश्चाताप बहुत जरूरी है। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्रिय स्वर्गीय पवित्र पिता, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। इस दिन मैं उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपनी परीक्षा देने जा रहे हैं। उन्हें स्वर्ग से ज्ञान और स्मरण शक्ति दो। हे प्रभु, यदि उन्होंने एक बार भी सीख लिया है तो उन्हें प्रभु सिखाओ। आप जैसा सिखाने वाला कोई नहीं है। आप बोलते हैं, नेतृत्व करते हैं और उनके हाथ पकड़ते हैं, उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अनुग्रह देते हैं। भगवान, उन्हें हर मिनट सिखाओ, उनका हाथ पकड़कर उनका नेतृत्व करें। इसी तरह मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो सभी जरूरतमंद हैं। आप उनके चेहरे से आंसू पोंछने के स्वामी हैं। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊपर उठाएं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ।
2: भजन संहिता की पिता आमीन।
1: अध्याय 79 पद 32। हे परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए। हाँ प्यारे लोगों, इस संसार में अनेक संकट, दुर्घटनाएं, अनेक रोग, दुर्बलताएं, विपत्तियां आती रहती हैं। हम ऐसे समय में रहते हैं, फिर भी शास्त्र कहता है कि जो लोग प्रभु को खोजते हैं वे अपने दिलों में जीवित रहेंगे। आप प्रतिदिन प्रभु को खोजते हैं, उससे प्रार्थना करें कि कोई भी कठिनाई क्यों ना हो। सुबह उठें, प्रार्थना करें और बाइबल पढ़ें। प्रभु की अच्छी स्तुति करते रहना चाहिए, धन्यवाद देते रहो। आपका जीवन मंगलमय होगा। कोई प्लेग आपको नहीं छुएगा। आपके सामने कोई खतरा या दुर्घटना नहीं आएगी। आप जहां भी जाएं, स्तुति और प्रार्थना करें। बेशक आपको किसी खतरे या दुर्घटना का सामना नहीं करनी पड़ेगा। तुम जहां भी जाओ स्तुति और प्रार्थना करते रहो, निश्चय तुम पर कोई संकट न आएगा। परमेश्वर कहता है कि हमारा हृदय जीवित रहेगा।
2: आमोस की पुस्तक अध्याय 5:4। मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। जीवित रहने का क्या अर्थ है? हम भी इस दुनिया में रहते। यीशु पूरी पृथ्वी पर राजा बनकर आ रहा है। उसकी उपस्थिति में जीवित रहेंगे और हम उसके साथ शासन करेंगे। इसलिए यहोवा कहता है कि तुम जीवित रहोगे। यहाँ उत्तरजीविता वास्तविक है। हम भी उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। यीशु राजाओं के राजा के रूप में आएंगे। हम यीशु के साथ भी इस दुनिया पर राज करेंगे। उससे प्रार्थना करो, यकीनन आप जीवन में उस आशीर्वाद को देखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। अपने बच्चों को किसी भी खतरे से दूर रखें। उन्हें किसी भी शिकारी बीमारी से बचाना चाहिए। आपको उन्हें आशीर्वाद देना होगा और उन्हें ऊपर उठाना होगा। मेरे लिए देखो, तुमने कहा था कि तुम जीवित रहोगे। हमें अपने साथ भी शासन करने की कृपा दो। भगवान लोगों को विहानन प्राप्त करने का आशीर्वाद दें। उन बच्चों को आशीर्वाद दें और उनका पालन पोषण करें जो अब जीवित वचन को सुन रहे हैं। हम आपको महिमा और सभी प्रशंसा देते हैं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ।
1: दानियेल पुस्तक अध्याय 3:17।
2: आमीन।
1: हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हमारा परमेश्वर हमें मुक्त कर सकता है। मेरे पास इतनी कठिनाइयां हैं, मुझे कौन छुड़ाएगा? इसलिए तुम आंसू बहाओगे। अपने आंसू पोंछ लो। निश्चय हमारा परमेश्वर हमें सब विपत्तियों से बचाएगा। तो थको मत। बाइबल कहती है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 91:3, वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। इस दुनिया में कीट बढ़ रहे हैं, परेशान मत होइए। तो बाइबल कहती है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 91:6, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। अथक प्रार्थना करें, परमेश्वर निश्चय ही हमें बचाएगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें मेरा धन्यवाद। कितने लोग बिना शांति और बिना सुख के हैं, उन्हें शांति और खुशी दें। परमेश्वर उन्हें आराम और अच्छाई दो। दया गुल होनी चाहिए, उन्हें मौन से भर दो। वे हर जगह शांति के लिए दौड़ रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों को शांति देनी होगी। हर तरफ जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। कोरोना ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है। आपको हमें इन सभी रोगों से मुक्त करना होगा। आपको हम सब पर शासन करना चाहिए। महान कार्य करो और अपने नाम की महिमा करो। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। मैं
2: यशायाह की पुस्तक अध्याय 57:18, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शौक करने वालों को शांति दूंगा। प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, चिंता है कि मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? क्या आप चिंतित हैं कि मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है? क्या आपको चिंता है कि शरीर में कहीं भी स्वास्थ्य नहीं है? चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह निश्चय ही आपके दुखों को बदल देंगे। मेरी कोई माँ नहीं है, नहीं पिताजी, वह मर गए हैं। मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मेरे पास दो दृष्टि नहीं है। क्या आपने देखा कि ये कितना कठिन था? लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दुख में नहीं छोड़ा। यीशु ने कहा, तेरे माता पिता मर सकते हैं, परंतु तेरे छुड़ाने वाले ने कहा कि मैं जीवित हूँ। जिसने उस दिन मुझे बताया, वह इस युग तक मेरी रक्षा करता रहा है। उसने मुझे दिलासा दिया, मेरे दुख को बदला, मेरे आंसू पोंछे और मुझे शांति दी। साथ ही यशायाह अध्याय 66:13 की पुस्तक कहती है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, परमेश्वर शांति का दाता है। सुख देने वाला, आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु को देखो, वह निश्चित रूप से आपके जीवन में आराम लाएगा, वह आपको दिलासा देगा, वह शांति लाएगा, वह तुम्हारे आंसू पोंछ देगा, वह हमेशा आपके साथ रहेगा और हर मिनट आपका हाथ पकड़ेगा। चिंता मत करो। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। अपने हर बच्चे को दिलासा दो जो ये वादा सुनते हैं। शांति दो और उन सभी को खुश करो। उनके बच्चों को बेहतर पढ़ने में मदद करें। पापा, अभी कोरोना का समय है। जब बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, जब आते हैं, उनकी रक्षा करें और उन्हें अच्छी बुद्धि और स्मृति दें। बारिश हो रही है। बारिश से कितने लोग प्रभावित हुए? पापा, हम प्रार्थना करते हैं कि वे यहाँ सो पूछे इस बारिश की बाढ़ से प्रभावित होने से बचने में मदद करें। प्रिय भगवान, उनके काम में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, मुश्किलें हैं। उन्हें चिंता है कि कार्यस्थल पर हर कोई मेरे बारे में घिनौनी बातें कर रहा है। संकट मोचनों से मिलें, उन्हें कार्यस्थल में अच्छी शांति दें, उनकी कृपा प्राप्त करने में हमारी सहायता करें, अपनी आंखों में दया पाने में मदद करें, अच्छी शांति, खुशी और स्वास्थ्य दें। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम प्रेम के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं।
1: वादा
2: अच्छा
1: अध्याय 13:6
2: आमीन। इसलिए हम बेधक होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब परमेश्वर हमारे साथ हो तो हमें किसी बात से नहीं डरना चाहिए। परमेश्वर हमारा साथी है, वह वही है जो हमारी मदद कर सकता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें काम करना चाहिए। प्रभु पर पूरा भरोसा रखें। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें तो वह हमारा सहायक होगा। भजन संहिता 28:7 की पुस्तक कहती है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। हमारे दिल को पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा करना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं करना। कोई भी इंसान एक भ्रम है। यदि हम केवल प्रभु पर भरोसा करते हैं तो सहायता उपलब्ध है। हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। मदद जरूर मिलेगी। क्या हम उससे प्रार्थना करें? हमारे पिता जो हमें प्यार करते हैं और प्यार से मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिता, जो इन जीवित वचनों को सुनते हैं उन पर दया करो। बहुतों को समस्याएं और संघर्ष हैं। हे मेरे परमेश्वर, लोगों की समस्याओं और संघर्षों को बदलें। कई लोगों को तरह तरह की आपत्तियां हैं। विरोध के बीच यहोवा परमेश्वर को उनका हाथ पकड़ना चाहिए। आपने कहा था कि जब शैतान बाढ़ की तरह इकट्ठा होगा तो पवित्र आत्मा उसके खिलाफ झंडा उठाएगा। आपके बच्चों के खिलाफ बहुत सारे जादू और जादू मंत्र हैं। सभी बुराइयों और समस्याओं से हम प्रार्थना करते हैं कि बच्चे जीवित रहें और सुरक्षित रहें। सबका ख्याल रखना। परमेश्वर की कृपा उन्हें घेर ले। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक
1: इस प्रार्थना को भजन संहिता 16:6
2: की पुस्तक मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। हाँ प्यारे लोगों, हमें प्रभु को हर चीज से पहले रखना चाहिए। हमें हर चीज में प्रभु को अपने सामने रखना चाहिए, चाहे वह व्यवसाय हो या परिवार। क्या आपको क्रेडिट की समस्या है? चिंता मत करो, यीशु से प्रार्थना करें। इस कर्ज को चुकाने में मेरी मदद करने के लिए परमेश्वर से पूछो। हे प्रभु, मुझे यह ऋण स्वयं चुका दो और प्रभु के हाथ में पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तब प्रभु निश्चय हमें प्रतिफल देगा। वह हमारी दुर्दशा बदल देगा, वह समस्या को बदल देगा और आपके काम, परिवार, व्यवसाय में आपके साथ रहेगा। चिंता मत करो। भजन संहिता की पुस्तक 138 पद 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ प्यारे लोगों, जब हम उसे अपने सामने रखेंगे तो यहोवा हमारे लिए सब कुछ करेगा। चाहे कोई भी समस्या हो, अगर हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ भी करेगा। चिंता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, परमेश्वर तुम्हें अच्छी नौकरी देगा। वह तुम्हारे आंसू पोंछेगा और तुम्हें ऊंचा उठाएगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिताजी। अब हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस शो को सुन रहे हैं। सबका भला करो और उन्हें मजबूत करो। हर क्रेडिट समस्या को बदलें। अब कर्जदारों को चुकाना होगा। उन्हें वो सब कुछ दें जो उन्हें चाहिए और आंसू पोंछ दें। जिन लोगों को काम में परेशानी हो रही है, उनके लिए काम पर समस्या बदलें और उन सभी को काम पर पदोन्नति दें। उनकी रक्षा करें। ईश्वरीय उपस्थिति हमेशा सबके साथ रहे। पारिवारिक समस्याओं को बदलना चाहिए और परिवार में बड़ी शांति लाना चाहिए। झगड़े सब कुछ बदल देते हैं। उनके आंसू पोंछे और परिवार में दिव्य शांति और खुशियां दे। ऐसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हम विनम्रता पूर्वक प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।

पहला अध्याय 9-10 की पुस्तक। भजनहार दाऊद कहता है, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हाँ प्रियो, यदि हम परमेश्वर को ढूंढें तो वे हमें कभी न त्यागेगा। हमें प्रतिदिन प्रभु की खोज करनी चाहिए। सुबह उठकर उससे प्रार्थना करें। आपको धन्यवाद देना चाहिए उनकी पवित्र बाइबल पढ़ने के लिए। यदि हम प्रभु की स्तुति करते रहें तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 34:10। जवान सिंहों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। हाँ प्रियो, यदि हम परमेश्वर को खोजेंगे तो सब भलाई हमारे पास आएगी। प्रतिदिन प्रभु को खोजो। प्रभु निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में सभी आशीर्वाद देगा और आपको ऊंचा करेगा, ताकि कोई अच्छाई कम न हो और कोई आशीर्वाद कम न हो। प्रतिदिन प्रभु को खोजो, निश्चित रूप से वे आपको आशीर्वाद देगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे अच्छे पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये वादा सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद और उत्थान करे। आपको किसी भी आशीर्वाद को खोए बिना अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए। आप जो प्यार करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह आज के पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हाँ प्रियो, घोड़ा युद्ध के दिन के विरुद्ध तैयार है। इस तरह हम वही करना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन जीत परमेश्वर की तरफ से होती है। बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं उसमें प्रभु को सफलता अवश्य देनी चाहिए। उच्च अंक प्राप्त करना चाहते हैं? केवल परमेश्वर ही आपको सफलता दे सकते हैं। उससे नियमित रूप से प्रार्थना करें, उसकी स्तुति करें, बाइबल पढ़ें और विश्वास करें कि हमारा प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो पहले ईश्वर को खोजिए। पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो और ये सब भी तुम्हें दिया जाएगा। तभी वो आपको जीत दिलाएगा। अपने जीवन में हर चीज में परमेश्वर को पहले रखें, उसे अपने सामने रखें और परमेश्वर आपको ये सब देगा। वह सफलता लाएगा। आपकी असफलताएं सफलता में बदल जाएंगी। यदि आप व्यापार में असफल होते हैं तो भी परमेश्वर आपके परिवार में परेशानी, आंसू, चिंताएं बदल देंगे और परमेश्वर जरूर बदलेंगे। प्रार्थना करो और देखो, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार और लाभ करेंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें विजय प्रदान करेगा। वह तुम्हें कर्ज से मुक्त करेगा और तुम्हें आंसुओं से मुक्त करेगा। केवल वही आपको मुक्त कर सकता है। आप पूर्व या पश्चिम से नहीं जीतेंगे। सफलता किसी जंगल से नहीं मिलती, विजय प्रभु की ओर से आती है। परमेश्वर की स्तुति करो जो हमें विजय प्रदान करता है। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, हम आपकी सराहना करते हैं। बहुत से लोग अपने पेशे के बारे में चिंता करते हैं। वे चिंतित हैं कि मेरा व्यवसाय घाटे में चल रहा है। परमेश्वर उनके जीवन को आशीर्वाद दे और उन्हें जीवन में सफल बनाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो व्यापार के नुकसान से चिंतित हैं। उन्हें सफलता दे, उनके जीवन में अच्छे काम करें। चमत्कार और चमत्कार करो प्रभु। छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करें और बुद्धि और स्मृति देकर सभी परीक्षाओं को पास करें। उन पर दया करो प्रभु। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। हे परमेश्वर, उन्हें सब रोगों से चंगा कर और अपने नाम की महिमा कर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपकी प्रशंसा करनी होती है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ। आमीन।

0: उत्पत्ति अध्याय 12 पद 2 और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। हाँ प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर आपके नाम को गौरवान्वित करेगा। वह आपको ऊंचा करेगा, वह आपको ऊंचा करेगा जहाँ आपने अपने जीवन में आंसू बहाए थे। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो। आपने कितनी जगहों पर अशांति का अनुभव किया है? लोगों ने आपसे कितनी जगहों पर नफरत की है? कितनी जगहों पर लोगों ने आपकी निंदा की है? क्या आपको लगता है कि मैं लोगों के बीच घृणित हूँ? परमेश्वर निश्चय ही तुम्हारे जीवन में महान कार्य करेगा। वह सिर उठाएगा, वह आपको आशीर्वाद और ऊंचा करने के लिए निश्चित है। किसी बात की चिंता मत करो, निश्चय परमेश्वर तेरे नाम की बड़ाई करेगा। वह आपको खुश रखेगा। उसका कोई समकक्ष नहीं है और उसके जैसा कोई नहीं है। सभी को आप पर गर्व होगा कि वे कितने खुश हैं और सभी कहेंगे कि उनमें सभी आशीर्वाद भरे हुए हैं। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो। क्या अब हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिताजी, क्या आप इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद, शांति, आनंद और आराम प्रदान करें? सभी लोगों को ऊपर उठाना चाहिए। हाँ परमेश्वर। और दाऊद ने कहा, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मेरे परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में भी ऐसा ही करें जो अब आपका वचन सुन रहे हैं। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। आपको उनके जीवन में चमत्कारी कार्य करने चाहिए। तुम वही करने जा रहे हो जो मैंने अपनी प्रार्थना में की है। हजारों और हजारों धन्यवाद। मैं आपको सारी स्तुति, महिमा और सम्मान देता हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक प्रार्थना को यीशु के नाम अध्याय 28 पद 25। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे हृष्ट पुष्ट हो जाता है। हाँ प्रिय लोगों, आपको प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। वह आपके जीवन में समृद्धि लाएगा, वह आपके व्यवसाय में समृद्धि लाएगा, वह आपके पेशे में समृद्धि लाएगा, वह आपकी मुश्किलों को बदल देगा और आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। आप जहाँ भी जाए, परमेश्वर आपको आत्माओं को परमेश्वर के पास लाने का आशीर्वाद दे। आपको अच्छी आध्यात्मिक समृद्धि भी मिलेगी। आप प्रभु के भीतर अच्छी तरह विकसित हो सकते हैं। हमेशा प्रभु पर भरोसा रखें। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेगा। उस पर विश्वास करो, पूरा विश्वास करो। पवित्र शास्त्र कहता है कि अनुग्रह उन्हें घेर लेता है जो प्रभु पर भरोसा करते हैं। उस पर पूरा भरोसा करें, वह तुम्हें अनुग्रह से घेर लेगा। इतना ही नहीं, होशे अध्याय 12 पद 5 की पुस्तक कहती है, और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोहता रहे। हमें उस पर लगातार भरोसा करना चाहिए। एक बार जब आपको लाभ हुआ हो तो प्रभु पर भरोसा करना न छोड़ें। पवित्र शास्त्र हमें बिना रुके अपने परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए कहता है, यीशु मेरे लिए काफी है, चाहे कुछ भी आए। और अगर हम दृढ़ता से मानते हैं कि मुझे यीशु की आवश्यकता है, तो प्रभु आपके जीवन में असीम आशीर्वाद, शांति और आनंद लाने और आपको ऊंचा करने में सक्षम है। थकना मत। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। धन्यवाद पिताजी। हर उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार करें जो आपके जीवित वचनों को सुनता है। उन्हें आप पर भरोसा करने में मदद करें। आप पर निर्भर रहें और आपको जानें। अविवाहित बच्चों की अच्छी शादी करनी चाहिए। व्यवसायिक परिवारों को अपना व्यवसाय बेहतर ढंग से चलाने में सहायता करें। व्यवसाय परिवारों को बेहतर व्यवसाय करने का आशीर्वाद दें। हर परिवार को आशीर्वाद दें। परिवारों में पाई जाने वाली सभी समस्याओं और संघर्षों को बदलें। हम प्रार्थना करते हैं कि ये सभी लोग धैर्य और उन्नत हों और आपके बच्चों को आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का आशीर्वाद मिले। उनके आध्यात्मिक जीवन में हर दिन बढ़ने में उनकी मदद करें। परमेश्वर की सेवा करने वाले प्रत्येक सेवक के लिए कई आत्माएं उपलब्ध हों। परमेश्वर को परमेश्वर के सेवकों के लिए बहुत सारी आत्माओं को लाने में मदद करनी चाहिए जो चिंतित हैं कि वे आत्माओं को परमेश्वर के पास नहीं ला पाएंगे। परमेश्वर के सेवकों का बहुत शक्तिशाली उपयोग करें। आशीर्वाद और महिमा दो। हम आपको सभी प्रशंसा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।
1: हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमारे देश के लिए हमने अभी परमेश्वर के दास के साथ मिलकर हमने प्रार्थना करी उसकी सुरक्षा के लिए, उसको आशीर्वाद करते हुए। क्यों ना हम एक गीत को भी प्रार्थना के रूप में परमेश्वर की तरफ उठाएं। और साथ साथ में एक घोषणा भी है इस गीत में। कितने लोग मेरे साथ जुड़कर इस गीत को गाना चाहेंगे? एक प्रार्थना के साथ साथ एक घोषणा।

हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमारे भारत देश का नाम है, आमेन। कितनों ने पढ़ा है? अमेरिका का नाम नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, लेकिन भारत का नाम हम हमारे परमेश्वर के वचन में, हमारे बाइबल में, आपके हाथों में जो परमेश्वर का वचन है उसमें एक नहीं लेकिन दो बार पढ़ते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन में हमारे भारत ने स्थान पाया है तो जरूर परमेश्वर के दिल में उसके लिए खास योजना है, आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। जो विश्वास करते हैं वो योजना पूरा होते हुए अपनी आंखों से आप देखेंगे, आमेन। चाहे पूरी दुनिया, पूरा नरक उस परमेश्वर की योजना के खिलाफ खड़े हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने जो ठाना है वो हमारे देश में पूरा होकर ही रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि अगर दो बार नाम लिखा है तो हमारे देश में परमेश्वर दुगना बेदारी, डबल रिवाइवल भेजेगा। हालेलुया हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे इस विषय में बातचीत किया है और पिछले 19 साल से इसी विषय के लिए लगातार प्रार्थना कर रही हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ मेरी ही पीढ़ी में कम से कम इन बातों का शुरुआत में देखकर ही मेरी आंख बंद होंगे, आमेन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमारा फर्ज है हम प्रार्थना करते रहे इस विषय के लिए, जो इच्छा परमेश्वर के दिल में है, जो योजना परमेश्वर ने हमारे देश के लिए बनाई है उसको हमें स्वर्ग से उतारना है, आमेन। कई सारी बातें हैं जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो किसी के चित्त में भी नहीं आया, ये सब बनाकर किस लिए रखा है परमेश्वर ने? स्वर्ग में रहने के लिए नहीं, लेकिन धरती पर इन बातों को प्रार्थना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से उतारने के लिए, आमेन। हालेलुया। आज जब हम विश्वास से गाएंगे बजाएंगे परमेश्वर की यह की स्तुति आराधना, जब हम करेंगे स्वर्ग हमारे मध्य में उतर आने पाए, स्वर्ग इस शहर में उतर आने पाए, स्वर्ग हमारे देश में उतर आने पाए। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।

परमेश्वर, हालेलुया। हाँ प्रभु, तू सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर, कोई भी तुझे उसमें से गिरा नहीं सकता, अनंत काल से अनंत काल तक, हालेलुया। From eternity to eternity, oh God, you are the everlasting God, you are the one who is seated on the throne and you reign forever, oh God, hallelujah. We declare your kingdom, we declare your reign, oh God, hallelujah, over our lives, over your church and over this nation and this city, oh God, this morning. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, come and take your place, we pray, in our midst, in our lives, and in this nation. And have your way, perfect your will, the one that you designed, even before the foundations of the world. Fulfill that. Lead us to that, we pray. For that, we come in our lives. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. आज का ये दिन किसने बनाया? आज का ही नहीं, हर दिन किसने बनाया? किसने बनाया? थोड़ा जोर से बोलें। यस, ये अकस्मात नहीं है। हम यहाँ पर अकस्मात नहीं है ना, हम हमारे पास ताकत है, हमारे पास दौलत है, इसलिए नहीं कि आज हम जीवित हैं। ये परमेश्वर की प्योर मर्सी, ये उसकी करुणा, उसकी दया है अगर आज हम जीवित हैं। आमेन, हालेलुया। इसलिए हर दिन जो परमेश्वर हमारे जीवन में दान के रूप में देता है, उसमें हम उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आए मिलकर, आप काफी देर से बैठे हुए हैं तो क्यों ना थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाए। जिसको मतलब, अगर आप को कोई दिक्कत नहीं है खड़े होने में, तो मैं चाहूंगी कम से कम इस अगला गीत के लिए हम लोग खड़े हो जाएं, और जैसा गीतकार कहता है आओ हम गाएं, हम नाचें, क्योंकि बैठकर तो नाचना मैंने आज तक नहीं सीखा है, तो आपने सिखाया तो जाने से पहले मुझे भी सिखा के जाइएगा। खड़े होना पड़ता थोड़ा नाचने के लिए, और मसीह लोग झूठ बोलना भी नहीं और गाना भी, इसलिए मैंने आपको खड़ा किया है, तो ताकि हम सच्चाई से, जैसे पासबान जियो से हमने सुना, पिता सच्चे आराधकों को ढूंढता है, तो हम जो बोलते हैं हम कोशिश करें कि हमारे हमारे एक्शंस के द्वारा भी उसको हम प्रकट करें। जब हम हाथ उठाने के लिए कहते हैं तो हाथ बांध कर ना रखें, अगर हम नाचने के लिए कहते हैं तो हम थोड़ा सा हिले, हिले तो सही, अगर नाचे नहीं तो कम से कम हिले तो सही, ठीक है। सियोन पर्वत के समान मैं अटल रहूंगा, यहाँ से इधर भी उधर भी नहीं हिलूंगा, ऐसा कोई भी ऐसे खड़ा नहीं होना, ठीक है। तो आए मिलकर इस गीत को गाकर परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी महिमा कर।

निराशा है आज, है क्या? तो आज हम उसको भगाने जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मसीह क्राइस्ट इज द होप ऑफ ग्लोरी, महिमा का आशा हमारे अंदर जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ भी आ जाए, हम उसको चुनौती देते हैं, हम हमारे समस्याओं को चुनौती देते हैं। समस्याओं को हम अधिकार नहीं देते कि वो हमारे ऊपर राज करे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम फूले फले और सारी पृथ्वी के ऊपर हम राज करे, शासन करे, अधिकार रखे। आमेन, हालेलुया। सबसे पहले तो हम अपनी समस्याओं के ऊपर अधिकार रखना और राज करना सीखे, फिर सारी धरती पे रखेंगे। हालेलुया। कई बार तुम छोटी छोटी जो परेशानियां या बीमारियां या तकलीफें जो आती है, तंगी आती है, तो हम उसके नीचे दब के रहते हैं। नहीं, परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हमें उसके ऊपर राज करें। आएंगी बातें, सब आएंगी, तभी तो हम प्रभुता की, यीशु की प्रभुता की घोषणा और जो अधिकार उसने हमें दिया है, उसके नाम में जो दिया है, हम उसको जताएंगे। हालेलुया, आमेन।

यीशु अंदर है तो हमारे अंदर आनंद की भरपूरी होगी, आमेन। और भरपूरी है तो वो दिखता है ना। कोई भी चीज अगर उमड़ेगा तो वो फैलता है, वो दिखता है, आमेन।

0: विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन।
1: यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता मत करना, कल आप ही अपनी चिंता कर लेगा, क्योंकि आज ही इतनी सारी बातें है ना। और यीशु मसीह ने ये भी कहा क्योंकि कल तो कभी नहीं आएगा ना, हम तो आज में जी रहे, हम तो कल में नहीं जी रहे, ना हम बीते कल में जीते हैं ना हम आने वाले कल में जीते हैं। हाँ विश्वास अलग बात है, लेकिन हम तो आज जी रहे हैं, है ना। अगला क्षण किसने जाना, कल किसने जाना, इसलिए हर दिन आज उस दिन में हम क्या है, हम ये ना सोचे हम कल कल के लिए कल आराधना करेंगे, कल परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे। नहीं, जो आज परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम पूरे भरपूरी के साथ, क्योंकि यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। आमेन, हालेलुया। बहुतायत मतलब सामानों का नहीं, चीजों का नहीं, धन दौलत की नहीं, वो देता है तो ले लो, लेकिन उससे बढ़कर हमारा अंदर का जो भावना है वो कैसा होना चाहिए, बहुतायत। बहुतायत की खुशी, बहुतायत का आनंद, बहुतायत का क्या बहुत बड़ा लिस्ट है, बहुतायत का प्रेम जो आत्मा के फल है ना, सारा उस सब का बहुतायत को हमें दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में अनुभव करना है। आमेन, हालेलुया। थोड़ा बहुत तो अनुभव करने वाले जोर से हालेलुया बोलिए।

हमें देते हैं परमेश्वर, हम उसको लाइटली ना ले, उसको तुच्छ ना जाने परमेश्वर, कि आज हम हैं तो कल भी हम रहेंगे, लेकिन हर पल प्रभु हालेलुया enable us to be God conscious, हालेलुया, yes Lord, हालेलुया, yes your love conscious, your mercy conscious, oh God, हालेलुया, आपकी करुणा दया का परमेश्वर, हर पल प्रभु हम उसके प्रति हालेलुया प्रभु जागरूक रहें, yes, इसलिए नहीं क्योंकि हम इसके योग्य हैं, इसलिए क्योंकि तू तेरा ये प्रेम है परमेश्वर, हालेलुया, हाँ प्रभु, और हमें मदद कर, जैसे गीतकार कहता है, हर दिन हम तेरी स्तुति करें, हर पल हम तेरी महिमा गाएं परमेश्वर, क्योंकि इसलिए तूने हमें रचा है कि हम तेरे साथ संगति करें, तुझसे प्रेम करें, तेरे साथ हम एक हो जाएं परमेश्वर।

स्वर्ग में करोड़ों दूत इसलिए बनाए गए कि वो परमेश्वर की याह की महिमा करें, स्तुति आराधना करें। उन्होंने उद्धार क्या है नहीं जाना। मैं सोचती हूँ उनका ड्यूटी है कि वो परमेश्वर की आराधना करें, लेकिन हमारी कहानी अलग है। ये हमारी कोई ड्यूटी तो नहीं, लेकिन क्या होता है, ये हमारा प्रेम है, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया और उस प्रेम को हमारे अंदर उंडेला कि आज हम वापस उसे प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा, पहली और आखिरी मैं सोचती हूँ सबसे महान आज्ञा ये है कि हम अपने पिता से, यहोवा से, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, शक्ति से, प्राण से, सबके साथ, जैसे भजन कार लिखता है, जो कुछ मुझ में है उस सब के साथ हम उसकी भक्ति करें, उसकी आराधना करें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा गाएं, उसको प्रेम करें। तो क्यों ना उन करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम इन पंक्तियों को उठाएं।

आवाजों को चौठा कर Come on, give your best voices to

0: आज का वादा, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 31 पद 14। और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी, यहोवा की यही वाणी है। हाँ प्यारे लोगों, परमेश्वर हम पर दृष्टि करके कहता है कि मेरी प्रजा उस भलाई से तृप्त होगी जो मैं उन्हें दूंगा। क्या आप अपने जीवन से असंतुष्ट हैं? क्या आप चिंतित हैं कि मेरे जीवन में एक भी अच्छाई नहीं है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी प्रजा उस भलाई से तृप्त होगी जो मैं दूंगा। निश्चय ही वो सर्वशक्तिमान है जो तुम्हें भलाई का मुकुट देगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। लूका का सुसमाचार अध्याय 1:53। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। हमें परमेश्वर में भूख और प्यास चाहिए। हमारा हृदय प्यासा और परमेश्वर का भूखा होना चाहिए। जब आप यीशु को प्यास से ढूंढते हैं, तो वे आपके जीवन की खामियों को बदल देगा और आपको पूर्ण भलाई से भर देगा। चिंता मत करो, यीशु आपका भला करने के लिए तैयार और उत्सुक हैं। क्या हम अपने प्रभु से पूछें, हे प्रभु, हमें तुम में भूख और प्यास दो। मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए। हमें प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। इसे अर्जित करने की इच्छा मेरे हृदय से दूर हो जानी चाहिए। तब परमेश्वर निश्चय तुझे भलाई से तृप्त करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। आपके बच्चे चिंतित हैं। तूने कहा है कि मेरी प्रजा भलाई से तृप्त होगी। इसी तरह अपने हर एक बच्चे को अपनी भलाई से भर दो। आपने कहा था कि मेरे द्वारा दिए गए लाभ से मेरे लोग संतुष्ट होंगे और वह वादा पूरा होगा। सभी को अच्छाई से संतुष्ट करें। प्रभु हमें आप पर भूख और प्यास दे। हम आखिरी मिनट में रहते हैं, ये अंतिम अवधि है। यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं। हम दुनिया की भूख नहीं चाहते। हमें तुम पर भूखे प्यासे रहने का आशीर्वाद दो। आप जो दयालुता करने जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। हम अपनी प्रशंसा और आभार व्यक्त करते हैं। हम प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: वादा यशायाह की पुस्तक अध्याय 26:3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ प्यारे लोगों, जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमें पूर्ण शांति प्राप्त होगी। हमें उस पर कैसे भरोसा करना चाहिए? भजनहार कहता है, भजन संहिता अध्याय 71:14। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। एक या दो दिन नहीं, हमें हमेशा उन पर भरोसा करना चाहिए। भजनहार इसे इस प्रकार कहता है, भजन संहिता अध्याय 62:8। है लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो। जब हम हर समय उस पर भरोसा करते हैं तो वे पूर्ण शांति जो प्रभु देता है वे हमारे दिलों को भर देगी। हमें परिस्थितियों को देखकर प्रभु पर भरोसा नहीं करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा को एक बच्चा देने का वादा किया। यहाँ तक कि इब्राहिम और सारा भी बहुत बूढ़े थे। क्या आप जानते हैं इब्राहिम ने क्या किया? बाइबल कहती है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 4:18। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। यहाँ तक कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी हैं। हालांकि हमें पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा करना चाहिए। हमें उसे मजबूती से पकड़ना चाहिए, तब प्रभु हमें पूर्ण शांति देगा। इसलिए अय्यूब ने कहा, अय्यूब अध्याय 13:15, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो अभी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। क्या हम आज इसके लिए खुद को समर्पित कर दें? निश्चय ही यीशु आपको आशीष देगा। क्या अब हम प्रार्थना करें? मेरे स्वर्गीय पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, जो लोग तेरे जीवित वचनों को सुने, उन्हें उनमें से प्रत्येक को आशीर्वाद देना चाहिए। उन्हें मजबूत करें। अपने अभिषेक से बंध होने के लिए तेरा अनुग्रह उन्हें घेरे रहे प्रभु। उनके पूरे जीवन से डर और रोमांच को दूर करें, उनके जीवन में चमत्कार और चमत्कार करें। आप स्वर्ग से इस दुनिया में आए हैं हे प्रभु, आप हमें बचाने के लिए पैदा हुए थे। यहोवा हमारे लिए आया था। हर किसी के आंसू पोछे, उन्हें आशीर्वाद दे। महान काम करो और अपने नाम की महिमा करो भगवान। मैं तेरी सारी स्तुति आदर और महिमा देता हूँ। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
2: यूहन्ना अध्याय 14:16
1: आमीन। प्रिय भाइयों बहने, ईश ने कहा, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कौन है ये दूसरा कम्फर्टेटर? वह पवित्र आत्मा है। एक अन्य कम्फर्टेटर का अर्थ है सहायक। इसलिए हमें पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की आवश्यकता है। शास्त्र कहता है अय्यूब अध्याय 33:4, मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है।

0: शास्त्र कहता है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 17, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जब पवित्र आत्मा हमारे पास आएगा तो हम सभी चीजों में मुक्त हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ईश ने कहा, प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी के सर्व भाग तक मेरे साक्षी बनोगे। जब पवित्र आत्मा हमारे पास आता है, हमारी आत्मा और शरीर को समृद्ध करती है। वह हमें गवाह के रूप में बदल देता है। और शास्त्र एक और महत्वपूर्ण बात कहता है, 1 यूहन्ना अध्याय 12 पद 27, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। इसलिए आज ही पवित्र आत्मा प्राप्त करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यार से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हैं। आज हमें पवित्र आत्मा दें। पवित्र आत्मा का अभिषेक अनिवार्य है, जरूरत है। लोगों के आंसू पोंछने चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य दें। वे जहां भी जाएं उनकी रक्षा करें। सभी बाधाओं को दूर करें और आशीर्वाद दें और ऊपर उठाएं। मैं आपकी स्तुति करता हूं यहोवा। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूं।
1: उपदेशक तथा श्लोक
0: तथा धीमान के तुल्य कौन है? हाँ प्यारे लोगों, किसी कार्य को करने के लिए बुद्धि ही कुंजी है। मैं ये नहीं जानता, सोच रहा था कि ये कैसे करें। क्या आप चिंतित हैं कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ? क्या करें, मैं परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला सकता? क्या हम व्यवसाय में हैं और क्या आप चिंतित हैं कि मैं ये व्यवसाय ठीक से नहीं कर पाऊंगा? परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा। हर दिन उससे ज्ञान मांगो। प्रभु से आपको बुद्धि देने के लिए कहें। प्रभु तुम्हें सब कुछ ठीक करने की बुद्धि देगा। हे प्रभु, मुझे सब कुछ करने की बुद्धि दे। परमेश्वर मुझे सारी बुद्धि देगा। पढ़ने वाले बच्चों को परमेश्वर से ज्ञान मांगना चाहिए। वह कहता है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो जो सबको देता है। यदि तू प्रभु से मांगेगा तो वह तुझे बुद्धि देगा। प्यारों, निश्चय ही वो तुम्हें सब कुछ सुचारू रूप से करने के लिए बुद्धि और अनुग्रह देगा। पवित्र शास्त्र कहता है, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 1 श्लोक 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। क्या तुमने ध्यान दिया? प्रभु मुझे देखता है। परमेश्वर उन लोगों को बुद्धि देगा जो उसका भय मानते हैं। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। प्रभु से डरो, वह तुम्हें बुद्धि देगा। वह तुम्हें निश्चय बुद्धि देगा। वह तुम्हें सब कुछ करने की बुद्धि देगा। आप कुछ भी कर सकते हो। क्या हम प्रार्थना करें? प्रिय प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। कितने लोग इस समय मेरे पास परिवार बढ़ाने की बुद्धि नहीं है, मेरे पास अपने बच्चों को पालने की बुद्धि नहीं है, मुझे नहीं पता कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। चिंतित माता पिता को ज्ञान देना चाहिए। बच्चों के इलाज के लिए आपको बुद्धि देनी चाहिए। जो अपना परिवार चलाना और व्यवसाय चलाना नहीं जानते उन्हें ज्ञान देना चाहिए। आप हर परिवार के लिए जिम्मेदार हैं। आपको सभी को बीमारियों और फलों से आशीर्वाद देने और उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। आपको श्राप की शक्ति को नष्ट करना होगा। हम आपको सारी महिमा और महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। आमीन आमीन।

मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे मौका मिला है आपके सामने भजन संहिता 139 को पेश करने का। इसमें लिखा है, दोनों आलम में कौन तुझसा है, अपने जैसा तो तू ही अकेला है।

0: हमारे खुदा। आज का वादा भजन संहिता अध्याय 16 पद की पुस्तक। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। हाँ प्यारे लोगों, हमें प्रभु को हर चीज से पहले रखना चाहिए। हमें हर चीज में प्रभु को अपने सामने रखना चाहिए, चाहे वह व्यवसाय हो या परिवार। क्या आपको क्रेडिट की समस्या है? चिंता मत करो, यीशु से प्रार्थना करें। इस कर्ज को चुकाने में मेरी मदद करने के लिए परमेश्वर से पूछो। हे प्रभु, मुझे यह ऋण स्वयं चुका दो और प्रभु के हाथ में पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तब प्रभु निश्चय हमें प्रतिफल देगा। वह हमारी दुर्दशा बदल देगा, वह समस्या को बदल देगा और आपके काम, परिवार, व्यवसाय में आपके साथ रहेगा। चिंता मत करो। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 138 पद 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ प्यारे लोगों, जब हम उसे अपने सामने रखेंगे तो यहोवा हमारे लिए सब कुछ करेगा। चाहे कोई भी समस्या हो, अगर हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ भी करेगा। चिंता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है। परमेश्वर तुम्हें अच्छी नौकरी देगा। वह तुम्हारे आंसू पोंछेगा और तुम्हें ऊंचा उठाएगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता, जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिताजी। अब हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस शो को सुन रहे हैं। सबका भला करो और उन्हें मजबूत करो। हर क्रेडिट समस्या को बदलें। अब कर्जदारों को चुकाना होगा। उन्हें वो सब कुछ दें जो उन्हें चाहिए और आंसू पोंछ दें। जिन लोगों को काम में परेशानी हो रही है, उनके लिए काम पर समस्या बदलें और उन सभी को काम पर पदोन्नति दें। उनकी रक्षा करें। ईश्वरीय उपस्थिति हमेशा सबके साथ रहे। पारिवारिक समस्याओं को बदलना चाहिए और परिवार में बड़ी शांति लाना चाहिए। झगड़े सब कुछ बदल देते हैं। उनके आंसू पोंछें और परिवार में दिव्य शांति और खुशियां दे। ऐसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हम विनम्रता पूर्वक प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: आज का वादा
0: प्यारे
1: यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। कितने लोग आंसू और पीड़ा में बिना शांति के हैं, है न? चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। चिंता मत करो, यीशु वह परमेश्वर है जो हमें शांति देता है। वही हमें शांति दे सकता है। उसी ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सोतों और सब वस्तुओं को बनाया। इसलिए वह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने आंसू पोंछ लो। आप धारावाहिक देख सकते हैं कि शांति नहीं है। आप फिल्में देख सकते हैं कि शांति नहीं है। यह सब व्यर्थ है। वह शांति स्थायी नहीं है। बहुत बड़ा भाइयों और बहनों, जो शांति प्रभु देता है वो शाश्वत है और हमें नहीं छोड़ेगी। यशाया की पुस्तक अध्याय 26 पद 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ प्रियो, हमें यीशु को दृढ़ता से थामे रहने की जरूरत है। आज शांति मिली है। हर मत मानो कि तुम उसे छोड़ सकते हो। मजबूती से पकड़ना है। तुम्हें पता है कब तक? अंत तक मजबूती से पकड़ना चाहिए। यदि आप उसे थामे रहेंगे तो वह आपको नदी की तरह शांति देगा। वह शांति के देवता हैं। वह जो शांति देता है उसे कोई नहीं छीन सकता। वह आपके जीवन में महान कार्य करेगा। यीशु को थामे रहो। आपको उस पर भरोसा करना होगा। वह हमें पूरी शांति देगा। क्या आपको लगता है कि शांति नहीं है? मेरे पास कोई माँ नहीं है, कोई पिता नहीं है, भाई बहन में से कोई नहीं, कोई आंख नहीं, परंतु यहोवा ने मुझे अपनी पूर्ण शांति दी है। आपको उसे मजबूती से पकड़ना होगा। प्यारों, जब आप भ्रमित और थके हुए हों तो आपको यीशु से पूछना चाहिए, यीशु मुझे शांति दो, तब वह तुम्हें निश्चय शांति देगा। वह आपके जीवन में महान कार्य करेगा, जरूर देंगे, आधे मन से नहीं, पूरे मन से यीशु को थामे रहो। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता, जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग बिना शांति और बिना सुख के हैं, उन्हें शांति और खुशी दें। परमेश्वर उन्हें आराम और अच्छाई दो, आशीर्वाद और लाभ सभी को घेरें, उन्हें अपनी शांति से भरें। वे हर जगह शांति के लिए दौड़ते हैं। क्या वहां जाने से शांति होगी? वे दौड़ रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों को शांति देनी चाहिए। आपको हम सब पर शासन करना चाहिए। महान कर्म करो। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं।
0: अच्छा पिताजी, पुस्तक अध्याय 14:4, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। हाँ प्यारे लोगों, क्या मैं पाप में पड़ जाऊंगा? क्या मैं अंत तक खड़ा रहूंगा? ये उलझने आपके दिल में बढ़ सकती हैं। तो हम चिंता न करें। बाइबल कहती है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12:1, इस कारण जबकि गवाह का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। यीशु हमें स्थिर कर देगा, वह आपको पाप से बचाएगा। परमेश्वर ने दाऊद के विषय में कहा, भजन संहिता अध्याय 89:36 की पुस्तक, मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य की नाई मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। यीशु हमें स्थिर कर देगा, वह ऐसा करने में सक्षम है। वहां आगे बाइबल कहती है, यहूदा अध्याय 1:24 की पुस्तक, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, इसलिए अपने दिलों में परेशान मत हो। यीशु आपकी रक्षा करने में सक्षम है। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्नेही अग्रणी स्वर्गीय पवित्र पिता, हे पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर देखते हैं। उन सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उनके आंसू पोंछें जो इस संदेश को सुनते हैं। हे प्रभु, परिवार में सभी समस्याओं को बदलना चाहिए। उन्हें उनकी बीमारी से मुक्त करें, उन्हें उनके आंसुओं से मुक्त करें, उन्हें उनके श्राप और पापों से मुक्त करें और उन्हें उनकी चिंताओं से मुक्त करें। परमेश्वर, कुछ यात्रा कर रहे हैं, उन्हें बचाओ। प्रभु, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। मेरे परिवार में हमेशा एक समस्या है जो चिंता कर रहे हैं। उनका उद्धार करो और अपने नाम की महिमा करो। हे प्रभु, उन्हें आशीर्वाद दो और उन्हें उठाओ। प्रभु, मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। मैं भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 105:4, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हमें हर दिन उसकी तलाश करनी चाहिए। प्रातः उठकर प्रभु की स्तुति करो, बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। आपके जीवन में अपार खुशी और शांति रहेगी। परमेश्वर तुम्हें बिना माप के आनंद देगा। आपको हर दिन समुदाय को खोजना चाहिए। बाइबल कहती है कि उसे हमेशा समुदाय की खोज करनी चाहिए। कुछ हमने प्रार्थना की, ये मत कहो कि मैं 10 दिन बाद और 5 दिन बाद फिर प्रार्थना करूंगा। हमेशा प्रभु के समुदाय की तलाश करें। प्रभु की तलाश क्यों करें? भजन संहिता अध्याय 21:6, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। प्रभु का गुणगान करना चाहिए, आपके दिलों में खुशी का माहौल रहेगा। इसलिए प्यारे लोगों, हमेशा खोजो,
1: प्रभु कहते हैं, क्या हम कहें हे यहोवा कि मैं तुझको ढूंढने के लिए थे अपने आप को लगा दूं। प्रभु निश्चित रूप से जीवन में आनंद लाएगा। आओ प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु। पिताजी को इस शो को सुनने वाले हर बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, शांति और खुशी दो, चिंताओं को दूर करना चाहिए और आशीर्वाद और उत्थान करना चाहिए। परमेश्वर, आने वाला नवंबर वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। कोरोना वायरस की तीसरी लहर लोगों को कभी नहीं छूनी चाहिए। हम आपको सभी महिमा और स्तुति देते हैं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ।
0: अध्याय 28 पद 20।
1: आमीन। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। यदि हम विश्वास योग्य हैं तो हम बहुतायत से आशीषित होंगे। हमें अपने जीवन के प्रति सच्चे होना चाहिए। क्या हमें प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, पिता मेरे जीवन में विश्वास योग्य रहने के लिए मुझे वफादार बनाओ। भजन संहिता 51 पद 06। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हर दिन हमें भगवान से पूछना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में वफादार रहना चाहिए। अगर हम अपने जीवन के प्रति सच्चे हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है। आपको अपने कार्यस्थल, अध्ययन क्षेत्र और अपने परिवार में विश्वास योग्य होना चाहिए। आपको बच्चों की देखभाल करने में विश्वास योग्य होना चाहिए। आपको परमेश्वर को खोजने में विश्वास योग्य होना चाहिए। हमें चर्च के मामलों में विश्वास योग्य होना चाहिए और हर चीज में सच्चा होना चाहिए। हम रोज भगवान से पूछ सकते हैं, भगवान कृपया मुझे विश्वास योग्य व्यक्ति बना दे। मैं एक वफादार व्यक्ति की तरह जीने के लिए उत्सुक हूँ। सत्य को मेरे हृदय में धारण करो प्रभु। यदि हम परमेश्वर से मांगे तो वे हमें एक विश्वास योग्य व्यक्ति बना देगा। क्या हम प्रार्थना करें? स्वर्गीय पवित्र पिता को धन्यवाद। आपको उन लोगों के दिलों को आशीर्वाद देना चाहिए जो ये खबर सुनते हैं। प्रभु उन्हें विश्वास योग्य बनाए और उनके जीवन को आशीर्वाद दें कि कितने लोग अपने कर्ज से पीड़ित हैं। परमेश्वर, कर्ज की समस्या को बदलो। हे प्रभु, उनका कर्ज वापस करने में उनकी मदद करें। हे प्रभु, तूने तो केवल इतना ही कहा है कि हे प्रभु, हम उन्हें ढेर सारी आशीषें देंगे। फिर भी जो सब कर्जदार हैं, उन्हें भुगतान करने में मदद करें। हे भगवान, उनके आंसू पोंछो। परमेश्वर, हे प्रभु, उनके लिए जो चिंतित हैं कि उनके परिवार में कोई समस्या है, उनके जीवन में चिंताओं को बदलो, आंसू पोंछो और सभी दुखों को बदल दो। कई माता पिता मेरे बच्चों में पढ़ाई की कमी को लेकर चिंतित हैं। परमेश्वर, बच्चों को सद्बुद्धि और याद दे। कृपया सब पर दया करें। हे परमेश्वर, सभी को मजबूत करो, बड़े काम करो। धन्यवाद परमेश्वर, तुम वही करने जा रहे हो जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। मैं आपसे वादा पूर्वक
0: योएल की पुस्तक अध्याय 2 पद 28।
1: उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। कई लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक की तलाश में हैं। आप पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने और वैसे भी उसे जानने की लालसा रखते हैं। निश्चय ही यहोवा पवित्र आत्मा का अपना अभिषेक तुम पर उंडेलेगा। इसलिए उन्होंने वादा किया था। जॉन अध्याय 16 पद 13 का सुसमाचार। परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ प्यारे लोगों, ज्यादातर लोग सच्चाई नहीं जानते हैं। जब पवित्र आत्मा आप में आता है तो वे आपको बाइबल में सब कुछ और सब कुछ बताता है। आइए अभिषेक ग्रहण करें। आइए आज प्राप्त करते हैं। आप कहते हैं कि मैं बाइबल नहीं समझता। वह निश्चित रूप से आपको बाइबल में सब कुछ और सब कुछ बताएगा। आइए अब प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, परमेश्वर के इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पवित्र आत्मा से अभिषेक करें। भगवान सब पर कृपा करें। शास्त्रों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि और बुद्धि दो। उन्हें अपनी दया दो। पवित्र आत्मा जो सब कुछ सिखाती है, सब सिखाया जाना चाहिए। हम आपको सारी महिमा देते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक सर्वशक्तिमान यीशु के नाम से पूछता हूँ। अध्याय 107 पर आमीन। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हाँ प्रिय लोगों, क्या डॉक्टरों ने हार मान ली कि बीमारी दूर नहीं होगी? आपको कब लगता है कि ये सही होगा? प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा करने और विनाश से बचाने के लिए अपना वचन भेजा है। हाँ प्रिय लोगों, परमेश्वर चंग भेजता है और चंगा करता है। केवल वही आपको ठीक कर सकता है। अपनी कमजोरी चाहे जो भी हो, अपने आंसू पोछो। केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपको चंगा कर सकते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह को देखो। निश्चय ही वो तुम्हें चंगा करने में समर्थ है और तुम्हें विनाश से बचाएगा। वह निश्चय ही तुम्हें विनाश से बचाएगा। परेशान मत होइए, अपने आंसू पोंछ लो। शायद डॉक्टर ने हार मान ली। आपको कैसे लगता है कि ये सही है? हमारे प्रभु यीशु मसीह, वह निश्चय ही तुम्हें चंगा करेगा और आशीष देगा। वह आपको दिव्यानंद देगा। आंसू पोंछ लो। जॉन अध्याय 6 का सुसमाचार, श्लोक 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। जब परमेश्वर का वो वचन आपके पास आएगा तो आपकी आत्मा बहुत पुनर्जीवित हो जाएगी। उनके श्लोक कैसे हैं? ये जीवित है। ये हमारे अंदर आने पर हमारी आत्मा को पुनर्जीवित करेगा। जब उसका जीवन हम में आता है तो हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वह ठीक कर सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में कई चमत्कार और संकेत करने में सक्षम है। क्या हम उसकी ओर देखें? वह यहोवा तक दया करेगा। वह सब विनाश से बचाएगा। आओ प्रार्थना करते हैं। प्रिय पिता, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। शुक्रिया। कितने लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं? परमेश्वर, हमें उन्हें ठीक करने और दर्द को ठीक करने, कमजोरी को ठीक करने, कैंसर पीड़ितों को ठीक करने, डेंगू बुखार पीड़ितों को ठीक करने की आवश्यकता है। कृपया कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को ठीक करें। आने वाले नए साल को आशीर्वाद दें और इसे अच्छाई से भर दें। आपका नाम गौरवान्वित करता है भगवान। आप जिस प्यार के लिए ऐसा करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।